0: morning.
1: Achar.
0: Good morning.
1: Chhod hat.
0: Good morning. 1 2 3 4.
1: अरे 1 2 3 4 वाला हाथ हट जाए. 1 2 3 4. मैं कैसे हूँ?
0: 1 2 3 4. 1 2 3 4.
1: तुम ये थप्पड़ रखे.
0: आवर के डाबर.
2: डाबर का आवर.
0: डाबर का आवर.
1: अरे इधर डाबर के आवर. बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला.
3: कॉफी. Guess what? Water stand. Right hand. बंदूक बैंड. King.

देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नागनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नागनी है मेरी हाँ समझा था मैं ये है करी लेकिन वहाँ कोई और थी इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ।

इनको भी है हा, हा। मेरा खुमार इनको भी है हा, हा। इनके लिए है मोहतरम खेड़ा किसी और कोटा खुदा की कसम हाँ देखिए साहिबो वो कोई और भी और ये नाजनी है मेरी मैं इनसे मरता हूँ।

हम दोस्तो रुसवा हुए हम दोस्तो इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इनसे मरता हूँ।

मुझ पर यकीन अब कम सही मैं सादा दिल मुझे जिम सही इनके लिए है मोर्टिज्म छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाँ देखिए सारे वो कोई और थी और ये नाज़

मेरा दिल है तेरा, तेरा दिल है मेरा, जब से हमने दिल बदले हैं सारा जग बदला।

0: वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। भागती दौड़ती हमारी जिंदगी में कई बार हम जान ही नहीं पाते कि किस दिशा में भाग रहे हैं, और फिर एक लम्हे को एक पड़ाव पर रुकते हैं और पूछते हैं, तुझे क्या चाहिए जिंदगी? जानते हैं कि क्या चाहिए हमें? नहीं, लेकिन यही तलाश है जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी श्रृंखला में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। और इसमें आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत है।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। शिवानी जी, शुरुआत यहीं से करते हैं। भाग तो हम रहे हैं, कोई करियर के लिए भाग रहा है, कोई मोहब्बत के लिए भाग रहा है, कोई

0: चाहे कहीं और फिर बाय देन इट्स टू लेट
1: यस
0: यू नो एंड देन समटाइम्स टुवर्ड्स द फैग एंड हम कहते थे कि मुझे तो ये चाहिए था ये चाहिए था मुझे तो जीवन में बस ये चाहिए था बहुत कुछ मिल गया बहुत कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन जो चाहिए था
1: वो
0: शायद अभी भी तलाश कायम है
1: बिल्कुल और अगर हम इस भागदौड़ की बात करें और इस इन छोटी छोटी मंजिलों की बात करें या अचीवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहली जो अचीवमेंट अगर हम स्थूल रूप में देखते हैं तो वो ये कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए
0: बिल्कुल
1: मुझे घर चाहिए मुझे नौकरी चाहिए मुझे फिर पैसा चाहिए
0: एक्चुअली एवरी स्टेप पर ना हमारा जो चाहिए का डेफिनेशन है वो चेंज होता है विच इज नेचुरल एक स्कूल गोइंग बच्चे के लिए है कि मुझे टेंथ तक टेंथ में अच्छे मार्क्स चाहिए देन इट्स योर 12 देन ग्रेजुएशन देन इट्स योर जॉब फिर आपको है फैमिली फिर फैमिली शुरू हो गई तो इट्स अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो सब तो है ही और वो सब चलता भी रहेगा दैट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ लेकिन ये सब कुछ करते हुए लव लेट्स से सपोज आपसे ही अभी पूछे कि डोंट थिंक टू मच बहुत लॉजिकली एनालाइज मत कीजिए अपनी लाइफ को लेकिन वैसे ही अगर आप अपने आप से पूछो कि एट द एंड ऑफ इट मुझे क्या चाहिए या इवन राइट नाउ मुझे क्या चाहिए
1: आई से हैप्पीनेस
0: खुशी आपने कहा तो खुशी इज एक स्पॉन्टेनियस जो निकलता है हमारे अंदर से बिकॉज हरेक को वो चाहिए चाहे वो बच्चा है चाहे वो रिटायर्ड है चाहे वो उसके बीच वाली जर्नी में है लेकिन खुशी शांति प्यार ये हम सब कुछ चाहिए एंड हम जो कुछ कर भी रहे हैं ना इट इज फॉर दैट ओनली आप इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सुबह से निकलते हैं अपना करियर बना रहे हैं आप भले सैलरी कहे उसको डेजिग्नेशन कहे स्टेटस कहे लेकिन वो सब भी किस लिए चाहिए लोगों को
1: हैप्पीनेस के लिए
0: बिकॉज चाहिए हैप्पीनेस के लिए एंड समवेयर वी थॉट कि इन चीजों से हैप्पीनेस मिल जाएगी तो हम इसलिए इन चीजों के पीछे हम चलते गए और होना एक्चुअली ये हो सकता है कि हम ये सब कुछ जो हमें प्राप्त करना है जो हमारे माइलस्टोन्स हैं लाइफ के ये हमें सब चाहिए एंड वो स्टेप बाय स्टेप मिलते भी जाएंगे लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान हैप्पीनेस हमारे साथ रहनी चाहिए
1: ओके यू से लाइक इट्स अ जर्नी
0: इट्स अ
1: जर्नी जो आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा सफर है
0: यू वी हर्ड ऑल्सो सो मेनी टाइम हमने इतने सारे कोटेशन पढ़े हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन इट्स द जर्नी बट इसका भाव क्या है यू नो जैसे ट्रेन से भी ट्रेवल करें या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से तो हर एक पे लिखा जाता है वी होप यू हैव अ प्लेजेंट जर्नी इट्स नॉट रिटन के वी होप दैट यू रीच योर डेस्टिनेशन एनी हाउ You see, suppose both of us are traveling together, तो ऐसा नहीं है कि जर्नी में कितनी भी मुश्किल हो बस किसी भी तरह हम बॉम्बे पहुंच जाएं. That's not the fun. The fun is कि हमारी पूरी जर्नी बहुत अच्छी गुजरे हंसते खेलते बात करते Then we enjoy the process. It's like एक school going बच्चा है School life is a very nice life. तो it's not कि when I finish 10th standard I'll be happy. But उस पूरी schooling के दौरान I should be happy. You know, it's not that when I get my job, then I will be happy.
1: इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें शिवानी कि अगर मैंने एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली मैंने एक एमएससी में नौकरी करना चाहती थी अच्छी पोस्ट पे वहां मैं पहुंच गई और वो अचीव कर लिया या कुछ और कोई भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज थी और मुझे लगता है कि मुझे उससे वो मेरे खुशी का लम्हा होगा वो खुशी मैंने पाई भी उस लम्हे मैंने पाया उसे लेकिन वो इतना क्षणभंगुर है अगले ही पल कोई भी ऐसी खबर मेरी उस खुशी को दुख में बदल सकती है
0: बिकॉज वो रियली खुशी नहीं है इट इज एन अचीवमेंट एंड इट इज हमने एक लक्ष्य रखा कि मुझे ये करना है एंड जैसे ही वो लक्ष्य को प्राप्त हुआ इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट लेकिन उसको हम खुशी के साथ नहीं मिक्स कर सकते
1: हेल्थ और हैप्पीनेस के बीच में मैं क्यों कैसे जुड़ सकते
0: एक जर्नी है जैसे और ये जैसे आपने कहा ना जो साधन भी है कि हमने गाड़ी खरीद ली या हमने जो भी कुछ खरीद लिया ये साधन भी पहली बात हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये साधन हमें खुशी दे रहे हैं क्योंकि हम ये साधनों को बटोरने की होड़ में जो लगे हुए हैं यू नो एक के बाद एक चीज आप देखो घर में भी एक लिस्ट बनी रहती है ये लेना उसके बाद ये लेना तो यू डोंट इवन गेट टाइम टू पॉज आप एक चीज लेते हैं तो बाय दैट टाइम यू हैव अनदर लिस्ट रेडी विच इज ओके विच इज एब्सोल्युटली फाइन लेकिन क्या ये चीजें हमें खुशी दे रही हैं या इट इज इट द फीलिंग कि मैंने ये चीज प्राप्त कर ली जो मैंने डिसाइड की थी वो हमें खुशी दे रही है तो खुशी हमें वो चीज से नहीं मिल रही है खुशी उस चीज को प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को पूरा करने की खुशी मिल रही है दो चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो गई तो इसका मतलब खुशी मेरी अपनी जेनरेशन थी मैंने अपने आप उसको क्रिएट किया क्योंकि मुझे लगा मैंने लक्ष्य रखा वो पूरा हुआ मुझे खुशी हुई लेकिन

0: चीज खुशी नहीं लेकर आए थे अपने साथ.
1: अगेन आई वांट टू आस्क इज लाइक हैप्पीनेस इज एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली.
0: इट इज एनर्जी, इट इज अ फीलिंग.
1: ओके,
0: सी हैप्पीनेस इज अ फीलिंग. अगर मैं कहूँ कि ये रिंग पहनी है, दिस इज गिविंग हैप्पीनेस, इट्स नॉट ट्रू. ये दे नहीं सकती है, चाहे ये सिल्वर की हो, गोल्ड की हो, इसमें एक डायमंड हो या दस लगे हो, ये खुशी नहीं दे सकती है. बट वी फील के ये पहनने से खुशी मिलेगी, बहुत अच्छी साड़ी पहनने से खुशी मिलेगी, बहुत अच्छे सोफे पे बैठे हैं तो खुशी मिलेगी. हियर समवेयर वी आर गोइंग अ लिटल यू नो रॉन्ग, बिकॉज इसलिए आप देखो कि हम मेहनत इतनी कर रहे हैं इन चीजों को बटोरने में, तो आज दिन ब दिन हमारी मेहनत बढ़ती जा रही है. लाइफ जैसे आपने कहा हम भाग रहे हैं क्योंकि एफर्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या खुशी भी उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ रही है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं. यू नो लाइक डेफिनेटली हम भाग तो इतनी ज्यादा तेज स्पीड से रहे हैं. अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे पिछले जनरेशन आराम से जिंदगी जीते हुए ज्यादा खुश थे, ज्यादा सेटिस्फाइड थे.
0: तो द एफर्ट हैज इंक्रीज्ड, लेकिन द रिजल्ट भी तो उतना ही बढ़ना चाहिए था. एफर्ट बढ़ा तो रिजल्ट भी बढ़ना चाहिए. और आज अगर हम देखें कि खुशी बढ़ने की बजाय और ही शायद
1: घट रही है,
0: घटती हुई
1: दिखाई,
0: बिकॉज हमने कहीं दोनों चीजों को मिक्स कर दिया. आप मेहनत एक चीज के लिए कर रहे हैं तो प्राप्त भी वही चीज होगी. आप ये नहीं समझे कि मैं मेहनत ये करूं प्राप्त दूसरी चीज हो. हम मेहनत अपने करियर में कर रहे हैं तो हमें एक अच्छी पे पैकेज, अच्छी सारी पर्क्स जो मिलनी चाहिए वो सारी मिल रही है. एंड इफ यू सी इन द लास्ट 10 इयर्स वी हैव रियली प्रोग्रेस्ड. जिस तरह के सैलरी स्ट्रक्चर्स और ये सब चीजें आज हमें मिल रही हैं, तो फिर वो 10 साल पहले नहीं थी, क्योंकि हमने एफर्ट किया. तो एफर्ट का हमेशा रिजल्ट मिलेगा, ये हो नहीं सकता. लेकिन क्या हमने खुशी के लिए एफर्ट किया? नहीं, हमने इन मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए एफर्ट किया. और आज अगर आप धीरे धीरे देखें, हम सबके घरों में ऑलमोस्ट सारी चीजें आई गई हैं.
1: लेकिन अगेन वी आर बिकमिंग डिसिल्यूजन. यू नो, एफर्ट के बाद हमें रिजल्ट मिलने के बावजूद, मे बी बिकॉज वी हैवंट रियलाइज्ड,
0: बिकॉज द एफर्ट वॉज फॉर समथिंग एल्स एक्चुअली. यू नो, इट्स लाइक मैंने चाहे थी खुशी, एफर्ट किया मैंने धन के लिए, धन तो मिल गया लेकिन खुशी तो मिली नहीं साथ में.
1: फिर से
0: लेकिन मैं एफर्ट तो खुशी के लिए कर रही थी, लेकिन मैंने एक जो कनेक्शन बीच में जोड़ दिया था कि जितना धन उतनी खुशी, जितने साधन उतनी खुशी, वो मेरी अपनी क्रिएशन थे, विच इज नॉट ट्रू. किसी भी गाड़ी के साथ, किसी भी मकान के साथ ये लिखा हुआ नहीं आ रहा कि यू नो दिस विल गिव यू हैप्पीनेस. आप गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस पढ़ लो, इट विल टेल यू व्हाट ऑल इट विल गिव यू. नोवेयर इज इट रिटन कि ये आपको खुशी देगा. इस सोफे को हमने लिया, हमने स्पेंड किया होगा ना इसको लेने पर, ये हमें आराम देगा, ये हमें खुशी नहीं दे सकता. हमने सोचा ये हमें खुशी देगा, फिर जब इसने हमें नहीं दी तो हम डिसिल्यूजन हो गए.
1: फिर हम और
0: हमने इतनी मेहनत, फिर हमने सोचा ये सोफे ने तो खुशी नहीं दी, अब हम कुछ और खरीदते हैं, हम कुछ और. सो इट्स जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन.
1: इट मीन्स वी आर मूविंग इन सर्कल्स, एंड
0: वी वोंट रीच एनीवेयर, बिकॉज हमें ये भी नहीं पता कि हम किस चीज की खोज में लगे हुए हैं. हमें चाहिए खुशी, हम खरीद रहे हैं आराम के साधन. आराम के साधन हमें आराम देंगे, विच इज फाइन, वो भी तो चाहिए. फिजिकल कंफर्ट चाहिए, हम इस पे कितने आराम से बैठे हैं अभी. लेकिन जरूरी नहीं है हम खुश हैं अंदर. हो सकता है हम जमीन पे बैठे हो, आई वुड प्रॉब्ली नॉट बी एबल टू सिट इफ माई लेग इज हर्टिंग, बट हो सकता है आई कैन स्टिल बी हैप्पी. सो वी कैन नॉट मिक्स द टू थिंग्स. तो फिजिकल चीज हमें फिजिकल कम्फर्ट देगी,
1: हैप्पीनेस नहीं,
0: हमें आंतरिक खुशी नहीं देगी. खुशी इज इंटरनल, इट्स अ फीलिंग, इट्स नॉट कम्फर्ट. वी मिक्स द टू थिंग्स. अब क्या, जैसे आपका ये मकान है, आपका एक गार्डन इस तरफ है, एक गार्डन इस तरफ है. अगर आपको दोनों गार्डन्स इक्वली फ्लरिश होते हुए दिखाई देने, यू विल हैव टू स्पेंड इक्वल टाइम ऑन बोथ ऑफ देम. नो, यू वॉटर बोथ द साइड्स. अगर आप कहें कि मैं एक तरफ पानी डालूं और दोनों गार्डन बने, तो ये नहीं. अब इसी तरह हमें फिजिकल कंफर्ट भी चाहिए, गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, हमें खुशी भी चाहिए, शांति भी चाहिए. दे टू डिफरेंट थिंग्स. हमने अपने 24 घंटे इस वाले तरफ लगा दिए और हमने ये सोचा इस तरफ जाते जाएंगे ये वाली चीज अपने आप आ जाएगी. ये वाला साइड सूख गया, ये वाला साइड बहुत फ्लरिश हो रहा है,
1: ग्रेट,
0: इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
1: वंडरफुल, बिकॉज यू नो इट एक्चुअली क्लियर्स अप द थिंग.
0: सो जिस पर आप एफर्ट करोगे यू विल गेट दैट. वी शुड नॉट थिंक कि यू नो हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा. इस पे कर रहे हो ये मिल रहा है, इस पे थोड़ा सा करेंगे ये भी मिल जाएगा.
1: बहुत सुंदर. अच्छा, तो
0: दैट इज द थिंग.
1: हम दूसरे गार्डन की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले हमने ये बात, तो सबसे बहुत अच्छी बात हमने जो रियलाइज की वो ये कि जिन कम्फर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जिस फिजिकल कम्फर्ट के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं,
0: नथिंग रॉन्ग इन दैट.
1: नो, डेफिनेटली
0: नथिंग. वो बहुत इम्पोर्टेंट है. कई बार हम लोग सोचते

0: okay, nahin, iska matlab, you know, gyan, yoga, meditation means ke you're moving away from, that's not true at all. Physical comfort hai, to bhi bahut acha, nahin hai kal ko, to bhi it's not an issue.
1: Haan, wo us stage pe hum pahunch jate hain, lekin agar hai,
0: usko use karte hain, aap uske upar dependent nahin hote, ye do different cheez ho jayenge. You know, aaj mobile hai, hum use kar rahe hain, aap kisi ko dekho, uska mobile thodi der out of range ho jaye, ya you know, नहीं चल रहा, डिस्चार्ज हो जाए, पैनिक होने लगते हैं. ये जो डिपेंडेंसी है, दैट इज देन ड्रेनिंग अस आउट टोटली.
1: ओके, दैट्स नाइस वे ऑफ एक्चुअली हैंडलिंग द प्रॉब्लम एंड रियलाइजिंग दैट व्हाट एक्चुअली हम किसके लिए भाग रहे हैं.
0: Absolutely.
1: अब हमें एक बात तो ये कि जो फिजिकल अचीवमेंट्स हम ले रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम अपने परिवार की बात करें, हैप्पीनेस की, अगर हम एक्चुअली रियल सेंस में हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, तो हमने ये बात समझी कि फिजिकल अचीवमेंट्स या इन एट्रीब्यूट्स को अचीव कर लेना हमें हैप्पीनेस की तरफ नहीं लेके जा रहा, क्योंकि हमने रियलाइज किया ये बात. दूसरा हमारा एस्पेक्ट होता है जब हम घूमने जाते हैं, यू नो, हम एब्रॉड जा रहे हैं, ट्रिप्स लगा रहे हैं, हम फैमिली के साथ पिकनिक्स पे भी जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि यू नो वी आर रियली हैप्पी, वी आर एंजॉइंग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली कुछ आते ही हम फिर डिसिल्यूजन हो जाते हैं.
0: क्योंकि ये भी जो हम कर रहे हैं, गोइंग फॉर एन आउटिंग या एक पार्टी में जाना, डिनर पे जाना, थिएटर में जाना, ये एक मोमेंट्री फेज है ना. वापस तो हमें फिर उसी रूटीन में आना ही है. इसमें हमें जाने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो हमारा रूटीन है वो थोड़ा सा बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेनियस है. तो दिस इज अ चेंज, इट्स नॉट हैप्पीनेस अगेन, इट्स अ चेंज फ्रॉम माय रूटीन. रोज वही खाना खा रहे हैं, रोज वही खाना खा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ डिफरेंट खाएंगे तो वो खुशी देगा. इट्स अ चेंज. लेकिन ये जो है पार्टी में जाना या इस तरह से करना, ये एक एक्साइटमेंट जनरेट करता है. इवन इफ यू सी द एनवायरमेंट, इस तरह के लोग, इट्स एक्साइटमेंट, इट इज प्लेजर. एक होता है ये जो कर्म इंद्रिया हमारी, जिसको हम कहेंगे सेंशुअल प्लेजर, देखा कुछ, मूवी देखी, बहुत अच्छा गीत सुना, बहुत टेस्टी कुछ खाया, इन सेंसेस से मिलने वाला सुख, ये सेंशुअल है, ये अभी है, अभी चला जाएगा. आप कुछ बहुत टेस्टी खा रहे हैं, आपकी इधर ही है अभी वो मुख पे, यू आर लाइकिंग द टेस्ट. कुछ अभी गलत सुन लिया, कुछ हो गया अचानक, कहाँ जाएगा वो टेस्ट सर? अभी तो मुख पे ही पड़ा, अंदर भी नहीं गया अभी. एंड उसका टेस्ट भी आप कितनी देर एंजॉय करते हैं? जस्ट टिल इट इज ऑन योर टंग, आफ्टर दैट इज फिनिश्ड, इट्स ओवर. लेकिन वो टंग पे अभी है और अभी आपने सुन लिया कि अचानक कुछ हो गया है गायब, तो वो चीज आपको खुशी तो नहीं दे रही.
1: यस, बिकॉज हम सुनते आ रहे हैं सदियों से कि खुशी जो है वो इटर्नल है, यू नो, इट हैज टू बी परमानेंट.
0: इट्स अ फीलिंग, इट इज एन इंटरनल फीलिंग. और ये जो चीजें हम जिसको उसके साथ मिक्स कर दिया, ये है प्लेजर्स, ये है एक्साइटमेंट, ये है फन, आप इसको फन कह सकते हैं, लेकिन ये इंटरनल हैप्पीनेस नहीं है. और कई बार ये भी हो सकता है हम हॉलीडे पर भी जाके आ जाए, बट वी वर नॉट इवन हैप्पी एट द हॉलीडे. हम हॉलीडे पे गए द फैमिली, बट हस्बैंड एंड वाइफ के वहां भी आपस में
1: डिफरेंस,
0: झगड़ा हो गया. आप डिनर पे रेस्टोरेंट में चले गए, वहां भी आपकी ओपिनियन क्लैश हो गई और सारा सब कुछ हो रहा. तो खुशी का
1: जी,
0: तो खुशी एक्चुअली हमें अपने आप से पूछना होगा कि मेरे लिए खुशी क्या है, बिकॉज हम सब पूरी यात्रा में उसके लिए चल रहे हैं. द होल जर्नी इज फॉर
1: एक और लाइफ की, अगर हम जर्नी की बात करते हैं, एक और एस्पेक्ट जिसे हम हैप्पीनेस से जुड़े, एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट इज लाइक अल्टीमेटली व्हाट हैप्पीनेस इज. बट उससे पहले हम ये जानते जाएं कि जिसे हम खुशी मान रहे हैं, क्योंकि वो हमें खुशी दे नहीं रही, हम अभी भी भाग रहे हैं. अगर हमें खुशी मिल जाए तो हम शांत हो जाए ना, हम रुक जाए. हम रुक नहीं रहे हैं, हम कंटिन्यू उसको तलाश रहे हैं. तो एक हमने ये जाना कि जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, फिजिकल अचीवमेंट्स, वो हमें खुशी नहीं दे रही, वो कम्फर्ट देती है. दूसरी तरफ इस तरह की एक्साइटमेंट दे रही है, इस तरह की आउटिंग्स, एवरीथिंग, बट अगेन हैप्पीनेस इज समवेयर, यू नो, वी आर,
0: दीज आर ऑल्सो राइट, अगेन नन ऑफ देम आर रॉन्ग. सी, क्योंकि हो सकता है कि आप एक नॉर्मल रोज रोज रोज एक दिनचर्या करते हुए आपको एक चेंज चाहिए. गो फॉर द चेंज, but don't go with an illusion.
1: That's what I'm saying, you know, these are the illusions.
0: That's important. Go for the change, but not with the illusion ke oh that's happiness.
1: Again another illusion which we are all living in, say we take it as ki ye sachai hi hai aur wo hai love, relationship, you know. Usme hum ye sochte hain ki agar हम किसी से प्यार कर रहे हैं उससे बढ़कर खुशी नहीं मिल सकती, उससे ज्यादा खुशी नहीं, और वो एक इंडिविजुअल, यू नो, सारी मेरी खुशी उसके ऊपर डिपेंड करती है. वो मेरे लिए, मतलब वो खुश है तो मैं खुश, मैं खुश हूं तो वो खुश, ऐसा एक कॉम्बिनेशन. बट समवेयर आगे चलते हैं, अगर वो रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाता, मतलब वो मोहब्बत एक कन्वर्ट होती है रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप ही चलता है, वो भी हमें तकलीफ दे रहा है, हमें खुशी नहीं दे रहा.
0: संबंधों में भी, चाहे जो भी तरह का संबंध लो, चाहे पेरेंट चाइल्ड का भी आज एक रिलेशनशिप

0: है। पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार से इतनी मेहनत से बड़ा करते हैं, खुशी मिलती है उसमें भी, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन बाद में अगर वो बच्चा अपनी साइड ऑफ द रोल नहीं प्ले कर पाया या अपनी जिम्मेवारी नहीं प्ले कर पाया और वो कहीं अलग रहने लगा या किसी कंट्री से बाहर चला गया, तो वही पेरेंट्स दुखी होते रहते हैं, उदास होते रहते हैं, उसी बच्चे के वजह से भी उदास होते रहते हैं और कहीं ना कहीं ये निकल आएगा, मैंने आपके लिए इतना किया, आपने इन रिटर्न मेरे लिए क्या किया। तो सारे रिलेशनशिप्स हमारे कंडीशनल हो गए और कोई भी चीज जब कंडीशनल होगी वो हमें खुशी नहीं देगी। आप एक कर दो, रोड क्रॉस करते करते किसी को रोड क्रॉस करवा दो सिर्फ, ठीक है, समबडी इज ओल्ड या ब्लाइंड, एंड देखो आपको कितनी खुशी मिलेगी। इट विल बी नॉट कि वो कुछ करेगा आपको, लेकिन आप खुद को एक अच्छी फीलिंग अंदर जनरेट होती है बिकॉज आपने कुछ ऐसा किया जिसमें यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। लेकिन जहां एक एक्सपेक्टेशन फैक्टर आ जाता है, मुझे आपसे खुशी चाहिए, यू नो, हमारे रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ा इश्यू वही हो रहा है कि मुझे उनसे प्यार चाहिए, मुझे उनसे खुशी चाहिए, लेकिन पहले हमें चेक करना पड़ेगा उनके पास है क्या वो।
1: बिल्कुल,
0: आप खुद अपने अपसेट हो, सपोज इस टाइम आप खुद परेशान हैं बिल्कुल, और मैं वेट कर रही हूँ सुबह से कि मैं कनुप्रिया से मिलूंगी मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मैं मिलूंगी मुझे बहुत खुशी मिलेगी। यू हैव टू बी हैप्पी फर्स्ट टू गिव इट टू मी। रिलेशनशिप्स शुड बी मोर ऑफ गिविंग रादर देन ऑलवेज टेकिंग, क्योंकि इस समय वो समय ही नहीं चल रहा जो हम एक्सपेक्ट करें हमें औरों से कुछ मिलना चाहिए। हमारे पास वो चीज ऑलरेडी है, हमें अब वो औरों को बांटनी है।
1: ब्यूटिफुल।
0: अगर हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में मुझे खुशी मिल रही है, तो वो खुशी सामने वाले व्यक्ति से नहीं मिलती, मुझे उस व्यक्ति से इंटरेक्ट करने में अच्छा लगता है तो वो मुझे खुशी होती है।
1: तो वो मैं ही कहीं इंटरनलाइज, यू नो, ये पूरा
0: जो दुख भी मुझे मिलता है वो भी मुझे खुद ही मिलता है।
1: हाँ,
0: सामने वाला ना मुझे खुशी दे रहा है ना दुख दे रहा है, मुझे उससे मिलकर, उससे बात करके, उससे इंटरेक्ट करके जो जनरेट करना है वो मैं खुद जनरेट।
1: लेकिन हम ब्लेम गेम में तो कंटिन्यूस रहते हैं, यू नो,
0: लाइक
1: कि खासकर रिश्तों की अगर हम बात करें, हमने दो एस्पेक्ट्स तो जान लिए कि वो कुछ कुछ चीजें दे रहे हैं हमें, लेकिन खुशी हमें नहीं दे रहे हैं।
0: खुशी हम अपने इंटरेक्शंस में खुशी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सी, बट ये नहीं हम कह सकते कि उनसे हमें खुशी मिलेगी या वो ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। फिर उससे क्या होगा, मेरी खुशी हमेशा किसी न किसी व्यक्ति पे या किसी न किसी परिस्थिति पे डिपेंडेंट हो
1: जाएगी, निर्भर हो जाएगी,
0: कंडीशनल हो जाएगी। ये होगा तो खुशी होगी, ये इसने ऐसा किया तो खुशी होगी, उन्होंने अगर इस तरह मेरे से बात की तो खुशी होगी, आज अगर उन्होंने अच्छी तरह से बात की तो खुशी है, कल नहीं बात की गम।
1: बिल्कुल,
0: आपने मेरी महिमा कर दी तो खुशी है, आपने थोड़ी सी निंदा कर दी तो उदासी है, मतलब फिर मेरी खुशी तो सारा दिन
1: अप डाउन में रही ना।
0: तो दैट्स नॉट रियली हैप्पीनेस, इज़न्ट इट?
1: इन फैक्ट दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क, वी हैव नेगेटेड लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, वी रियलाइज अचीविंग, यू नो, दीज अचीवमेंट्स या फिजिकल जो एस्पेक्ट्स हम ले रहे हैं उन्हें अचीव करना, उन्हें पा लेना, या फिर आपने कहा कि एक्साइटमेंट, पार्टीज में जाना, या दूसरी तरफ रिश्तों में भी खुशी जो है वो हमें तीनों में अभी तक नहीं मिली है।
0: तो खुशी क्या है,
1: कई बार ऐसे नहीं होता है,
0: कई बार ऐसे नहीं होता, पॉकेट में अपनी चाबी पड़ी होती है, हम पूरे घर में ढूंढते घर में भी नहीं मिलेगी, ऑफिस में जाके ढूंढेंगे, और फिर कई बार हमारा पूरा परिवार हमारे साथ ज्वाइन कर लेता है कि आखिर वो कहाँ है। राइट, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक छोटा सा बच्चा किसी लैम्प पोस्ट के नीचे खड़े होकर कुछ ढूंढ रहा था, तो एक बुजुर्ग भाई वहां से आए, कहा आप कुछ ढूंढ रहे हो बेटा? तो कहा मेरी चाबी घूम गई है यहाँ पे। तो वो भी उसको ज्वाइन किया और उसके साथ ढूंढने लगे, दोनों जने ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था। साथ में और एक कपल वॉक करते आया, उन्होंने भी पूछा, उन्होंने भी ढूंढना शुरू कर दिया। इस तरह से आफ्टर सम टाइम 7-8 लोग उस बच्चे को मदद कर रहे थे उसकी चाबी ढूंढने में। थोड़ी देर बाद एक बहुत ही अनुभवी माता जी वो आई वहां पे, कहा आप लोग सब इतनी मेहनत करके क्या ढूंढ रहे हो? तो कहा इन बच्चे की चाबी गुम गई है, वो ढूंढ रहे हैं। तो माता जी बहुत अनुभवी थी, उन्होंने बच्चे को कहा यहीं पे गिराई थी क्या पक्का? तो कहा नहीं माता जी, गिराई तो अंदर थी उधर। तो माता जी ने कहा यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो फिर? वहां बहुत अंधेरा है, यहाँ लैम्प पोस्ट थी ना, इसलिए हम यहाँ ढूंढ रहे थे।
1: ओके, तो जहाँ रोशनी दिखी जहाँ चकाचौंध, बहुत सुंदर बात है।
0: जहाँ हमें रोशनी दिखी हम वहां ढूंढना शुरू कर दिया, और हम ढूंढते ढूंढते हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज हमारे साथ जुड़ गया उस चीज को ढूंढने में, लेकिन वो एक्चुअली जहां पर है शायद हमने वहां नहीं

0: देखा, क्योंकि हमें वहाँ देखने में भी डर लग रहा है
1: क्योंकि वहाँ अंधेरा है,
0: वहाँ अंधेरा है, बहुत समय हुआ वहाँ देखा नहीं है, बट इट्स हियर, इट्स क्लोजेस्ट टू मी एंड इट्स इजिएस्ट टू लुक फॉर, वो मेरी अपनी चीज है. व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू, आपके लिए क्या होगी खुशी?
1: इट्स सो डिफिकल्ट टू से. हैप्पीनेस इज लाइक इफ आई कैन गेट व्हाट आई वांट एंड से at that time today whatever I want if I get I think that be happy
0: again that will become conditional na
1: ah.
0: Dekha conditional ho gaya ki agar mujhe wo mila to khushi hai, nahi mila to nahi khushi hai. Ab aisa to ho nahi sakta na ki aap sare jo apne conditions rakhoge wo puri honge. For me happiness would be ki ye mujhe chahiye aur isko dhoondne ke dauran ya isko prapt karne ke dauran mujhe khushi se isko prapt karna
1: hai. Journey bhi jo to journey hai aapki,
0: because khushi wo prapt karne mein nahi mil rahi hai. खुशी एक आंतरिक स्थिरता है, स्टेबिलिटी. शांति भी क्या है, वही है. हम कहते हैं ना, ऐसा कुछ हुआ मेरी शांति भंग हो गई, मतलब शांति थी भंग हो गई. खुशी हम अभी आज हम कहते हैं खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, कहाँ मिलेगी? मॉल्स में चले जाओ, लंदन घूमा, कहीं भी चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, ओशन में चले जाओ, नहीं मिलने वाली. इट्स समथिंग इनसाइड मी, इट्स ऑलरेडी देयर. एक्चुअली राजयोग का मेडिटेशन जब हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो जो सबसे प्रोफाउंड रियलाइजेशन थी वो ये थी कि ये जो चीजें हम ढूंढ रहे हैं, चाहे वो खुशी है चाहे शांति है, ये एक्चुअली चाहिए नहीं, ये एक्चुअली ऑलरेडी है. अब क्या करना, सिर्फ उसको मेंटेन करना, उसको पहले रिकग्नाइज करना, उसको अपनी अवेयरनेस में लाना है और उसको मेंटेन करना है. ये ध्यान रखना कि वो गुम ना हो, लीकेज ना हो किसी भी तरह.
1: कैसे जाने, ये आपने बहुत सुंदर बात ये कही कि कस्तूरी गंध अपनी ही थी लाइक
0: समवेयर,
1: लेकिन वो कहाँ है?
0: इससे पहली बात तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना पड़ता है. अभी हम कहते रहेंगे मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, है ही नहीं, ढूंढते रहेंगे तो उसी स्थिति में रहेंगे. अब समझ में आ गया कि खुशी तो है ही ना, व्हाट एम आई राइट नाउ, क्या है? खुश तो हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ध्यान क्या रखना है सिर्फ कि अगर कनुप्रिया ने कोई ऐसा शब्द कह दिया जो मुझे ठीक नहीं लगा, मैं अपसेट ना हो जाऊं, क्योंकि फिर वो जो खुशी मेरे पास है वो शायद थोड़ी सी लीकेज हो जाएगी. एक ग्लास है, हम कहते रहते हैं जी मैं खाली हूं अंदर, मुझे भरना है, खुशी से भरना है. बट वी हैव रियलाइज नाउ कि वो ग्लास एक्चुअली ऑलरेडी भरा हुआ है, वो फुल है. वी आर फुल ऑफ लव, वी आर फुल ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन हम बहुत छोटी छोटी बातों से उसको लीक होने देते हैं,
1: उसकी छेद करते जा रहे हैं.
0: बिल्कुल, ये परिस्थिति ऐसी हुई, मैं अशांत हो गया, ये ऐसा हुआ, मेरा मन परेशान हो गया, हम उसको लीकेज बहुत जल्दी होने देते.
1: इतने सालों में कहीं हम, क्योंकि हमने अवेयर ही नहीं हुए. आज अगर मैं अपने आप को देखती हूँ, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, कि इतने सालों में हमने इतनी लीकेज तो नहीं कर ली कि कहीं वो सब निकल गई है?
0: ऐसा नहीं है, इट्स अगेन जस्ट गोइंग बैक टू द अवेयरनेस, बिकॉज वो ऑलरेडी है, वी आर फुल इनसाइड. आप देखो, खुशी चाहिए भी क्यों, पहली बात, शांति चाहिए भी क्यों, क्योंकि एक्चुअली शांति हमारी अपनी ओरिजिनल नेचर है. वी लाइक पीस. हम कितना भी गुस्सा कर दे सारा दिन में, हमें फिर भी गुस्सा पसंद नहीं आता, हमें शांति पसंद आती है. जैसे ये शरीर पांच तत्वों का बना है, पानी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसका. हम भाग कर आएंगे, हम कहेंगे पानी पिला दो, पानी चाहिए. उस समय चार लिक्विड्स और कोई पड़े हो, नहीं, पानी, एनीथिंग टू डू विद वॉटर, क्योंकि वॉटर का लेवल कम हुआ ना, तो वाटर ही तो चाहिए फिर उसके लिए. तो अब शांति का लेवल कहीं कम लग रहा है, तो सारा दिन कह रहे हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए. क्यों? क्योंकि हम शांति के बने हुए हैं. आई एम पीसफुल, तभी आज फील हो रहा है कि शांति चाहिए. अगर इफ आई हैड नेवर एक्सपीरियंस दैट पीस, आई वुडंट इवन नो व्हाट पीस इज.
1: तो मेरा मूल में जो है वो खुशी,
0: दैट्स माई ओरिजिनल नेचर, दैट्स माई ओरिजिनल संस्कार. अगर आप अभी एक मिनट भी सिर्फ बैठो और अपने आप से कहो कि मैं हूं ही शांत स्वरूप, क्या है? I am peaceful. That itself, just that thought that I am a peaceful being, it makes all the difference. And अभी तक हम बोलते थे मैं गुस्से वाली हूँ, मैं गुस्से वाली हूँ, मैं गुस्से वाली हूँ. तो जो चीज की अवेयरनेस में हम रहेंगे और उसको बार बार बार बार रिपीट करेंगे, वो री इन्फोर्स हो जाएगा. हम बार बार कहें मैं हूँ ही गुस्से वाली, मैं हूँ ही गुस्से वाली, तो वो गुस्से का संस्कार और पक्का हो जाएगा. मेडिटेशन मीन्स रोज अपने आप से बात करके अपने आप को याद दिलाना कि मैं हूं ही शांत स्वरूप, दैट इज माय नेचर,
1: मैं हूं ही हैप्पीनेस,
0: एब्सोल्युटली आनंद का स्वरूप हूं मैं. हैप्पीनेस इज माय नेचर, आई डोंट वांट हैप्पीनेस, आई एम मेड आउट ऑफ इट, इट्स माय ओरिजिनल क्वालिटी.
1: वंडरफुल सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें खुशी का सही स्वरूप दिखाने के लिए.

आपको बता दें कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज इस पूरी श्रृंखला में हम खुद को तलाशेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हमारे अपने ही अंदर है। आज हमने जाना कि खुशी हमारे अपने पास है। अगली कड़ी में हम ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जो खुशी को हमसे दूर ले जा सकती है और कैसे हम उसे अपने अंदर कायम रख सकते हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, इस श्रृंखला का एक हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 9873666555। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर इसी के साथ अब दीजिए इजाजत, अगली कड़ी में खुशी को फिर तलाशेंगे साथ मिलकर। नमस्कार।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यान पिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार.
2: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है, उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं. अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे की 8 घंटे की नींद थी, मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था. मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको. अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं, 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ. और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज. अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं.
4: कभी आपने काउंट किया है, कभी गिना है? हम में से कुछ लोग दिन में 2 बार भोजन करते ही हैं, कुछ शायद उससे ज्यादा करते हैं. कई तो भोजन के साथ ऐसा रिश्ता निभाते हैं जैसा जन्म जन्म का साथ है, एक पल भी नहीं छूटता भोजन के साथ रिश्ता. और कई ऐसे होते हैं जिनको भोजन मिलता ही नहीं है. लेकिन इन सब में एक बात तो कॉमन होती है, और वो क्या? ये भोजन हम तक पहुंचाता कौन है? जी हाँ, आप में से कईयों ने सही जवाब दिया. ये भोजन हम तक पहुंचाने वाले हैं हमारे किसान भाई. यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आप सबका स्वागत करता हूं. और आज के हमारे कार्यक्रम में मैं आपके साथ, आपके बीच में, हमारे एक ऐसे किसान भाई को लेकर के आया हूं जिन्हें वर्ष 2022 में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया. आज हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सेठपाल सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जगह से हैं. दोस्तों, मेरा और आपका, हम सबका रिश्ता भोजन के साथ कैसा गहरा होता है? किसी किसी का दिन में 2 बार, किसी किसी का दिन में कई बार, और किसी किसी को शायद दिन में 1 बार भी भोजन नसीब नहीं होता. लेकिन इस भोजन के रिश्ते में जो सबसे बड़ा अहम भूमिका, जिसने सबसे बड़ी निभाई हुई होती है, वो कौन है? आपका जवाब सही है, एक किसान. एक किसान ही वो अन्नदाता होता है जिसके परिश्रम से भोजन मुझ तक, आप तक, हम सब तक पहुंचता है. यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आज आपके बीच में एक ऐसे ही अन्नदाता को लेकर के आया हूं जिन्हें वर्ष 2022 में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया. आज यशस्वी भारत के हमारे कार्यक्रम में रेडियो मधुबन सुन रहे आप सभी श्रोताओं के लिए हम लेकर के आए हैं श्री सेठपाल सिंह जी को, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नंदी फिरोजपुर जिले से हैं. सेठपाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में हमें समय देने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत स्वागत भी है.
5: संतन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं.
4: सेठपाल जी, पहले तो आपको मुबारक हो कि आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया. ये मैं समझता हूँ एक आपके अकेले का सम्मान नहीं, पूरे किसान वर्ग का सम्मान है. जहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी को पूछा जाए आप क्या करते हैं या आपके पिताजी क्या करते हैं, तो कई ऐसे बच्चे हैं जो ये बोलने से कतराते हैं कि मेरे पिता किसान हैं या हमारा कृषि से संबंध है. क्योंकि लोग तो सम्मान शायद उन्हीं व्यवसायों को देते हैं जो कि या तो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं आदि. किसान को सम्मान शायद आज तक उतना नहीं मिला जितना उसे मिलना चाहिए. इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे?
5: ये शांतनु जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये. देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद अदा करने अपने भारत सरकार को, अपने प्रधानमंत्री जी को, जब सब बने हैं उन्होंने किसानों के बारे में बात करने शुरू की है. और उसमें भी मैं उस समस्त किसान बिरादरी का एक अकेले सेठपाल का सम्मान नहीं है, ये पूरे गांव का, अक्षेत्र का, मेरे पूरे किसान समाज का एक सम्मान है, जिसमें पद्मश्री, एक किसान को भी पद्मश्री मिल सकता है, ये तो एक सपना था और हम लोगों ने कभी इसके लिए सोचा भी नहीं था कि हम लोगों को भी ये सम्मान, कभी हमको समझते भी नहीं थे हम लोग, तो एक वास्तव में ये मेरा नहीं, मेरे पूरे गांव का, क्षेत्र का, समाज का, मेरे पूरे किसान बिरादरी का सम्मान है और इससे ज्यादा गौरवान्वित किसान नहीं हो सकता। आज किसान का बेटा भी ये कहे कि मैं किसान का बेटा हूँ, क्योंकि कृषि सबसे उत्तम व्यवसाय है, कृषि सबको भोजन देती है, पर्यावरण का संरक्षण करती है, जल के बारे में संतुलन और तमाम तरह के करती है, उत्तम भोजन देती है, पौष्टिकता देती है, तो इस कृषि के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भोजन सबको चाहिए, अच्छे गुणवत्ता युक्त चाहिए, तो ये वास्तव में एक मैं पूरे किसान समाज का सम्मान है और पद्मश्री मिलने के बाद तो हम अपने आप को किसान समुदाय बहुत भाग्यशाली समझते हैं।
4: हम आपकी कहानी में और गहराई से जाना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक कड़ा सवाल पूछना चाहूंगा कि कभी आपके सामने ऐसा कोई मौका आया है या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि जब आपके परिवार में या आपके बच्चे या कोई और को आपने ऐसा हिचकते हुए देखा है कि वो अपने को किसानी से या कृषि से जोड़ने में थोड़ा हिचक रहे हों, कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ है?
5: नहीं, ये निश्चित रूप से हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। जब हम, ये एक बहुत संघर्ष की कहानी है, हमको तो लोग बाग ये बोलते थे ये तो बेवकूफ है, पागल है, और जब कहीं जाकर के भी ये कहते हुए हम किसान, तो वास्तव में उस किसान को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान की दृष्टि से लोग बाग नहीं देखते, तो ये बड़ा, ये तो कटु सत्य है और इसका कई बार सामना हम लोगों को करना पड़ता था। वास्तव में जैसे बताया, किसान का बेटा अपने आप को ये कहने से शर्माता है कि मैं किसान का, ये तो सच्चाई है।
4: तो जब आपके सामने इस प्रकार की सच्चाई आती है सामने, तो आप उसका सामना कैसे करते हैं? आप अपने को क्या दिलासा देते हैं या क्या वो सेल्फ टॉक करते हैं आप अपने साथ, जिससे आपका आत्मसम्मान बना रहे? क्योंकि मैं समझता हूँ ये बाकी किसानों के लिए या उनके बच्चों के लिए जानना भी जरूरी है कि जब आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आए जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, तो कौन सा वो चीज, कौन सी वो बात हमें याद रखनी चाहिए जिससे हम हमारे आत्मसम्मान को गिरने न दें?
5: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कृषि सबसे उत्तम व्यवसाय है और एक पहले कहावत है राजस्थान करने की, उत्तम खेती मध्यम बाग निषिद्ध चाकरी भीख निदान, और उसके बाद भी आगे जो हल जोते खेती वाकिन और नहीं तो जाके ताके। तो जो किसान हल जोतता है, धरती माता का सीना चीर करके अन्न उत्पन्न करता है और तमाम चीज सबको अच्छा भोजन और उसके बारे में, तो उस किसान से ज्यादा सम्मान, उससे ज्यादा स्वाभिमानी और उससे ज्यादा ईमानदार तो मैं दूसरे व्यवसाय को बिल्कुल भी नहीं समझता। तो ये तो सबसे उत्तम व्यवसाय है और जब तक हमारा देश का आम जनमानस किसान के प्रति ये सोच नहीं रखेगा कि वास्तव में हमारी जो जरूरत है, हमारा जो तमाम तरह का स्ट्रक्चर है वो केवल किसान से ही संभव है, तो तब तक हम उसमें वो सम्मान पाने के हकदार जो किसान को मिलना चाहिए वो उससे हम वंचित हैं। और ये हम लोगों को अपने आप को गौरव होता है कि हम भी भारतीय किसान हैं।
4: तो दोस्तों, आपने सुना सेठपाल जी ने क्या कहा कि हमेशा ये याद रखना है कि उत्तम कृषि,

0: सो कृषि जैसा उत्तम व्यवसाय कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि कृषि के द्वारा ही हम तक भोजन पहुंचाने का उत्तम श्रेष्ठ कर्तव्य हमारे सभी किसान भाई बहन निभाते हैं। तो आज से आपके सामने अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कृषि से जुड़ा हुआ है, उसका दिल से जरूर सम्मान कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारी चर्चा में। सेठपाल जी, शुरुआत करते हैं आपके जीवन से कि कहां से आपके दिल में ख्याल है कि आपको कृषि के साथ ही जुड़े रहना है, क्योंकि जब आप बड़े हो रहे थे तो आपने अपने आसपास में कई प्रकार के व्यवसायों को उपजते देखा है, कई लोगों को कृषि छोड़कर के कई अन्य व्यवसाय में जाकर के बहुत लाभ पाते हुए देखा है। तो ऐसे में कभी आपको मन नहीं किया कि मैं ये व्यवसाय छोड़कर के कुछ और करता हूँ?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है संतुल जी। मेरा जो पृष्ठभूमि है किसान की है, मेरे पिताजी ताऊ जी सब खेती करते हैं और हम लोग छह भाई हैं। उन छह भाइयों में मैं दूसरे नंबर का हूँ। और हमारी जो पढ़ाई है, प्राइमरी पढ़ाई हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर मलयपुर में हुई है, और उसमें हम धमोला नदी में से निकल करके जाते हैं। और मैं आपको बड़े उससे कहता हूँ कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक हमने कभी जूते नहीं पहने, क्योंकि आते भी और जाते भी उस धमोले में उनको निकल के जाना पड़ता था, पगडंडी का रास्ता था। उसके बाद 8वीं पास करने के बाद हमारे पिताजी ने, हमारे पिताजी ताऊ जी बिल्कुल अनपढ़ थे, हमारे परिवार में कोई भी माताजी कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हम अपने पिताजी का ताऊ जी का धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने हमको सहारनपुर में पढ़ाया। पढ़ाने के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का BEMS का 3 साल का कोर्स किया, 1 साल उसमें MD किया। इसको करने के बाद 92 में गांव में मैं वापिस आया पढ़ाई पूरी करने के बाद। चूंकि किसान थे तो किसान के स्कूल की जब छुट्टियां चल जाती तो हम अपने गाय चुराने भी जाते थे, अपना खेत में काम तो हम कंटिन्यूस करते ही थे। तो फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। प्रैक्टिस स्टार्ट के बाद 95 का एक पंचायत का चुनाव आया और उसमें ग्रामवासियों ने कहे भाई हम आपको ग्राम प्रधान बनाए। महिला सीट थी, हमने अपने भाभी जी, जो हमारी भाभी जी ग्रेजुएट थी उस टाइम, हमारे भाई साहब पंजाब नेशनल बैंक में सर्विस करते थे, तो हमने उनका पर्चा बनवा दिया और वो प्रधान चुनी गई। इस क्रम में जब चुके सब लोगों को आना जाना, उससे पहले हम ABCD कुछ भी नहीं जानते थे, तो हमारे बीच में एक इंद्रपाल सिंह तोमर किसान सहायक एक पोस्ट है हमारी कृषि विभाग में, वो आए और उन्होंने आने के बाद कहा भाई आप जो ये गन्ना गेहूं धान की खेती करते हैं इसे आप कृषि विविधीकरण की तरफ लेकर जाएगा। तो हम लोगों ने उनकी, वो इतने अच्छे थे, हमारे खेत पे जाना समय समय पर पूरा कुछ बना। सबसे पहले मैंने 2 बीघा फ्रेंच बीन की खेती से स्टार्ट की, हमने गांव के बराबर में था, जब हम उसमें निराई गुराई काम करते थे तो लोग बाग मजाक बनाते थे, अरे प्रधान जी आप लोग ये क्या काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उसमें कभी भी कोई हिमाकत इंसल्ट महसूस नहीं किया। उसके बाद फिर उसमें कीट पतंगों की समस्या आई तो वो लोग हमको कृषि विभाग में लेकर के गए, उद्यान विभाग में हम लोग गए, फिर हमारा संपर्क आया कृषि विज्ञान केंद्र से, जो कृषि विज्ञान केंद्र जो एक तकनीकी का केंद्र है, और वहां से जो हमारे KVK की टीम थी, डॉक्टर RN यादव जी, डॉक्टर KK सिंह जी, डॉक्टर AK मिश्रा जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, तो वो बहुत ही ज्यादा उन लोगों का इतना लगाव था, जब भी हम कोई भी बात करते थे तो हमको तुरंत उसमें सबमिट करते थे, गांव में आते थे। उसी क्रम में हम लोगों ने कृषि विभाग में गोष्ठी के माध्यम से, किसान मेले के माध्यम से, उद्यान विभाग में, फिर गन्ना विभाग में, मत्स्य विभाग में, सब विभागों से हमारा आना जाना हुआ, संपर्क हुआ, वहाँ के कर्मचारी वहाँ के अधिकारी हमारे गाँव में आने लगे। फिर एक योजना चल रही भारत उत्तर प्रदेश सरकार की, किसान मित्र योजना, तो मुझे उसमें किसान मित्र बनाया गया। और उसी दौरान 1995 से लेकर के 2000 तक सहारनपुर में एक कृषि विविधीकरण की एक परियोजना चली, हालांकि जो हमारा ब्लॉक था बलिया के भी वो उस योजना में सम्मिलित नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग उनके मेलों में गोष्ठी में जाते रहे और

दृष्टिकोण फॉलो करते रहे। फिर हमने अपने खेत को इस तरह से बांटा, गन्ना भी हो, गेहूं भी हो, धान भी हो, बागवानी भी हो और सब्जी की खेती भी हो, पशुपालन भी हो, फिशरीज भी हो। तो हम लोगों ने उसको फिर इस तरीके से बना ताकि किसान की रोज आमदनी होती है। हम लोगों ने अपने प्लेन खेत में मात्र 1 फीट पानी में सिंघाड़े की खेती हम लोग करते हैं, जो लोग बाग एक वास्तव में आश्चर्य से कम नहीं समझते। और जब हम लोग सिंघाड़े की खेती करते हैं तो लोग बाग देखने आते थे, हमारा पूरा मॉडल को लोगों ने किया। इसके अंदर भी हम लोगों ने रासायनिक खाद की का प्रयोग कम हो, फसल अवशेष प्रबंधन हम लोगों ने अपनाया, जो जैव उर्वरक है हमारे उसको अपनाया, फसल चक्र अपनाया, दलहन तिलहन का समावेश किया और उसमें जितने भी हमारे चाहे ट्राइकोडर्मा हो, चाहे ब्यूवेरिया देशियाना हो, सुडोमोनास हो, वो तमाम तरह के जो हम जैव उर्वरक है उन सबको हमने अपनाया। हम लोगों ने अपने खेत में फ्रूट फ्लाई जैव का इस्तेमाल किया, ट्राइकोग्राम अकार्ड का इस्तेमाल किया और फेरोमेन ट्रैप का इस्तेमाल किया। और उन तमाम चीजों को अपनाने के बाद जो हमारा उत्पादन गुणवत्ता युक्त हुआ, उसके बाद जो हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ी है, आज जब हम जैविक आहार की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं या प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, उसके पीछे का जो मूल आधार है वो जीवांश कार्बन है। यदि हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारे जो हमें रासायनिक खादों के ऊपर उपलब्धता हमारी कम होगी और हमारा जो उत्पादन होगा वो गुणवत्ता युक्त होगा, उसमें कीट पतंगों की समस्या कम आएगी। तो उस तमाम उसको हम लोग सीजनली, जैसे सर्दी में मशरूम की खेती भी कर लेते हैं हम, थोड़ा सा जब हमारा देखते हैं भाई मार्केट वैल्यू कम है तो हम वैल्यू एडिशन भी कर लेते हैं। तो उस तमाम चीजों को अपना करके हमने एक ऐसा सिस्टम इजाद किया है जिससे किसान की रोज आमदनी, चाहे वो मशरूम के माध्यम से, चाहे सब्जी के माध्यम से, चाहे फ्लोरिकल्चर के माध्यम से, चाहे पशुपालन के माध्यम से, तो उस चीज को लग करके। और जैसा आपने कहा उसके बाद लोग मजाक भी बनाते हैं, हम केंचुआ पालन भी करते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आपसे बड़ा इंटरेस्ट है। पद्मश्री मिलने के बाद हमारे एक अधिकारी दिल्ली से गांव में मिलने के लिए आए। जब वो गांव में घुस रहे तो उन्होंने कुछ लोगों से पूछा, भाई हमें शेखपाल जी के यहाँ जाना है। तो वो बताते हैं कि पीछे से एक आवाज आई और एक बुजुर्ग ने कहा, किसके यहाँ जाना? कि शेखपाल के यहाँ। अरे वो तो कहीं गोबर में केंचुए ढूंढ रहा होगा। तो इस तरीके से चूंकि हम केंचुआ पालन करते हैं तो लोग बाग हमारा उपहास भी करते थे, अभी भी लोग बाग तरह तरह की बात, लेकिन हमने कभी उनका प्रभाव नहीं किया और हमने अपने मिशन को। और सबसे बड़ी जब इसी क्रम में मुझे, मैं आपसे बताऊं, 96 में हमने सबसे पहले जीरो टिलेज का हमने धान के खेत में इस्तेमाल किया। और जीरो टिलेज में जब हमने सड़क के किनारे खेत था, जब धान का ठूट एक एक डेढ़ फीट का हो और उसमें हमने गेहूं की बिजाई कर दी, तो घर वालों ने भी विरोध किया, भाई तुम क्या कर रहे हो। और जो लोग आने जाने वाले थे सड़क के किनारे, वो कहते थे भाई ये तो बेवकूफ हो गए, इसमें खाएंगे गेहूं। लेकिन उसके बाद जर्मिनेशन हुआ, पहला पलेवा लगाया, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की, खरपतवार की दवाई डालने के बाद जब सेकंड पानी देने के बाद ही, तो उस टाइम हमारा गेहूं का उत्पादन जीरो टिलेज से 4.5 क्विंटल प्रति बीघा आया है, जो उस टाइम का एक रिकॉर्ड उत्पादन है। और उसमें मुझे हमारे जनपद डीएम साहब ने कृषि विभाग की तरफ से क्रॉप कटिंग के बाद मुझे किसान सम्मान का एक प्रशस्ति पत्र दिया था, 6,000 रूपए मुझे इनाम दिए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने, हम लोग आगे बढ़ते चले गए, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और मुझे जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हो, कृषि विभाग के माध्यम से हो, गन्ना विभाग के माध्यम से हो या उद्यान विभाग के माध्यम से हो, तमाम पुरस्कार

0: लोगों को मिले हैं और गन्ने के साथ हम लोगों ने सह फसल ट्रेंच मेथड को सबसे पहले हमने अपनाया। मैं आपसे बताऊं जब हम लोगों ने ट्रेंच से सिंगल बर्ड से हम लोगों ने गन्ने की बिजाई की लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट की और सिंगल बर्ड से आंख की दूरी 1 से 1.5 फीट की, तो तब भी हमें लोगों ने देखो रहे हैं क्यों खेत खराब कर रहे हैं बिना मतलब के। लेकिन जहां लोग 5 से 6 क्विंटल बीज प्रति बीघा इस्तेमाल करते हैं वहां हम लोगों ने 80 से 85 केजी सीड का इस्तेमाल करके और जो उत्पादन बढ़ाया है हमने उस पर ट्रेंच की जो पैदावार है वो 100 क्विंटल प्लस लियर। उसके बाद में चाहे उसके बीच में हम लोगों ने चाहे सरसों की खेती, आलू की खेती, प्याज की खेती, लहसुन की खेती, चाहे सब्जी की खेती, खीरा, ककड़ी, लौकी, टिंडा और इन तमाम चीजों को हम लोगों ने अपना करके अपना जहां फसल चक्र भी अपनाया गया है, जीवांश कार्बन की मात्रा भी बढ़ी है, दलहन तिलहन का समावेश भी हुआ है, तो उस सबको लेकर के हमने इसके बाद मुझे 2010 में प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड ICAR ने दिया। 2012 में हमें इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड ICAR IRI ने दिल्ली में दिया। उसके बाद 2015 में जगजीवन राम कृषक अभिनव पुरस्कार और 50,000 रुपए की राशि के साथ वो दिया गया और 2022 में ही पद्मश्री अनाउंस के बाद एनजी रंगा डाइवर्सिफाइड फार्मर अवार्ड वो पहले भर दिया था हम लोगों ने, उससे भी हमें भारत सरकार ICAR ने सम्मानित किया है। तो मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने किसान राष्ट्रपति को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम लोगों ने एक निरस व्यवसाय जिससे लोग भागते हैं, बच्चा किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता, एक सच्चाई और भी है, यदि 50 बीघा किसान का बच्चा खेती करने लग जाए तो हमारे समाज में उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं होते लोग बाग, उससे पहले एक चपरासी लग जाए उसकी शादी ज्यादा कर लेते हैं। तो ये एक जो दुविधा है, ये एक गलत सोच है, इसको भी हमें बदलने की जरूरत है। और किसान कृषि इतना बड़ा है जिसमें हजारों स्किल हो सकते हैं, हजारों प्रयोग हो सकते हैं, उसमें असीम संभावनाएं हैं। और जब तक मेरे युवा, पढ़े लिखे युवा हमारे पोस्ट ग्रेजुएट चाहे हॉर्टिकल्चर से चाहे एक्सटेंशन से वो पढ़ करके कृषि विभाग में आएंगे, तो तब तक एक नई क्रांति लाने की जरूरत है, क्योंकि कृषि सबसे उत्तम व्यवसाय है। और आज के परिवेश में गुणवत्ता युक्त भोजन हर मनुष्य की चाहत है और जरूरत है। तो मैं इसी उसके साथ में, क्योंकि कृषि एक बहुत पुण्य व्यवसाय है, इसमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, बीज लगेगा।
1: ये जो आपने कहा कि कृषि एक बहुत पुण्य व्यवसाय है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आजकल जमाना ही फास्ट फूड का है, लोग भोजन भी शॉर्टकट में करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये जो शॉर्टकट मानसिकता है, शॉर्टकट में हमको सक्सेस मिल जाए, शॉर्टकट में हमें रिद्धि सिद्धि मिल जाए, शॉर्टकट में हमें सफलता मिल जाए, शॉर्टकट में हम परीक्षा से पास हो जाए, शॉर्टकट में हमें नौकरी मिल जाए, शॉर्टकट हर चीज का हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि कृषि का तो कोई शॉर्टकट है नहीं, लेकिन कृषि में आपने ये भी बताया कि बहुत उन्नत व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, बहुत इनोवेशन किया जा सकता है, बहुत नवीनता लाई जा सकती है। आपको क्यों ऐसा लगता है, क्या कारण है कि देश का किसान जो है आपके जैसा नहीं सोच पा रहा? कौन से कारणों की वजह से देश का किसान जो है आज भी वो पुराने तकनीकों से काम कर रहा है या जूझ रहा है सफलता पाने में, लाभ पाने में? क्यों बहुत गिने चुने, मतलब मैं समझता हूँ मैं उंगलियों में, मुट्ठी भर भी नहीं कह सकेंगे, उंगलियों के रेखाओं में गिना जा सकता है, इतने ही कम हैं ऐसे किसान जो कि रिस्क लेना जानते हैं, कुछ नया करना जानते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
0: देखिए अंतुल जी, बिना रिस्क के कोई भी व्यवसाय हो चाहे कृषि का है वो नहीं हो सकता। और जब हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो

0: क्योंकि हम गन्ना गेहूं धान ये फसल करते हैं, सरकार से MSP की मांग हम करते हैं। हमारा कहना ये है जिस दिन मेरे देश का किसान कृषि विविधीकरण को अपनाएगा तो वो अपना उत्पाद MSP पर नहीं, हर व्यक्ति अपने माल को MRP पे बेचता है, तो हम अपने माल को MRP पे किस तरह से बेच पाए इसके बाद में बैठकर उसे चिंतन करना होगा।
1: ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है सेठपाल जी की हर किसान जब तक कृषि विविधीकरण नहीं समझ लेता और उसको अपनाता नहीं है तब तक सफलता उससे दूर है। हमारे श्रोता साथियों में कई ऐसे किसान भी हैं, कई ऐसे हैं जो कृषि से थोड़े दूर हैं। उनके सुविधा के लिए अगर आप इसको बहुत सहज भाषा में समझाना चाहें कि कृषि विविधता क्या है या कृषि विविधीकरण क्या है तो उसका हम बहुत बहुत आभारी होंगे।
0: देखिए बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने किया है। कृषि विविधीकरण, अगर मेरे पास 10 बीघा जमीन है तो मुझे उस 10 बीघा जमीन को बैठ करके मुझे उसके ऊपर चर्चा करनी, मेरे खेत में गन्ना भी हो, गेहूं भी हो, धान भी हो, दलहन तिलहन भी हो, सब्जी भी हो, एक कोने में हल्दी भी हो, मिर्च भी हो, लहसुन भी हो, प्याज भी हो, आलू भी हो, सब कुछ हम तो एक बैठ करके हम लोगों ने, मेरा अगर गेहूं कटेगा गेहूं के साथ में सरसों भी काटूंगा, उसके बाद में ये फसल लगाऊंगा, इसके बीच में मुझे ये फसल लेनी है, तो उसको बैठ करके हम लोगों ने एक अपनी पहले से रणनीति तैयार करनी हो। और जब देखिए मार्केट में मांग और आपूर्ति का नियम, हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की सत्ता का रास्ता किसान के खेत और खलियानों से होकर के गुजरता है। हमारा एक और रास्ता है, हमारा किसान को अपनी दूरदृष्टिता अब उस बात पर रखनी चाहिए बाजार के ऊपर, किस चीज की मांग है, किस चीज की आपूर्ति और मांग और आपूर्ति का नियम है। तो जिस दिन हमारा किसान ये ठान लेगा अपने मन में कि मुझे ये संतुलन बनाना है, उस दिन हम सबसे श्रेष्ठ किसान होंगे, हमारी आमदनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपसे बताऊं, जब राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा हमें अवार्ड देने के बाद अशोका हाल की गैलरी में माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमसे मिलने के लिए आए तो मैंने उनसे कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों ने आपके विजन को आगे बढ़ाया है, आपकी जो सोच है भाई किसान की आमदनी कैसे बढ़े, तो उन्होंने मुझसे पलट करके कहा था, नहीं सेठपाल जी आप तो छोटे किसानों की चिंता करने वाले इंसान हैं। सर जब मुझे समझ में आया है कि वास्तव में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे इस मॉडल को इतना ज्यादा प्रधानमंत्री जी गहराई से लेकर के जाएंगे, तो वास्तव में मैं समझता हूँ हमारा छोटे से छोटा किसान इस मॉडल को अपना करके तो निश्चित रूप से हम एक बहुत अच्छी आमदनी उसमें कर सकते हैं और देश के और राष्ट्र निर्माण में हम महान योगदान दे सकते हैं।
1: ये जो आपने बात कही कि देश के और राष्ट्र के निर्माण में हम छोटे से छोटा भी हो लेकिन योगदान हमें जरूर देना चाहिए, चाहे मैं किसान हूँ, चाहे मैं रिक्शा चलाता हूँ, चाहे मैं RJ हूँ, या चाहे मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं घर में गृहिणी हूँ, हम में से हर कोई देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में आपकी मान्यता के हिसाब से आज वो बच्चे जो चाहे हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं या कृषि विज्ञान की तरफ पढ़ रहे हैं, या ऐसे बच्चे जिनके परिवार में कृषि का संस्कार है किसी न किसी रूप में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी किसी न किसी तरीके से कृषि के साथ जुड़ करके देश का और कृषि का मान बढ़ा सकते हैं?
0: देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मेरे युवा साथी हैं, किसान के बेटे हैं, जो एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, तमाम चीजों से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, वही तो किसान की रीढ़ है। जब वो बच्चे सरकारी नौकरी की भागम भाग को छोड़ करके उन तमाम टेक्नोलॉजी को, उस ज्ञान को जब कृषि के क्षेत्र में लेकर के जाएंगे गहनता के साथ में, जो वो आइडियल बनेंगे और वो तमाम तरह के स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तमाम तरह की वैल्यू एडिशन करेंगे।

0: है तो वो निश्चित रूप से हम रोजगार देने वाले बनेंगे, हम रोजगार लेने वाले नहीं बनेंगे। और कृषि में इतनी अपार संभावनाएं हैं, मैंने पहले भी कहा है, वो कभी कम नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा, उसी से हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया।
1: ये जो आपने जो बताया कि हम रोजगार देने वाले बने ना कि लेने वाले, ये एक बहुत बड़ा मंत्र बन सकता है किसी भी युवा साथी के लिए जो सुन रहा है। लेकिन आपने ही अपने अनुभव में पहले भी कहा कि कृषि जो है ना वो सरलता से करने वाला कार्य नहीं है, इसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है। और आज का जो समाज है उसको अगर आप देखें तो लोगों को आराम करना कुछ ज्यादा ही भाने लगा है, फोन पे ही लगे रहना, सोशल मीडिया पे लगे रहना, तो एक ऐसा आराम पसंद जिंदगी लुभाने लगा है आज की युवा पीढ़ी को कि खेत में उतर के धूप छांव से गुजरते हुए मेहनत करना शायद थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या अगर क्या किया जा सकता है ऐसे में?
0: देखिएगा, यदि हम मेहनत की बात करते हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे या हम दुकानदार के, वो दुकानदार भी हमारा सुबह 9 बजे से खोल करके रात को 10 बजे तक दुकान खोलता है, पूरा समय अपने उस पर देता है। किसान का जो समय है उसके पास में ना दिन है ना रात, एक टाइम पे वो जून की गर्मी के में 12 बजे भी खेत में होता है और जब जनवरी और दिसंबर की कड़ाके की ठंड रात को 12 बजे तक भी उसको खेत में, तो उसके पैर में चप्पल भी नहीं है, उसके सर पर कपड़ा भी नहीं है, वो पानी में भी घुस रहा है, वो सब कुछ करता है, लेकिन वो एक जुनून होता है और जुनून जब आदमी के मन में आता है तो किसी भी कार्य को पर गुजरता है। यही जुनून किसान के अंदर जब आता है तो वो उस सब को भूल करके, उस सब ऐसो आराम को भूल करके, वास्तव में बहुत कड़ी मेहनत है। आज के समय में मजदूर की समस्या है, हमारे खुद के बेटे, किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो उसमें तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, पैदल लगानी पड़ेगी, जुनून बनाना पड़ेगा, तभी हम उसको एक कारगर रूप दे सकते हैं।
1: मतलब चाहे कोई भी कार्य हो, भले किसानी हो या कुछ भी हो, उसमें जुनून तो जरूर चाहिए। जुनून और हौसला अगर नहीं है तो कोई भी कार्य में हम सक्षम या सफल नहीं हो सकते। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि जैसे आपने बताया कि किसान का बेटा या किसान के बच्चे जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, वही किसान का रीढ़ है, क्योंकि वो उस नवीनता को कृषि में ला सकते हैं। मैं तो समझता हूँ सिर्फ किसान का बेटा नहीं, बेटी भी ये कार्य कर सकती है। और शायद कहीं ना कहीं ये जो हमारे समाज की सोच है कि केवल जो है एक प्रकार का वर्ग ही हमारे जीवन को आगे लेके जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, वो घर को भी संभालती हैं। और अगर एक जमीन का टुकड़ा एक बेटी को दिया जाए और एक जमीन का टुकड़ा एक बेटे को दिया जाए और दोनों में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो कि देखते हैं तुम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा करता है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा वातावरण डेवलप होगा। और बेटियों को भी जरूरत होगी इस प्रकार के एक रुझान की, बेटियों को भी आवश्यकता होगी इस प्रकार की एक शिक्षा दीक्षा की, जहां पर उन्हें भी एक मौका मिले कि कृषि में वो क्या कर सकती हैं, क्योंकि देखा जाए धरती भी माँ है, तो कहीं ना कहीं माँ बेटियों बहनों को भी अगर मौका मिले तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा कुछ कमाल कर सकती हैं। आपका क्या कहना है इस मामले में?
0: देखिए, बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, वो बेटी वास्तव में उस बेटे से ज्यादा संस्कारित है। मैं आपसे बताता हूँ, जितनी भी हमारे यहाँ खेतों में काम करती हैं, वो मैक्सिमम बेटियां और महिलाएं ही है, पुरुष काम कम करता है, बेटियां हमारी जो है महिलाएं वो ज्यादा काम करती हैं। तो इसमें कोई बिल्कुल भी दो राय नहीं है, बेटियां भी आज किसी की मोहताज नहीं है, वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के खेत में अपने को संभालती है, काम करती है, तो वो तो हमारे भारत की एक रीढ़ है, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो बेटियां भी हमारे लिए उतनी है जितना बेटा, और वो भी कृषि क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते, इसमें कोई शंका नहीं।
1: तो मैं समझता हूँ सेठपाल जी, आपने जिस प्रकार से कृषि में विविधीकरण किया और कई किसानों के जीवन को बदलने का आपने एक बहुत सुंदर रास्ता शुरू किया है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप ही वो एक यशस्वी किसान हो सकते हैं जो कि महिलाओं को उनका हक

0: धरती पे जमीनी हक जो है या कृषि से रिलेटेड जो उनको ज्ञान चाहिए या मोटिवेशन चाहिए वो दिलाने में आप एक अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।
1: देखिए, इसके लिए जितना भी प्रयास बहन बेटियों को ज्यादा से ज्यादा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो और कृषि क्षेत्र में, चूंकि कृषि एक जीवन का आधार है, कृषि एक स्वास्थ्य का आधार है, कृषि जैसे मैंने पहले कहा है हमारे समस्त ब्रह्मांड को जोड़ने वाला, उसको एक ऊंचा नया आयाम देने वाला एक पेशा है, तो उसमें जो महिलाओं को है यदि कहीं भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम बढ़ चढ़ करके उन अपनी बहन बेटियों के लिए काम करेंगे और उनको एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरणा।
0: शेखपाल जी, आपकी इस बात का और आपके इस वचन का मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथियों पे बहुत बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि हमारे कई श्रोता साथी ऐसे हैं जो कि सुन रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि काश मैं भी थोड़ा सा किसानी में कुछ जानता, कुछ कर पाता या कर पाती। और मैं समझता हूँ शेखपाल जी का ये वचन कि जो भी महिला बहने आगे बढ़ना चाहती है कृषि के क्षेत्र में, उन्हें वो बहुत सहयोग देंगे। तो मैं समझता हूँ साथियों, आपका ये मौका है, सोचिए अगर आप कृषि के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसा अच्छा मेंटर है जो कि आपको मदद कर सकते हैं। शेखपाल जी, उत्तर प्रदेश की भूमि तो बहुत मैं कहूंगा सौभाग्यशाली भूमि है, क्योंकि गंगा यमुना का उसमें बहुत सारा वरदान है और भी कई चीजें हैं जहां पर आप शायद कृषि की विविधीकरण को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसी जगहें जैसे राजस्थान या गुजरात की कई ऐसी जगह है जहां विविधीकरण करना थोड़ा इतना सरल नहीं होगा। जैसे हम जहाँ रहते हैं माउंट आबू में, हमारे आसपास में किसानों के लिए वही भौगोलिक परिस्थितियां शायद नहीं होंगी जो उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में भी अगर कोई किसान विविधीकरण करना चाहे तो कौन सी चीजों को उसको ख्याल में रखना चाहिए?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। गंगा यमुना का जो दुआब है हमारा, हम लोग गंगा यमुना के दुआब में रहते हैं। वास्तव में यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ मिट्टी है और हम सब फसलें यहाँ कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने राजस्थान के बारे में, माउंट आबू के, गुजरात के या कई चीजों के, अभी हम लोग वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहे हैं और उसमें मोटा अनाज श्री अन्न का जिसमें हमें संज्ञा दी गई है, और ये जो मोटे अनाज है ये हमारे पानी की कम जरूरत है, उनको सिंचाई की कम जरूरत है, खाद की कम जरूरत है, वो हमारे पौराणिक इतिहास में जो विलुप्त प्रजातियां होने की कगार पे थी उन सबको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिनके अंदर पोषकता ज्यादा है, तो हम उन तमाम चीजों को श्री अन्न के रूप में मोटे अनाजों को क्षेत्र वाइज उगा करके नई नई प्रजातियों को मतलब इकट्ठा करके हम उसके चीज में हम अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में हम विविधीकरण को अपना सकते हैं। क्योंकि अलग क्षेत्र की अलग अलग प्रूफ है, किसी को पानी ज्यादा चाहिए, किसी को पानी कम चाहिए, तो जो हमारे मिलेट्स हैं, श्री अन्न जो मोटे अनाज हैं, उनमें हम एक बहुत अच्छा उत्पादन करके, गुणवत्ता युक्त उत्पादन करके, और जो सरकार की प्राकृतिक खेती की जो धारणा है उसको हम मूर्त रूप से साक्षात रूप में उसको कर सकते हैं।
0: तो साथियों, आपने सुना, शेठपाल जी ने एक बहुत अच्छा हमें रास्ता बताया कि अगर आप सोच रहे हैं कि विविधीकरण कैसे की जाए तो श्री अन्न या मोटा अन्न उगा करके भी आप विविधीकरण कर सकते हैं, जिसमें मेहनत उतना नहीं लगता, पानी उतना नहीं लगता, उपज बहुत अच्छा आता है और सबसे बड़ी बात सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आज आप मार्केट में जाएं तो चावल, दाल, गेहूं, इनसे भी ज्यादा दाम श्री अन्न का होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये चीज अब पता चल चुका है कि मिलेट्स खा करके आप आपके सेहत पर ज्यादा नियंत्रण कर सकते हैं। तो भारत की ये देन है जो भारत के पास ही है और आपके हाथ में ही है, आप मिलेट्स खाना शुरू करेंगे तो हमारे किसान भाई बहन मिलेट्स उगाना शुरू करेंगे, और जब मिलेट्स को उगाना वो शुरू करेंगे तो धरती माँ के ऊपर जो ये केवल गेहूं और धान को उगाने का जो बोझ है वो भी बहुत हल्का होता जाएगा। तो श्री अन्न एक बहुत अच्छा रास्ता

0: अगला सवाल शिल्पा जी आपके साथ, जो आपने अभी बताया कि पूरे ब्रह्मांड को जोड़ने का एक सूत्र है कृषि, तो आपकी कृषि ने आपको पूरे देश भर में भ्रमण करने का भी अवसर दिया, आप देश के जगह जगह पे गए हैं। कौन सी एक बात आपको ऐसी दिखती है पूरे भारतवर्ष में जो भारत को भारत बनाती है, कोई एक खास बात जो आपने हर जगह एक एक जैसी ही देखी, वो कौन सी एक बात है?
1: देखिए, किसानों का एक दूसरे के प्रति समर्पण, किसान का प्यार और उसका श्रम एक ऐसा वो है जो आप देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे, जब किसान किसान से जाकर के मिलता है तो वास्तव में उसके प्रति जो उसका प्रेम है, जो उसका कर्तव्य है, उसका जो बोध होता है, वो भारत को पूरे भारत से एक जोड़ता है। तो एक बहुत किसान का जो आपसी सामंजस्य है, उसका जो आपस का प्यार है, उसका जो काम करने का तरीका है, एक दूसरे के कल्चर को जानने का मौका है, वो सबको पूरे भारत को किसान के माध्यम से जोड़ता है।
0: बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि किसान का किसान के प्रति जो भावना है, चाहे वो प्रेम की हो, सम्मान का हो, या उसके दर्द को समझने की जो भावना है, वो किसान को जोड़ता है, और ना केवल किसान को लेकिन पूरे भारत को भी जोड़ता है। सेठपाल जी, एक चीज मुझे जानना था, जब आप रिस्क लेते हैं और जरूरी नहीं कि हर बीज से फसल आए ही, तो बीज डालना किसान का काम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा का या प्रकृति का या ईश्वर का या जो भी आप नाम दे उस शक्ति का, उसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है, आप मानते हैं इस बात को?
1: देखिएगा, ये तो कटु सत्य है। किसान का काम उस भूमि रूपी माता का सीना चीर करके उससे बीज रोपण का है, उसके बाद तो सब कुछ परमात्मा का है। देखिए, फसल भी किसान के साथ में बातें करती है, एक हम कहते हैं शाश्वत योगी खेती, जिसको जब हम खेत के ऊपर जाते हैं, जरूरी नहीं है जिस बीज को डालेंगे उसमें अंकुरण फूटेंगे, वो हमें पैदावार देंगे, क्योंकि किसान की फसल खुले आसमान में है, गर्मी सर्दी बरसात ओले भी पड़ेंगे, जंगली जानवर भी उसको खाएंगे, लेकिन उन सब के बाद भी चोर भी चोरी करेगा, लेकिन एक कहावत है कि यदि उसमें से गठरी बांध करके ले जाएगा तो केवल किसान ही लेकर के जाएगा। तो ये सब उस परमपिता परमात्मा का ही वो है, वही शक्ति देता है। जब किसान खेत पे जाता है मेड पे, तो उसकी फसल लहराती है, वो कहती है कि मेरा मालिक आ गया है, वो बताती है किस तरह से हमें किस चीज की जरूरत है, मैं बीमार हूँ, मुझे पानी की जरूरत है, तो वो सब कुछ उस परमात्मा का एक बहुत बड़ा रोल है, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं।
0: ये जो आप अभी अपना अनुभव सुना रहे थे, इसमें आपने शाश्वत योगी खेती का भी नाम लिया, जो कि ब्रह्मा कुमारी के ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा भी चलाया जा रहा है, एक बहुत अच्छा अभियान है, जिसमें किसान जो है यौगिक कृषि के माध्यम से, शाश्वत तरीकों के माध्यम से, योग मतलब परमात्मा के साथ अपने मन के तार को जोड़ करके, शुभ भावना शुभ कामना की शक्ति के द्वारा योग के प्रयोग से कृषि में उन्नति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी इसका कुछ उपयोग किया है या कुछ प्रयोग किया है इसमें?
1: देखिए, इसका मैं हमेशा प्रयोग करता हूँ, और वो एक शाश्वत योगी खेती जो है परमात्मा के आधार पे, वो एक बहुत बड़ी एक अदृश्य शक्ति है जो हमेशा नुकसान से निपटने की शक्ति देती है, हर तरह से वो एक साहस दिलाती है और एक मन में जुनून भी पैदा करती है, तो उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है, उसके ऊपर सब कुछ है, वो बहुत बहुत ही ज्यादा कारगर है।
0: आप में बहुत उमंग उत्साह है सेठपाल जी, आपसे बात करते हुए ये महसूस होता है कि आप बहुत खुश मिजाज भी रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसानी में हैं और बहुत परेशान हैं, लेकिन आपकी फसल में या किसानी की किसी एक बात ने आपके उस चिंता को दूर कर दिया हो?
1: देखिए, जब इंसान के साथ में हमेशा कठिनाई भी आती है, उतार चढ़ाव भी आते हैं, नफा नुकसान भी होता है, लेकिन जब किसान खेत पर जाता है, अपने श्रम को करता है, तो वहां जाकर के वो चाहे उसकी फसल खराब हो रही है, क्योंकि किसान सबसे संतोषी व्यक्ति है, पिछली सब कुछ नष्ट हो जाएगा उसके बाद फिर उसको भूल करके नहीं, तो उसको शक्ति परमात्मा देता है, तो जब अपने खेत में जाता है, अपनी फसल को देखता है, तो सब कुछ भूल जाता है।
0: देखभाल जी,

0: आप अगर पूरे भारत को अगर कुछ उनको एक मैसेज देना चाहते हैं या एक सुझाव देना चाहते हैं या एक प्रेरणा देना चाहते हैं तो वो क्या होगा?
1: देखिए, मैं तो एक किसान हूँ और किसान के माध्यम से मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ। किसान का जो पेशा है वो सबसे पुण्य पेशा है, उसमें कोई लोभ लालच नहीं। उसमें जो अपने मनोभाव से वो पैदा करता है, गुणवत्ता पैदा करता है, उसको हमारा पूरा मानव जीवन, पशु सब लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो उससे जो संतुष्टि मिलती है, जो अन्न उपजा करके, सब्जी उत्पादन करके जो किसान पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम मैं नहीं समझता कोई दूसरा पुण्य का काम है।
0: तो साथियों, आपने सुना सेठपाल जी ने एक सुंदर सा छोटा सा मैसेज दिया कि कृषि जैसा पुण्य पेशा दूसरा कोई नहीं, और कृषि के द्वारा जब संतुष्टता के आधार पर लोभ लालच से परे होकर के किसान जब अन्न उगाता है, उस अन्न को ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी तृप्त होता है, धरती माँ भी तृप्त होती है और किसान भी तृप्त होता है। तो लोभ से परे संतुष्टता के साथ, सच्चाई, सफाई, सादगी और सात्विकता के साथ जब हम अपने कार्य को करते हैं तो उस कार्य का हमें भरपूर भरपूर सहयोग प्राप्त होता है, न केवल आसपास से परंतु प्रकृति से भी, परमात्मा से भी हमें उस कार्य के लिए बहुत बल मिलता है। चाहे आप किसान हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में ये सात्विकता जरूर धारण करें। सेठपाल जी, जाते जाते हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको एक शब्द में उसका जवाब देना होगा। तो आप तैयार हैं?
1: पूछिए, यदि संभव होगा तो जरूर बताएंगे
0: जी। तो पहला सवाल, शांति क्या है?
1: अपने मन और चित्त को स्थिर करना और तमाम लोभ लालच को त्याग करके जो संतुष्टि मिलती है वही शांति है, मेरे अपने ख्याल से।
0: बहुत बढ़िया। सेवा क्या है?
1: जब मानवता के प्रति, पशु के पालन के प्रति, पर्यावरण के प्रति, भूमि के प्रति जो समर्पण है वही सेवा है।
0: प्राणी मात्र के लिए जो समर्पण की भावना है वो सेवा है। बहुत सुंदर। खुशी क्या है?
1: जब दूसरे के, मेरी वजह से दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता आती है तो वही खुशी, आनंद का रूप वही होता है।
0: बहुत बढ़िया। भारत क्या है?
1: भारत विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न मौसम, विभिन्न प्रजातियां सबको मिलकर के जो एक हमारा देश बना है वही एक भारत है।
0: कृषि क्या है?
1: तमाम तरह की विधाओं को अपने खेत में लागू करने के बाद जो अन्न उत्पन्न होता है, जो पोषणता मिलती है, जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उनको वो मिलता है वही कृषि है।
0: तो कृषि हर एक के लिए पोषण का एक माध्यम है, और जैसा आपने पहले भी कहा कि पुण्य पेशा है। आप जितनी भी सब्जियां उगाते हैं या अलग अलग प्रकार के अन्न आदि उगाते हैं उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है?
1: देखिए, सबसे अलग अलग सीजन में हम अलग अलग वो उगाते हैं, लेकिन जितने उसमें सबसे जो फेवरेट मेरा वो सिंघाड़ा है।
0: सिंघाड़ा
1: जब हम उगाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरली लोग बाग सिंघाड़े को तालाब में पैदा करते हैं और हम उसको प्लेन खेत में पैदा करते हैं। तालाब में बरसात का गांव का गंदा पानी आता है, उसके कलर उसका गंदा होता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, और जो हम खेत में सिंघाड़ा पैदा करते हैं उसमें रोज ट्यूबवेल से ताजा पानी आता है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, उसका उत्पादन बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और उसके बाद जो बेल और पत्ते के रूप में जीवांश कार्बन सैकड़ों क्विंटल हमको मिलता है, जो जमीन का भोजन है जिससे उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है, तो वो सबसे सबसे प्यारा मेरा फेवरेट।
0: बहुत बढ़िया। 2023-24 के लिए आपने कौन सा नया काम करने का सोचा है?
1: हम कृषि में इतने ज्यादा संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, हम कुछ ना कुछ उसमें जोड़ते रहते हैं, और इस बार मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा, आप लोग आइए।

0: देखिए हम भी कुछ नया करेंगे, अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि हम
1: हम
0: लोगों ने
1: उनको
0: कुछ।
1: सरप्राइज देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, तो चलो ठीक है, आपके सरप्राइज को हम अखबारों में पढ़ेंगे, सुर्खियों में देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप कुछ भी नया करेंगे वो पूरे देश तक पहुंचेगा जरूर, क्योंकि आप एक यशस्वी भारत के यशस्वी किसान हैं। आखिरी सवाल, सेठपाल जी कौन है?
0: सेठपाल जी तो एक मानव मात्र है, एक साधारण किसान है जो अपने सुबह ही उठते हैं, दिन भर पशु के रूप में, खेतों के रूप में, शाम तक चर करके फिर घर पे सो, फिर सुबह उसी में। तो मैं तो एक साधारण इंसान हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं।
1: सेठपाल जी ने तो कह दिया कि वह एक साधारण किसान है, लेकिन दोस्तों आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, और मैं समझता हूँ हर में से हर एक ने ये समझा कि सेठपाल जी जो है वो किसानों के एक मित्र हैं। सेठपाल जी जो है यशस्वी भारत के वो यशस्वी बेटे हैं, जिन्होंने भारत माँ के दिल में कई दिलों को जीने का एक जरिया दिया है, कई किसानों को ऐसा रास्ता बताया है जिससे वो अपने जीवन के सभी दुख तकलीफों से बाहर निकल सकते हैं। और कृषि विविधीकरण के एक बहुआयामी बहुत ही आवश्यक पद्धति के द्वारा उन्होंने न केवल भारत का लेकिन पर्यावरण का भी बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसे यशस्वी भारत के यशस्वी पुत्र सेठपाल जी को आज मैं और आप सुन रहे थे। सेठपाल जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आने के लिए, हम सबसे बातचीत करने के लिए और आपके इतने प्यार प्यारे अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बड़े धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड से मैंने समझा कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए जुनून होना बहुत जरूरी है, हौसला होना बहुत जरूरी है, अपने पे भी विश्वास तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ परमात्मा पर, अपने परिवार पर भी निश्चय होना बहुत जरूरी है। इसी निश्चय के साथ सेठपाल जी ने किसानी में अपना कदम आगे बढ़ाया। और भी किसान थे, लेकिन ये एक ऐसा किसान था जिसने नवीनता को, उन्नतीकरण को कभी भी दूसरा तरीका नहीं समझा, उसे ही पहला तरीका समझा। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, कुछ नया करना ही इनके लिए पहला रास्ता था। और इस पहले रास्ते पर चलते हुए सेठपाल जी ने कई बड़े आयाम, कई बड़े नाम अपने नाम पे तो किए ही, लेकिन साथ साथ पूरे किसानों का नाम रोशन किया। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में हम सुन रहे थे सेठपाल सिंह जी को। अगले एपिसोड में हम दोबारा आपके बीच हाजिर होंगे एक और ऐसे नायाब तोहफे के साथ, जिनके जीवन की कहानी से, जिनके परिश्रम से मैं और आप अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करा सकते हैं। इस मौके का आप भी इंतजार कीजिएगा, मैं भी इंतजार करूंगा। मिलेंगे एक और एपिसोड में आपके साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ने इतना उकसाया, दिल रोके रुक ना पाया। तुमने इतना उकसाया, दिल रोके रुक ना पाया। मेरे एहसास में आग लगा दी।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
4: ओम शांति.
3: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
4: थैंक यू सो मच
3: सिस्टर. आज मैं कुछ पढ़ के पहले सुनाना चाहता हूँ.
4: जरूर.
3: लेट योर पास्ट मेक यू इनटू अ बेटर पर्सन, नॉट अ बिटर पर्सन.
4: सो ट्रू.
3: और उसके नीचे एक लाइन ऐड करते हैं. ये तो बहुत बार सुना है लेकिन नीचे की लाइन इज वेरी इंटरेस्टिंग. In letting go, you are freeing yourself from pain.
4: Yeah.
3: You're freeing your own self from pain by letting go. Ek aur padh lo. The more anger towards the past you carry in your heart, The more anger towards the past you carry in your heart, the less capable you are of loving in the present.
4: Mantra for life.
3: Mantra for life.
4: Isn't it?
3: Sahi baat hai. Ab hamesha bata hai, aaj ka mantra, aaj ka, ye to life ka.
4: Actually, if you see, most of the times our past makes us a bitter person today.
3: And also we are in pain.
4: Yeah, because we are in pain, that's why it makes us a bitter person. Jitne hum dard mein hain, utni hamari energy dard wali kadvi hoti ja rahi hai na. क्योंकि पास्ट में अगर मेरे साथ कुछ अनुभव वैसे नहीं हुए और उसको मैंने लेट गो नहीं किया तो आई एम बिकमिंग अ बिटर पर्सन. अब जैसे आपने पिछली बार कहा, लेकिन अगर उन्होंने अगली बार भी ऐसा किया तो, लेकिन वो अगर नहीं सुधरे तो, लेकिन उनके मैनर्स अच्छे नहीं है, इट्स अ फैक्ट, इट्स ओके. लेकिन अगर मैंने वो गुस्सा पकड़ के रखा
3: तो
4: अगली बार तक वो तो बदले नहीं, लेकिन मैं बदल गया,
3: मैं तो बिटर हो गया.
4: इट सेज ना, इफ यू होल्ड द एंगर अबाउट द पास्ट,
3: सो नाउ आई बिकम बिटर, ऑल्सो आई एम इन पेन
4: एंड लेसर लविंग ना.
3: ओह यस,
4: दैट वॉज द लाइन ना, कि अगर आप पुरानी बात के गुस्से को, की नाराजगी को पकड़ के रखते हैं तो आपके प्यार की जो एनर्जी है वो ब्लॉक हो रही है. तो वो बदले नहीं बदले, वी डोंट नो, बट हम तो बदल गए. इसीलिए टुडे वी सी ना, पहले आई वॉज मोर अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, टुडे आई डाउट पीपल. आई वॉज मोर अ लविंग पर्सन, टुडे आई एम अ बिटर पर्सन. क्यों? क्योंकि पास्ट को अभी तक छोड़ा नहीं है. कितनी बड़ी बात है. लेकिन आज क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ा, इतनी बार सुना, सोचा, आज कर देते हैं उसको. करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सोच सोच के, क्योंकि अंदर मन में एक रनिंग कॉमेंट्री की तरह चलता रहता है. द माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग. ये बहुत इम्पोर्टेंट है अवेयर होना कि अंदर कौन सी क्वालिटी चल रही है. क्योंकि मेजोरिटी टाइम्स इफ यू सी कि जो मन में चल रहा है वो पास्ट की बातें हैं, जो बीत गया. बीत गया चाहे कई साल पहले या कुछ क्षण पहले, वो ही मन में चल रहा है. तो जब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि मेजोरिटी समय जो हमारे थॉट्स हैं वो पास्ट के बारे में चल रहे हैं, दूसरी बात हमें ये समझ में आ जाती है कि हमारे थॉट्स से ही हमारा फ्यूचर क्रिएट होने वाला है.
3: क्योंकि हाँ, कार्मिक अकाउंट एंड प्लस
4: मेरा नेक्स्ट रिस्पांस भी तो मेरी अभी की थॉट के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा ना. तो जो मेरा पास्ट है वो मेरी थॉट्स में चल रहा है और जैसी मेरी थॉट्स हैं वैसे मेरा फ्यूचर बनने वाला है.
3: मैनिफेस्ट होगी ना थॉट.
4: मैनिफेस्ट होगी थॉट, विच मीन्स मेरा पास्ट ही हर बार मेरा फ्यूचर बन रहा है. इट इज सो इम्पोर्टेंट कि पास्ट की बात को डिलीट करना होगा आज, नहीं तो कई बार हमारा पूरे जीवन की क्वालिटी ही वही बीत जाएगी।
3: फिर हम क्यों नहीं समझते कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है?
4: ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है। एंड ये लाइन इतनी पावरफुल है कि पुरानी बात की नाराजगी पकड़ी रखी, आई बिकम अ लेसर लविंग पर्सन। सपोज मेरे अंदर ये पावर थी, ये क्वालिटी थी प्यार देने की, प्यार करने की, अनकंडीशनली एक्सेप्ट करने की, तो किसी ने मेरे साथ ऐसे किया, कुछ गलत बात की, कुछ गलत व्यवहार किया, आई गॉट हर्ट। इस हर्ट को पकड़ के रखा, मेरी सोच उनके बारे में बदल गई, नेक्स्ट टाइम आपने कहा मेरा व्यवहार भी बदल जाएगा, तो आई बिकेम अ लेसर लविंग पर्सन। तो वो नहीं बदले, हम बदल गए, एंड बदल गए उस डायरेक्शन में विच इज नॉट राइट फॉर अस। तो थोड़ी सी अगर मेहनत करे आज अपने साथ, ये सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा, हाँ लेट गो चलो खत्म हुआ, ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
3: लेसर लविंग के साथ साथ आई टू बिकम अ पर्सन हु स्टार्ट्स स्लाइटली डिसलाइकिंग द अदर पर्सन। लविंग तो छोड़ दो, मैं तो और जीरो के भी नीचे आ गया।
4: वही लेसर लविंग है ना एक्चुअली।
3: तो बड़े सॉफ्टली बोल दिया प्यार से, मैं तो डिसलाइक में आया, स्टार्ट नॉट लाइकिंग दैट पर्सन। नॉट लाइकिंग इज कितना बुरी बात है, नॉट लविंग इज स्टिल ओके, तो जीरो से नीचे आ गया, बॉर्डर से भी नीचे चले गया।
4: मुझे अब वो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, लेकिन उसमें
3: और थॉट्स भी उसके साथ साथ चलती है, ये थॉट

0: और ये मुझे पसंद नहीं आदमी।
1: ओवरऑल आपकी एनर्जी फील्ड भी तो लेसर लविंग होती जाएगी।
0: आपका ऑरा भी गया।
1: वो किस लिए? क्योंकि किसी ने ठीक से बात नहीं की थी, किसी ने उल्टा जवाब दे दिया।
0: और गलती उनकी,
1: बात तो उनकी थी, नुकसान हमने अपना कर लिया क्योंकि हमने उस पास्ट के एक्सपीरियंस को लेट को नहीं किया। ये एक शक्ति है जिसको हमें सारा दिन यूज करना, और ये पावर हम सबके पास है। कांस्टेंट वो कमेंट्री जब चलती जाएगी, हमें हर बार स्टॉप करके उसको फुल स्टॉप बोल के उस सोच को बंद करना ही होगा, इवन अगर वो एक फोर्सफुल स्टॉपिंग है।
0: फोर्सफुल स्टॉपिंग को जरा सा आप समझाएंगे?
1: फोर्सफुल स्टॉपिंग मीन्स अगर मेरे अंदर वो कमेंट्री बार बार चल रही है, मैं बार बार मन को अगर सिर्फ कहूँ स्टॉप स्टॉप, बस हो गई बात, स्टॉप, इवन इफ आई हैव टू से इट 1000
0: टाइम्स। ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलता हूँ स्टॉप इज नॉट अ टॉय।
1: डू यू गिव अप ऑन दैम?
0: नो, जब वो मेरे आईपैड से खेलते हैं तो मैं बोलता हूँ स्टॉप नॉट अ टॉय।
1: फिर
0: नजदीक जाते हैं, नॉट अ टॉय, नॉट अ टॉय, दिस इज नो, दिस इज नानाज, दिस इज दादाज, दिस इज लैपटॉप, दिस इज नॉट अ टॉय,
1: और
0: हजारों बार
1: एंड फाइनली सीख जाएंगे।
0: तो फिर दिस इज नॉट अ टॉय नाना, दिस इज नॉट अ टॉय दादा, नो दिस इज नॉट अ टॉय, अभी आपके टॉय भरे पड़े उस पर से खेलो
1: बस।
0: अच्छा, फिर हट जाते।
1: मन एक बच्चा है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप प्लेइंग विद माई सेल्फ। नहीं कष्ट देना मैंने अपने आप को इतना, नहीं सोचना मैंने बार बार इतना, हो गई बात, खत्म हुई, पूरी हुई।
0: कितना बेटर है देन फीलिंग गिल्टी कि बार बार ना मैं इसका सोचता हूँ, बार बार ना मेरे मन में गंदे गंदे ख्याल आते, लोग ऐसे बोलते हैं, बार बार ना मेरे मन में बुरे बुरे पुरानी वही हर्ट आती रहती। अरे उससे अच्छा तो ये स्टॉप,
1: ये सोचना भी तो मेरी पावर को भी डिप्लीट करेगा।
0: तो मैं ये कह रहा हूँ ना, ये कितना बुरा है ये वर्सेस व्हाट यू आर टीचिंग टुडे।
1: स्टॉप मींस अपनी थॉट्स को ब्रेक लगाना ही है,
0: फुल स्टॉप।
1: मेनी टाइम्स वी थिंक दिस इज, ये शक्ति है गाड़ी की, जैसे ब्रेक लगती है। आप देखो गाड़ी एक जगह खड़ी हुई है, इंजन ऑन है, एक्सेलरेटर पर हमने पैर रखा हुआ है, कंटिन्यूस एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ना गाड़ी आगे जा रही है ना गाड़ी पीछे जा रही है, सिर्फ वहीं खड़े हुए चलती जा रही है।
0: इंजन गर्म हो जाते हैं,
1: यहाँ चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, सोचता ही जा रहा है, सोचता ही
0: फ्यूल भी जाता है, शक्ति भी जाती है।
1: दैट इज सोल पावर। तो इमीडिएटली पैर कहाँ लगाना पड़ेगा?
0: ब्रेक पे,
1: शिफ्ट द ब्रेक, इवन इफ इट इज फोर्सफुल, स्टॉप स्टॉप।
0: इंजन स्विच ऑफ नहीं कर सकते?
1: वो तो मेडिटेशन में करेंगे ना, वो अभी वो हम करेंगे ना धीरे धीरे, कि कैसे जितना हम माइंड को साइलेंट भी करते जाएंगे तब तो ये ऑटोमेटिकली होता जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी अभी करनी है। नहीं स्टॉप हो रहा उस समय अपने माइंड को किसी और चीज अच्छे की तरफ लेकर जाए, कुछ अच्छा पढ़े, कुछ अच्छा सुने, सोच को बदले, उस सोच को चलने ना दे। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि उसकी संख्या को तो क्या करते जाए कम कर, नहीं तो बैठे बैठे बैठे बैठे इतना घंटे चल गए।
0: उसको सत्ता ही नहीं देना है, तो उसको पावर ही नहीं देना है,
1: उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं देना, उसको खत्म करना है। एंड बार बार अगर हम लेट गो को एक मंत्र की तरह भी रिपीट करेंगे ना, ये भी तो थॉट है ना, आई एम गोइंग टू लेट गो, लेट गो, ये भी तो हम माइंड को क्या कर रहे हैं,
0: बोल सकते हैं,
1: लेट गो,
0: नाइस मंत्र,
1: रिलीज, लेट इट गो,
0: लेट गो,
1: इस बात को जाने दो। हम मन को सिखा रहे हैं, वो मानेगा। ये देखो, ये जो कॉन्वर्सेशन चलती है ना अंदर, ये एक ऑटोमेटिक मोड में चल रही है, हम कॉन्शियसली क्रिएट नहीं कर रहे, वो क्रिएट क्योंकि स्टोर्ड है, वो पास्ट मेमोरी से चल रही है। प्रेजेंट में हम ये थॉट को कॉन्शियसली क्रिएट करेंगे, लेट इट गो, जैसे कोई और आपको बोल
0: रहा है, नॉट अ टॉय, नॉट अ टॉय, बच्चे को बोलता हूँ मैं, जैसे लेट इट गो,
1: रिलीज
0: रिलीज,
1: एंड लिटरली विजुअलाइज इट,
0: गोइंग,
1: इसको विजुअलाइज करें, ये मेरी पास्ट की मेमोरी
0: डिलीट हो रही,
1: पास्ट का मेरा दर्द, पास्ट का मेरा अनुभव, टुडे आई लेट इट गो, इट विल वर्क।
0: बाद में ट्रैश में जाके भी डिलीट कर लेना,
1: सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट।

0: इट्स गॉन। परमात्मा से कनेक्ट करें एंड विजुअलाइज करें कि परमात्मा से वाइब्रेशन मुझ आत्मा पर आ रही है, मुझ आत्मा से मेरे चारों तरफ ये जा रही है और ये पावरफुल वाइब्रेशन वो जो पुरानी मेमोरी वो पुराना दर्द जो मैंने पकड़ के रखा है इट्स आउट। इट विल वर्क। इसको कॉन्शियसली रोज करना है। इसको अगर हम रोज सुबह करें और जब वो बात याद आए उस क्षण तुरंत उसी टाइम करें।
1: अगर मैं ये थॉट को रोज सुबह याद करके लेट गो बोलता रहूं तो रोज याद रहेगी ना ये बात?
0: कुछ बातें बहुत पावरफुल मेमोरीज हैं।
1: ओके
0: तो उनके ऊपर कॉन्शियसली वर्क करके उनको लेट गो करना है। यू नो छोटी छोटी बातें नहीं होती, कुछ बड़ी बातें होती हैं कई बार जीवन की जिसने हमारे ऊपर बहुत डीप प्रभाव डाला होता है और जिनके बारे में हमें पता है कि मुझे सारा दिन में वो याद आ ही जाती है तो उसको सुबह एक बार बुलाकर लेट गो करना इज फाइन। क्योंकि जब हम लेट गो कर रहे हैं हम उस सारी बातों को नहीं याद करने वाले। I'm not going to sit and you know rewind that whole conversation of the past us din phir ye hua tha phir ye hua, you're not going to do that.
1: Pure folder ko let kho ke
0: wo sab the hum karne wale hum kahenge subah sirf baithenge aur hum kahenge wo wali memory wo wala dard wo wala anubhav let go. I am a peaceful powerful soul. It will work. Ek groove mein wo wali thoughts chal rahi hai, अब हम एक नया ग्रूव क्रिएट कर रहे हैं। नए ग्रूव क्रिएट करने के लिए कॉन्शियसली अटेंशन से थिंकिंग को दूसरी तरफ लेकर जाना है। अगर हम बार बार अपनी सोच के ऊपर इस तरह से वर्क करेंगे पुरानी मेमोरीज डिलीट होती जाएंगी, नई रिकॉर्डिंग्स बनती जाएंगी। ये लेट गो की पावर आत्मा की शक्ति को कई कई कई गुना ज्यादा बढ़ाती है। इसमें हम पुरानी बातें भी लेकर आ सकते हैं वापस। कई बार बचपन में कुछ हुआ होता है हम अभी तक नहीं भूले होते उस बात को। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर हम उसको लेट गो नहीं करेंगे हो सकता है कि वो हमें रोज याद नहीं आती अभी, लेकिन पास्ट का कोई दर्द है जो हमारे यहाँ रिकॉर्ड। कई बार बचपन में किसी के पेरेंट्स ने उनको यू नो फ्रेंड्स के सामने या फैमिली के सामने कुछ ऐसा कह दिया होता है विच दे फील वेरी ह्यूमिलेटेड। वो दर्द वो भूल नहीं पाते उस दिन का। किसी बच्चे को टीचर ने पूरी क्लास के सामने कहा बेंच पे खड़े हो जाओ या कुछ ऐसी बात कह दी विच वॉज ए डीप डीप इंसल्ट। कई बार किसी बच्चे को अब्यूज या कोई ऐसी चीज अनुभव की है जीवन में, दे नॉट एबल टू डिलीट दैट मेमोरी। लेकिन अगर वो सब लेट गो नहीं किया फिर ऑफकोर्स बड़े होकर जो जीवन में बातें तो आ ही रही हैं, कभी ऑफिस में कुछ हो जाता है, कोई फेलियर हो जाता है जीवन का।
1: सिस्टर मैं एकदम लिविंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस मुझे है आप जो आप कह रहे हैं एंड इट्स आई नो इट मोर देन एनी डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट। क्योंकि मेरी मदर को जब पाकिस्तान से भागना पड़ा इस पार्टीशन में अपनी प्रॉपर्टी अपना घर अपना ज्वेलरी अपने सामान अपने रिश्ता सब मतलब अटैचमेंट छोड़ के खाली हाथ भागो तो सारा टाइम उनके ब्रेन में वहां से निकले। तो हम तो राज करते थे, वी वर सो रिच, गाड़ी फोर्ड थी, इम्पोर्टेड ये था। बाद में लोगों से शक्कर मांग के रोटी पे खाई। पुत्र मैंने मैम हमारा तो पूरा दिन यही बोलती रही तो क्या करूं, मेरे थॉट्स चलते रहते। रिश्तेदार इंडिया में रिश्तेदार आए तो उन्होंने हमको वहां सर्वेंट क्वार्टर में सुला दिया, जगह नहीं है बोला, मतलब ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फाइनली द मोस्ट हेल्थीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ जो कि 70s 80s में जाके जो नहीं होने वाली चीज ब्लड कैंसर हो गया। थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग पेन ले लेके
0: कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर ने सोचा ये बॉडी इतनी स्ट्रांग इतनी हेल्दी और वही ब्लड कैंसर।
0: क्योंकि इतना सोचने से इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाएगा ना। इतना कॉन्स्टेंटली अगर यू नो ये एक ऑब्सेसिव थॉट बन जाती है।
1: ये देख के भी मुझे तो सीख लेना चाहिए।
0: एक्चुअली हम क्या सोचते हैं समय के साथ वो बात अपने आप भूल जाएगी। ये दुनिया में भी कहते हैं टाइम इज द बेस्ट हीलर। मतलब समय बीतने दो वो भूल जाएंगे।
1: होता तो है चाहिए।
0: दर्द अगर रहा दर्द अगर रहा नहीं भूलते हैं फिर। समय के साथ बात अगर वो दर्द नहीं हील हुआ तो जैसे आपने कहा ना कि इतने साल तक भी वो वही चीज कहते

0: तो समय तो बीत गया होगा ना, उसके बाद कितने साल।
1: और फिर कुछ ऐसी चीज टीवी में देख ली या फिर किसी और से सुन ली तो फिर वापस वो
0: क्योंकि बहुत डोमिनेंट थॉट है ना वो। ऐसे एक्सपीरियंसेस को किसी के लिए वो इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है, यू नो, जैसे पार्टीशन या आज के समय में जैसे हम देखते हैं कोई नेचुरल कैलामिटी,
1: चाइल्ड अब्यूज की भी तो आपने
0: चाइल्ड अब्यूज, मैन मेड डिजास्टर जैसे कोई टेररिस्ट अटैक है, ऐसी चीजें भी आज हो रही हैं। ऐसी चीज को भी जो विटनेस कर लेता है उसके ऊपर बहुत डीप ट्रॉमा है वो। अब किसी के लिए वो चाहे इतनी बड़ी चीज हो, किसी के लिए छोटी सी बात पे ट्रॉमा होते हैं कि एक सपोज किसी के लिए रिश्ते में रिजेक्शन, किसी के लिए एक ब्रोकन मैरिज, किसी के लिए मैरिज में अब्यूज, किसी के लिए इन लॉज से इंसल्ट, अलग अलग
1: लव करके शादी करने के बाद आदमी बोलता तो आई डोंट लव यू, आई लव द अदर पर्सन,
0: रिजेक्शन
1: कितना बैठ जाते हैं अंदर लेके डीप।
0: अब समय बीत जाएगा, 10 साल आगे बढ़ गए हम, 20 साल आगे बढ़ गए, लेकिन उस बात को अगर लेट को नहीं किया है, कॉन्शियसली उसको अपने चित से, अपनी एनर्जी फील्ड से नहीं निकाला, तब वो हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे फिजिकल हेल्थ पर असर करेगी। इसलिए मेडिटेशन में ये बहुत पावरफुल टेक्निक है कि हम कॉन्शियसली बैठकर उस चीज को निकालें। यू नो, एक तो हम मेडिटेट कर रहे हैं कि आत्मा, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्ति, परमात्मा से पावर, पर कॉन्शियसली उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को निकालना है मुझे, उस पर वर्क करना है, एंड वो इट विल गो। इट विल, कोई भी चीज को हम जाने के लिए कहेंगे, फाइनली इट विल गो, एंड वो करते करते वी विल फाइंड कि थोड़े ही दिन में।
1: इसमें एक बात पूछती थी, जाने के लिए कहेंगे और नहीं जानता है, क्योंकि हम लोग विलिंगली उसको नहीं जाना चाहते हैं, वी स्टार्ट एंजॉइंग दैट पेन।
0: इट्स नॉट दैट वी एंजॉइंग दैट पेन, वी फील दैट बीइंग इन पेन बिकॉज ऑफ दैट इज नेचुरल।
1: कभी कभी सेल्फ पिटी अच्छी भी लगने लगती है, आदत पड़ जाती है, मेरे साथ ये हुआ था जी, मेरे साथ जी ऐसे हुआ था,
0: विक्टिम फीलिंग, विक्टिम फीलिंग, बेचारा मैं, आई गिव माई सेल्फ द राइट टू बी इन पेन।
1: जो मिला बोले, जो मिला बोले,
0: जितनी बार बोलेंगे, अगर उस इंसिडेंट को बार बार रिपीट करेंगे, तो जितनी बार रिपीट करेंगे तो ग्रूव और भी पक्का होता जाएगा। जो चीज सोचने से इतनी पक्की हो जाती है, वो बार बार वर्णन करने से कितनी पक्की हो जाएगी फिर।
1: ये जो लेटिंग गो वाली, उसके लिए भी विल चाहिए ना कि आई वॉन्ट टू लेट गो।
0: अगर नॉलेज मिल गई कि उससे मेरा कितना नुकसान हो रहा है, अगर नॉलेज मिल गई कि आई हैव द पावर टू लेट गो।
1: नहीं, बट क्या होता है ना, माइंड ऐसा है, समझो मैं बोलूं आई वॉन्ट टू लेट गो ऑफ दिस थॉट, फिर बोलो नहीं, लेकिन वो आदमी, उससे बात तो नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको माफ तो नहीं करूंगा, चलो मैं लेट गो कर दू, लेकिन
0: आई एम गोइंग टू लेट माई पास्ट मेक मी अ बेटर पर्सन।
1: I understand that.
0: So now let me take that.
1: I'm talking to you about practical life.
0: Practical life.
1: लोग बोलते हैं मैं इसको माफ तो कर दूंगी लेकिन भूल नहीं पाऊंगी, इसका क्या मतलब?
0: क्योंकि मैंने मतलब उस दर्द को नहीं छोड़ा ना, आई हैव नॉट लेट गो ऑफ द पेन।
1: तो दैट मीन्स लेट गो के लिए भी एक विल बनानी पड़ेगी, समझ करनी पड़ेगी कि ये लेट गो क्यों करना है।
0: लेट गो करना है क्योंकि आपने अभी कहा कि आपकी मम्मी के साथ क्या हुआ, हमें प्रैक्टिकल प्रूफ दिखता है कि मन के दर्द का असर शरीर पर किस बीमारी के रूप में निकल कर आ जाता है। और ये भी कितनी सारी स्टडीज हैं और प्रैक्टिकल प्रूफ्स हैं कि मन की सही सोच ने बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया है। इट गिव्स द माइंड बॉडी कनेक्शन। तो जब हमें इतना कुछ अब समझ में आ रहा है, इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं, इतना कुछ हमें हर जगह से मालूम पड़ रहा है, फिर भी हम उस पुरानी बातों को पकड़ के रखेंगे।
1: पता क्यों? क्योंकि आपके कहने के मुताबिक एक इतना गहरा ग्रूव और पैटर्न और हैबिट, और उसको आप क्या कहती हैं, संस्कार बन गया है।
0: लेकिन मेडिटेशन वो टेक्निक है कि हम एक नया ग्रूव अब बनाना शुरू करेंगे। पुराना बन गया तो इसका मतलब ये थोड़ी हम हमेशा उसी में रहेंगे।
1: बट मुझे तो हमेशा यही सूट करता है, माई माइंड ऑलवेज आस्क फॉर रीजनिंग। अब रीजनिंग दे दी, ये हुआ, मेरी मदर के साथ ऐसा हुआ, दुनिया के साथ हुआ, और थॉट के
0: साथ बॉडी पे असर पड़ रहा है,
1: के साथ बॉडी पे इतना बुरा असर पड़ता है कि एक थॉट आपने उस दिन बताया था ना, कितने 10,000 crore
0: सेल्स इन द ब्रेन कनेक्टेड टू 10,000, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, तो कितने कॉम्बिनेशन।

0: What doesn't take time and attention?
1: हमको बड़े होते होते
0: कौन सी चीज बिना मेहनत के बनी है?
1: हाँ, पेड़ पौधे भी कितनी
0: आज स्कूल का एग्जाम पास करने में भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है. तो एक संस्कार बदलने में थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे? आज दिन और रात जागते हैं कि एग्जाम पास करने के लिए. एक संस्कार चेंज करने के लिए रोज 10 मिनट नहीं निकालेंगे अपने ऊपर वर्क करने के लिए?
1: और उस एग्जाम पास करके जो डिग्री मिलेगी, जो नौकरी मिलेगी जहां पर, ये संस्कार चेंज करेंगे तो उसके बिना भी उससे अच्छे लोग प्यार करेंगे. दे वुड वांट यू,
0: दे वुड वांट
1: बिकॉज यू विल बी सो लाइक्ड. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल चीज थॉट आया देखो आपसे ये कि व्हेन यू आर लाइक्ड by people, by your family, by your staff, people around you, what a beautiful feeling.
0: That is what we had said na, ki agar thoda sa yahan change karenge aapki puri duniya badlegi, your world will change. To hame ye consciously let go karna hai. Jaise aapne kaha na, ek groove ban jata hai. Wo purane zamane mein wo wale players nahi hote the,
1: to usse wo jo ek pin atak jata tha,
0: pin atak jati hai, to wo usi line ko change karke jo pitch karte jayenge.
1: और उसका ग्रुप भी स्ट्रांगर बनता जाता था.
0: यही यहाँ हो जाता है.
1: थोड़ा सा उसको टैप करके धक्का मारना
0: पड़ेगा, उठाना पड़ेगा. लेकिन जब तक नहीं उठाया उसने वहीं अटके रहना. कितनी देर वो पिन
1: अटके, थोड़ा आगे करता,
0: थोड़ा
1: नॉन स्टॉप चलता था वहीं.
0: कितनी देर चल सकता है वहां पे जब तक उठाएंगे नहीं? इसका मतलब कितनी देर यहाँ चल सकता है जब तक उस ग्रुप से उठाएंगे नहीं? वो चलता रहेगा अपने आप. अब जबकि समझ में आ जाता है कि आत्मा अपने संस्कार लेकर जाती है, तो फिर तो इस जीवन काल के बाद भी वो उसी ग्रूव पे चलेगा. वाई टुडे चिल्ड्रन आर एक्सपीरियंसिंग रिजेक्शन. अभी रिसेंटली इस 6 महीने के अंदर ही दिल्ली में हमारे 3 सुसाइड केसेस, चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 13. तीनों केस में इंसिडेंट क्या था? टीचर ने कुछ कह दिया. स्कूल के वॉशरूम में जाकर अपने को इमोलेट किया एक 13 साल की लड़की ने.
1: इमोलेट कर रहा हूं, पाप.
0: देखा जाए टीचर ने ऐसा क्या इतना कहा होगा और इतना भी क्या कह दिया होगा जो ये किया. बिकॉज एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट उस दिन वो टीचर ने क्या कहा था.
1: रिएक्शन कर,
0: वो बहुत पहले का कोई
1: पास्ट
0: डीप रूटेड वुंड है, बहुत डीप. किसी ने कुछ कहा होगा, कुछ किया होगा, अनरिजॉल्व्ड इशू. वो पेन, वो वूंड, वो आत्मा कैरी कर रही थी और किसी ने आकर उस वूंड पे ऐसा कुछ ट्रिगर किया है कि आपका उस समय वो रिएक्शन हो गया.
1: जैसे बोलते बबल इतना बड़ा हो गया था, उस पेन लगा और फट गया.
0: बहुत इम्पोर्टेंट है लेट गो करना. ये सिर्फ हमारे इस जीवन में नहीं है, हमारे साथ आगे चलता है. और आगे तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे पास वो संस्कार क्यों है. फिर हम कहेंगे आई ऑलवेज गेट रिजेक्टेड, मुझे ही सब रिजेक्ट करते हैं. आई एम नॉट लव्ड बाय एनीबडी. कई लोग कहते हैं आई एम नॉट वांटेड बाय एनीबडी, नोबडी वांट्स मी. कोई कहते हैं नोबडी रिस्पेक्ट्स मी. क्योंकि डीप ग्रूव उसी पर अटक गया है वो पिन. उसी पिन पर अटकने से अब उस हर एक्सपीरियंस में वो वही वाली फीलिंग क्रिएट करते हैं. थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कहा, नोबडी रिस्पेक्ट्स मी. थोड़ा सा किसी ने कुछ लाइन कह दी, नोबडी लव्स मी. स्ट्रांग स्टेटमेंट्स आते हैं उनके मन में क्योंकि वो पिन वहां अटका हुआ है. तो कॉन्शियसली लेट गो ये करना ही है.
1: चलिए फिर एक मेडिटेशन करते हैं.
0: लेट्स सिट बैक कंफर्टेबली. आई द बींग, पावरफुल शक्तिशाली आत्मा, मेरी हर थॉट मेरी चॉइस है. चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ था, बात चाहे कितनी भी बड़ी थी, दर्द उस समय जितना भी गहरा था, आई द सोल have the power to delete, release the pain, let go of the experience. Today, isi kshan, us baat ko, us soch ko,

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारे मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे संजय। आप सुन रहे हो रेडियो बुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के तीसरे अध्याय में। आज हम जानेंगे वेणु माधुरी वह अद्भुत कला जिसने श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुरता ने संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर लिया। जब वज्र के बाल गोपियां और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उस स्वर को सुनते तो वे सब अपने अपने कार्य भूलकर केवल उस दिव्य धुन में लीन हो जाते। कहा जाता है कि बांसुरी की तान में ऐसा आकर्षण था कि यमुना की लहरें भी थम जाती है, वृक्षों के पत्ते भी चीर हो जाते। वेणु माधुरी केवल संगीत नहीं थी, यह प्रेम और भक्ति का ऐसा माध्यम था जिसने जीवन मात्र को श्री कृष्ण के सानिध्य में बांध दिया। यह कला हमें सिखाती है कि सच्चा संगीत केवल कानों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। तो दोस्तों, सुनते हैं कि प्यारा सा श्री कृष्ण का गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कृष्णा की बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं थी, वह उनके हृदय की करुणा और प्रेम की ध्वनि थी। जब भी बांसुरी बजती, वृंदावन की गोपियाँ अपने सारे काम छोड़कर दौड़ पड़ती, गाय चरना भूल जाती, यमुना की लहरें थम जाती और पक्षी भी मौन हो जाते। यह बांसुरी केवल संगीत नहीं थी बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम था। आज के इस कथा अंश में हम अनुभव करेंगे।

वही वेणु माधुरी जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री कृष्ण के प्रेम को बांध दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम अगला दूसरा प्यारा गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आर जे संजय। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। श्रोताओ, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो हर गोपी को लगता था कि यह स्वर केवल उसके लिए है। राधा तो इस तान में इतनी डूब जाती कि सांसारिक भानी फूल जाती। कृष्ण की बांसुरी ने वृंदावन को प्रेम और भक्ति का केंद्र बना दिया। ये लीला हमें बताती है कि ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं। उनकी धुन केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेणु माधुरी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार को खाली कर देते हैं तो हम स्वयं बांसुरी बन जाते हैं और ईश्वर की ध्वनि हम में गुंजती है। बांसुरी का अर्थ है शून्यता। जैसे बांसुरी खोखली होती है वैसे ही हमें अपने भीतर से अहंकार और मोह को निकाल देना चाहिए, तभी ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रवाहित होता है। यह लीला हमें यह संदेश देती है कि भक्ति केवल बाहरी अंडरवर नहीं बल्कि भीतर तक की निर्मलता है। जब मन शून्य होता है तभी उसमें दिव्यता का स्वर गूंजता है। तो दोस्तों, सुनते हैं और एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वेणु कर गृही वंशी मधुर ध्वनिनम, अर्थात कृष्ण की बांसुरी का स्वर इतना सुंदर और मधुर है कि वह आत्मा को भी मोहित कर लेता है। यह श्लोक हमें बताता है कि कृष्ण की बांसुरी केवल ध्वनि नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य संदेश है। उसकी तान में ऐसा आकर्षण है कि जो मात्र अपने अहंकार और मोह को भूलकर केवल ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाता है। यही है श्री कृष्ण की वेणु माधुरी या संगीत साधना बन जाता है और साधना ईश्वर से मिलन का मार्ग है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो श्रोताओं, ये थी तीसरी कला वेणु माधुरी। ये कला हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर से अहंकार को निकाल दे तो हम भी ईश्वर की बांसुरी बन सकते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री कृष्ण की चौथी कला प्रीत माधुरी, यानी उनके प्रेम की मधुरता। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो सुनते हैं एक प्यारा सा गीत,

उनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो real मायने में assertiveness होगा, क्योंकि assertiveness inner stability।

0: तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो. तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव. तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर. उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो. एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है. एंगर में या सप्रेशन वाले स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबों का सफर। जी हाँ, आइए आज के इस खाबों के सफर को हम लोग सजाएंगे कुछ गीत है अल्फाबेट के से। अल्फाबेट के से बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं जो आज के शो में हम लोग सुनाने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं और अपनी भावनाओं को मैसेज के जरिए, फोन के जरिए हमारे तक पहुंचाते हैं। तो आइए, आप सभी को ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार। कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत गाना, 1958 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था साधना, और ये फिल्म जो है एक बहुत ही खूबसूरत सामाजिक मार्गदर्शन फिल्म कह सकते हैं। वैजयंती माला और सुनील दत्त पर पिक्चराइज किया गया था। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में ये खूबसूरत नगमा आपके नाम, खुश रहो खुशियां बांटो।

साहिर लुधियानवी साहब का लिखा लता मंगेशकर का गाया बहुत ही खूबसूरत गीत, एन दत्ता का संगीत, साधना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। और मैंने कहा था कि आपको ऐसे मुख्य कलाकार सुनील दत्त और वैजयंती माला है। इस फिल्म की कहानी इस तरह से है कि एक माँ अपने बेटे की शादी की चिंता करती है और फिर बेटे से बार बार कहती है कि आप तू शादी कर ले, लेकिन बेटा शादी नहीं करना चाहता है। और इस वजह से माँ एक दिन बीमार हो जाती है और बहू बहू की पुकार लगाती है। तो ऐसे में बेटा जो है बहुत परेशान हो जाता है। बेटा फिर अपने एक दोस्त के साथ ये बातें करता है कि इस तरह से माँ जो है बहू बहू पुकार रही है तो मैं क्या। तो उसका दोस्त उसे कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी भी लड़की को कुछ समय के लिए नाटक करने के लिए कहो। तो बेटा कहता है ऐसा हो सकता है, हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता है। बेटे के कहने पर दोस्त एक गाने वाली को घर में ले आता है जिसका नाम है रजनी, और उसे पैसे के लिए खास ये नाटक करने के लिए कहता है। तो वो राजी हो जाती है और ये नाटक शुरू हो जाता है और बाद में ये नाटक हकीकत में बदल जाता है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत नगमा आपको सुनाते हैं जो के अक्षर से शुरू होता है ये गाना। जी हाँ, कैसा जादू बलम तूने डाला। मंजू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, गीता दत्त का गाया, ओपी नैयर का संगीत और फिल्म का नाम 12 o'clock यानी रात 12 बजे। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जी हाँ, 12 o'clock 1958 में फिल्म रिलीज हुई थी। एक वकील की कहानी है। हत्या की आरोपी अपनी प्रेमिका को बचाने की हर संभव कोशिश इसमें करता है और ये फिल्म प्रेम चक्रवर्ती के निर्देशन में बना था। जीपी सिप्पी साहब इसके निर्माता रहे और कलाकार के रूप में गुरुदत्त और वैदा रहमान मुख्य रोल अदा करते हैं और साथी कलाकार हैं जॉनी वॉकर और शशि खन्ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बातें करते हुए और ये गीत भी पुराने 60s एंड 50s के गाने जो है अपने आप में खास है। आज के समय में ऐसे गाने कहाँ बनते हैं। तो आइए एक और खूबसूरत गाना जिसको सुनकर आपके दिल में हलचल होगा। ये
1: काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए।
0: जी हाँ, खाली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, आशा भोसले का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत। फिल्म का नाम है सुजाता। जी हाँ, 1959 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और एक अछूत अनाथ सुजाता को ब्राह्मण दाम्पति द्वारा अपनाया जाता है और वो बड़ी होती है और ब्राह्मण आदमी अदीर के प्यार में पड़ती है, लेकिन वे एक साथ रहने के लिए संघर्ष करते हैं जैसे समाज उन्हें नीची नजर से देखता है। तो ये एक जाति भेद वाली जो संघर्षमय जीवन कहानी यहाँ पर प्रेम के इस स्वरूप में कहीं न कहीं प्रेम जो है हिलोरे तो लेता है लेकिन जाति के भेदभाव में वो फिर कैसे दब जाता है, वो चीजें यहाँ पर एक समाज का जो पहलू है बताने की कोशिश की है बिमल रॉय ने। और सुबोध घोष ने इस कहानी को लिखा है। कलाकार के रूप में नूतन सुंदर और ललिता पवार ने काम किया है। चलिए सुनते हैं इस पूरे गीत को। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। 1959 के बाद 1960 में आते हैं। 1960 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था अनुराधा, और ये जो फिल्म है इसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा था और लता मंगेशकर ने गाया था, रविशंकर साहब ने इसको संगीत दिया था। तो आइए, गीत के बोल इस तरह के हैं, कैसे दिन बिताए कैसे बिताए रात।

चलिए, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये भी खूबसूरत गाना था अनुराधा फिल्म का। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत फिल्म 1962 में आई थी जो बहुत अच्छा पॉपुलर भी रहा। और ये एक अमीर युवक की कहानी इसमें बताई गई थी जो खुद को साबित करने अपने घर की सुविधाओं का त्याग करता है और मुंबई जाता है। वहाँ रेनू नाम की एक लड़की से मिलता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। वो लड़की जो अपने परिवार से कुछ रहस्य छिपा रही है वो जानने की कोशिश में हीरो जो है बहुत मुश्किल में आता है। और इस तरह की कुछ कहानी बताई गई है असली लकड़ी। और 1962 में ये रिलीज हुई थी ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में और इस मुख्य कलाकार देवानंद, साधना मुखरी, नाजिर हुसैन और लीला चिटनिस हैं। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना आप सबके नाम।

चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छी बातें हो रही हैं और पुराने फिल्मी गीतों के साथ फिल्मी मसाला भी आपको मिल रहा है। आशा करता हूँ आप सब एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आपके मनोरंजन को और बढ़ाते हैं। 1964 में एक फिल्म आई थी जो देशभक्ति पर आधारित थी, जिसका नाम था हकीकत। ये फिल्म जो है काफी अच्छी बातें हो रही हैं और पुराने फिल्मी गीतों के साथ फिल्मी मसाला भी आपको मिल रहा है। आशा करता हूँ आप सब एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आपके मनोरंजन को और बढ़ाते हैं। 1964 में एक फिल्म आई थी जो देशभक्ति पर आधारित थी, जिसका नाम था हकीकत। ये फिल्म जो है 1962 के चीन भारत युद्ध पर पिक्चराइज किया गया था और लड़ रहे सैनिकों की पलटन को लद्दाख के पर्वतीय इलाकों में मृत्यु मान लिया जाता है। हालांकि उन्हें लद्दाख की जनजातीय और कैप्टन बहादुर सिंह द्वारा बचाया जाता है और फिल्म में ये आखिर तक थोड़ा सस्पेंस बना रहता है, लेकिन इसके बाद जब लोगों को पता चलता है तो लोगों में एक बड़ा उल्लास आता है। तो 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। चेतन आनंद इसके निर्देशक रहे। हरमिंदर, बलराज साहनी, विजय आनंद इस फिल्म के मुख्य कलाकार के रूप में काम किया है। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना, जिसे कैफी आजमी साहब ने लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने आवाज दी थी, मदन मोहन जी ने संगीत से संवारा था। तो सुनते हैं ये खूबसूरत देशभक्ति वाला गीत आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM पर। ख्वाबों का सफर और मैं हूँ आपका हम सफर सनी। तो चलिए दोस्तों, 1960s और 1970s की कुछ खास बातें मैं आपको सुना रहा हूँ, कुछ खास फिल्मों के कुछ खास गाने आपको सुना रहा हूँ। तो आइए, 1968 में एक और खूबसूरत फिल्म आई थी जिसका नाम था आदमी। ये फिल्म जो है एक जुनूनी युवक की कहानी को बताता है और एक दुर्घटना के बाद व्हीलचेयर तक सीमित हो जाता है वो, और उसे तब पता चलता है कि उसकी मंगेतर और उसके सबसे अच्छे दोस्त प्रेम संबंध में हैं। उसका क्रोध उससे उसके सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ जानलेवा मनसा में बदलता है। तो ये कहानी में इस तरह का क्लाइमेक्स बताया गया है और कलाकार के रूप में इस फिल्म में दिलीप कुमार, मनोज कुमार, बहिरा रमन और प्राण है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और इस फिल्म में दो खूबसूरत गाने हैं, वो भी क अक्षर से यानी के से। तो बैक टू बैक दो गाने इस फिल्म का आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आदमी फिल्म का दो गाने बैक टू बैक आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। और दोनों गाने में जैसे कि कल के सपने इसे शकील बदायूं साहब ने लिखा था, लता मंगेशकर ने गाया था, नौशाद जी ने संगीत से संवारा था, और उसके बाद जो गाना हमने आपको सुनाया उसे भी शकील बदायूं साहब ने लिखा, महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, नौशाद जी का संगीत था। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत फिल्म की बात करते हैं जो 1968 में ही रिलीज हुई, जिसका नाम था किस्मत। जी हाँ, किस्मत शब्द को सुनकर कभी कभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इस शब्द में ही इसका रहस्य भी समाया हुआ है। KISMAT कहा जाता है किस्मत को, तो किस यानी KIS को अलग कर दीजिए, MAT को अलग कीजिए, यानी किस्मत पर आप चलेंगे तो किस्मत आपका बनेगा, ये इसमें बताया जाता है। तो अगर आप किसी अच्छे विचारधारा को लेकर सत्य की राह पर चलेंगे तो मुश्किलें जरूर आएंगी लेकिन किस्मत जरूर बन जाएगी, लेकिन अगर हम स्वार्थ के अधीन होकर लोभ लालच में कहीं हम भटक कर रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं, कम समय में पैसा मिल जाता है लेकिन किस्मत तो बिगड़ ही जाती है ना। इसलिए इस धोखे में मत रहिएगा, सत्य की राह पर चलिए और जीवन को सुंदर बनाइए, किस्मत को चमकाइए। इस किस्मत फिल्म में हीरो को एक संगीतकार के रूप में बताया है और वो एक दौड़ पर है जब कुछ गुंडे उनके गिटार में छिपाए हुए माइक्रो डॉट को पुनः प्राप्त करने उसका पीछा करते हैं। वो एक जवान औरत से मिलता है जो अपने घर से भाग आई होती है। थोड़ा सस्पेंस फिल्म है और मनु देसाई के निर्देशन में ये फिल्म 1968 में रिलीज हुई थी। ओपी नैयर साहब ने संगीत से संवारा है और कमल मेहरा ने इसे निर्माण किया है। कलाकार के रूप में बबीता, विश्वजीत, हेलन, मुराद, उल्लास ने काम किया है। तो इस फिल्म का एक बहुत ही अच्छा गीत है गजरा मोहब्बत वाला। SH बिहारी साहब ने इस गीत को लिखा है, आशा भोसले शमशाद बेगम ने इस गीत को गाया है, ओपी नैयर का संगीत। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, बहुत ही मस्ती भरा गीत आपने सुना। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। तो 1968 के बाद चलते हैं 1969 की ओर। 1969 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इंतकाम। एक गरीब

की कहानी है जिसका नाम रीटा है। रीटा को झूठे सोहनलाल द्वारा फंसाया जाता है। जेल से उसकी रिहाई के बाद जब वो बदला लेना चाहती हैं, वो हीरालाल सोनालाल के पूर्व व्यापार भागीदार से मिलती हैं और इस तरह से कहानी में बदले की भावना को अंजाम देने में इनका काम चलता है। तो आइए, इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है जो मैं आपको सुनाऊंगा। और इस फिल्म के निर्देशक आर के नैयर है, दीवान नैयर साहब ने इस निर्माण किया है। और कलाकार के रूप में हेलन, साधना, संजय खान, जीवन और अशोक कुमार हैं। तो इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। तो राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा ये खूबसूरत गाना लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और इसी के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाजत। इसी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, आनंदी रहा, आनंद लूटा।

0: रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: बुरी मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा, मगर ये कहूँगा
1: क्या
0: यही है यही तो है वो मीना मीना।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

102 की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मोहब्बत कहीं डर के रुका है। दरबार में चाहूं कि कहीं इश्क झुका है।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अरे राजू भाई दो चाय लाना।
1: अरे छोटू दो चाय देना भैया को।
2: हाँ सर चलो भैया।
0: ये क्या तूने मेरे शर्ट पे चाय गिरा दी?
2: गलती होगी भैया, माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा भैया।
0: ना छोटू तू हर टाइम ऐसा करते रहता है, लोग कितने बार समझाएगा सही से चाय दिया कर।
2: नहीं सर वो इस बार हाथ फिसल गया सर।
0: हर टाइम हाथ फिसल जाता?
2: नहीं सर।
0: ठीक है अगली बार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना?
2: हाँ सर।
3: क्या यार मेरी जिंदगी भी कैसी है, काश मेरे भी पापा पैसे वाले होते, मैं भी और बच्चों की तरह स्कूल जाता, पढ़ाई करता, मैं भी खेलता, काश ऐसा होता।
4: क्या बात है सैंडी, आकाश, पंकज, भुवना, आज तुम लोग बड़े उदास लग रहे हो।
5: दीदी आपको पता है आज हमने एक टी शॉप में देखा कि एक बच्चा काम कर रहा है।
4: एक बच्चे को काम करते देखा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा ना?
0: हाँ, वो दुकान वाले भैया उसे डांट भी रहे थे।
4: क्या देखा आज आपने, चलो भुवना बताओ।
5: दीदी हमें बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था और उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन वो काम कर रहा है और वो काम कर रहा है लेकिन बाय मिस्टेक वो फिसल गया उनके हाथ से, फिर भी वो ओनर इतना डांटा, बहुत बुरा लग गया होगा।
4: आप ही के उम्र के बच्चे जो काम करते हैं कोई चाय की दुकान पर या कहीं भी, उसे पता है क्या कहते हैं?
6: चाइल्ड लेबर,
0: बाल श्रम।
4: हाँ उसे बाल श्रम या चाइल्ड लेबर कहते हैं। बच्चों की जो उम्र पढ़ने लिखने की होती है, कई बार पारिवारिक सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो काम करने पर विवश हो जाते हैं। तो बच्चों चलो आज हम चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के बारे में ही बात करेंगे।
5: ठीक है
0: दीदी।
4: तो आकाश आप बताओ चाइल्ड लेबर से आप क्या समझते हो?
2: दीदी मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे उन बच्चों के मम्मी डैडी को ये सब काम नहीं करवाना चाहिए, ये उम्र उनकी खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है, हाथ में आने वाले पेन की जगह वो चाय की कटोरियां पकड़ा देते हैं, पीठ में लदे हुए बैग की जगह वो बोरियां पकड़ा देते हैं, ये बहुत गलत बात है।
4: बात तो आपने बहुत सही कही। और सैंडी आप बताओ।
0: दीदी मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्ड लेबर एक जुर्म है और जो लोग 14 वर्ष से कम उम्र में बच्चों को अपने दुकान पर रखते हैं या करवाते हैं, अगर चाइल्ड लेबर हमारे भारत में विश्व में कहीं भी फैलता गया तो हमारे देश का हमारे विश्व का क्या होगा? बच्चों को शिक्षा मिलेगी नहीं तो हमारा देश हमारा विश्व हर चीज में पीछे हो जाएगा, तो ये चाइल्ड लेबर होना नहीं चाहिए
4: क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं।
0: हाँ दीदी।
4: और अगर वो ही नहीं पढ़े लिखेंगे तो फिर हमारे भारत का भविष्य क्या होगा?
0: हमारी नई कमजोर होगी तो फिर कैसे होगा?
4: बिल्कुल सही सैंडी। और भुवना आप क्या कहना चाहते हो?
5: अब हमारी इंडिया सब देशों में डेवलप्ड कंट्रीज है लेकिन हमारी इंडिया डेवलपिंग, स्टिल डेवलपिंग, इस बात का एक वन रीजन है चाइल्ड लेबर। ऐसा बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं इंडिया में, बहुत सारे अननेसेसरी ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं और इस चाइल्ड लेबर को हम स्टॉप करना चाहिए, एक क्राइम है, ये सिर्फ इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ कि इसको स्टॉप करना चाहिए और गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ वाइटल स्टेप्स लेना चाहिए।
4: बिल्कुल सही, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और गवर्नमेंट कुछ काम इस पर कर भी रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हो पंकज?
0: चाइल्ड लेबर को देखते मुझे ऐसा लगता है हमारा देश कभी विकास नहीं कर सकता। आजकल छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे जो हमारे देश के भविष्य है लेकिन वो किसी कारण होटलों में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में अपनी पीठ पे बोरियां लाद रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश का भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे कि दूसरे देश अपने डेवलप्ड होकर और भविष्य में हम देखेंगे कि वो अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी और हमारा देश धरती पे ही रह जाएगा।
4: बात तो आपने पंकज बिल्कुल सही कही, हम आगे तभी बढ़ते हैं जब देश का भविष्य यानी बच्चे सुरक्षित हो, देश के साथ साथ उनका भविष्य भी हम बाल श्रम द्वारा बिगाड़ देते हैं। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, तुम लोग अक्सर बाहर जाते हो, कभी घूमने के लिए, कभी किसी काम से, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी बच्चे को बाल श्रम करते हुए या कोई काम करते हुए देखा है? और देखा है तो तुम्हें कैसा लगा है?
0: हाँ दीदी मैंने बहुत बार देखा, कभी कभी हम लोग कहीं बाहर जाते घूमने के लिए, किसी होटल पे गए तो वहाँ कोई बच्चा कोई चाय लेके आ रहा है तो कुछ नाश्ता लेके आ रहा है, ऐसे कुछ काम करते हैं और ये मुझे देख के बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मुझसे भी छोटे होते हैं।

0: वो खेलने कूदने की उम्र होती है, जिनको अपनी मम्मी पापा से प्यार मिलना चाहिए, वो होटलों पे काम करती है और ये मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा नहीं हुआ, मेरे मम्मी पापा मुझे साथ देते हैं। और ये बात देखकर मुझे रोना भी आता है, थोड़ी खुशी भी होती है, पर खुशी तो उतनी नहीं होती, रोना बहुत आता है, क्योंकि जो बच्चे इनके छोटे छोटे हाथ है वो बड़े बड़े काम करते हैं।
1: बात तो आपने सही कही, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बहुत बड़े बड़े काम करने पर विवश हो जाते हैं, लेकिन उनके घर के जो पारिवारिक कंडीशंस हैं वो इस प्रकार की नहीं होती जैसी हमें मिली है। और जैसा कि आपने कहा कि इस मामले में हम कितने लकी हैं कि हमारे परिवार से ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि हमें सब कुछ मिला और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, पर सभी हमारी तरह लकी नहीं होते। हाँ आकाश बताओ।
2: दीदी मैं जब छोटा था तब मेरा एक दोस्त था, उसका नाम पोखराज है। वो बचपन में मेरे साथ खेलता था, सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, पहले तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, उसके बाद उसको गवर्नमेंट स्कूल से निकाल दिया। फिर वो अब वो 14 साल का है और हमारे पड़ोस की दुकान में ही वो काम कर रहा है। उसको देख के बहुत बुरा लगता है। उसकी मम्मी सुबह से लेकर शाम तक लम्हा लारी पे सब्जी बेचती है और उसके पापा उन्हीं पैसों से न घर चलने देते, सिर्फ अपने ही खुशियों के लिए पैसे खरीदते हैं।
0: हाँ दीदी, जैसे आकाश ने बताया ऐसे ही मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे रहते हैं, उनकी मम्मी तो चलो ठीक है पर उनके पापा शायद नशा वशा करते हैं और बच्चे टैलेंट बहुत है उनमें, उनकी कैचअप अच्छा है, अगर कुछ चीज समझाए तो जल्दी समझ जाते। वो पढ़ना चाहते पर पापा उनके काम करने के लिए फोर्स करते, तो वो कचड़े बीनते और ये सब करते और वो स्कूल तो जाना जाते हैं, पर मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है। तो मैं कभी कभी मेरी कोई पुरानी बुक्स, मेरी जो चीज होती है और कुछ दे देता हूँ उनको, तो वो थोड़ा वो अच्छा लगता है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है सैंडी, क्योंकि अगर हम अपना छोटा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए तो उन बच्चों को कितना अच्छा महसूस होता है।
0: हाँ दीदी,
1: है ना। भुवना, कभी आपने ऐसा कुछ देखा है?
3: दीदी हमारे घर में रोज एवरी संडे या सैटरडे जी है जमसी लोग आते हैं डस्टबिन लेने के लिए, तो जब वो आते हैं उनके साथ उनके बच्चे भी, वो ड्राइनेज में बैठते हैं, वही रहते हैं, लेकिन वो खुशी से करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको ज्ञान भी नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि उन लोगों को ये सब हमें कुछ मैसेज देना है कि नॉलेज देना कि ये कर सकते हैं, और उनको ये एज नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास की होगी वो बच्ची, और उनको काम करवा रहे डस्टबिन को लिए।
1: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, भले उन्हें अभी खुशी है, वो खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें उनके लिए पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, और कई बार ये बात बतानी उन्हें बहुत जरूरी होती है। पंकज, कभी आपने ऐसा कुछ देखा?
4: हाँ दीदी, मैंने भी देखा है। हमारे स्कूल के पीछे छोटे छोटे बच्चों को बीच पे बोरियां लाद कर और प्लास्टिक की बोतलें बीनते हुए या कांच की बोतलें बीनते हुए, मतलब वो प्लास्टिक की बोरियों में भंगार इकट्ठे करते हैं और उसे बेच के दो चार पैसे कमाते हैं। लेकिन वो पैसे जो कमाते हैं वो उनके भी यूज में नहीं आते, उनके मम्मी पापा उनसे पैसे ले लेते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं।
1: उनके मम्मी पापा उनसे वो पैसे भी ले लेते हैं जो वो मेहनत करके कमाते हैं।
4: हाँ दीदी,
1: बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मेरे ख्याल से हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसी चीजें होते हुए देखी हैं।
0: हाँ दीदी,
1: और हमें बहुत बुरा भी लगता है। हम बच्चे और क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर बच्चों की दुनिया सुनते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर हम वापस आ गए हैं लेकर बच्चों की दुनिया। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में, जिस विषय के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो है बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर। सैंडी, आप आज सुबह क्रिकेट खेलने गए तो आपने क्या देखा?
1: दीदी, मैंने देखा कि दो बच्चे थे जो बहुत छोटे थे और मैं बैट और बॉल लेके जा रहा था तो बोल रहा था भैया मुझे कुछ रुपए दे दो, मुझे भूख लगी है। तो उन्हें देखकर मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा और मैंने मेरे जेब में जितने भी थे 20-30 रुपए उन्हें दे दिया।
0: हमें बुरा तो लगता है जब कोई ऐसे, स्पेशली जब कोई बच्चा आके हमसे ऐसा कुछ कहता है। तो ऐसे में एक और चीज हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि अगर किसी को भूख लगी है या कोई ऐसा हमारे सामने आता है और हम कुछ कर सकते हैं तो कुछ खरीद कर या कुछ ला कर उसको दे दें। क्योंकि कभी कभी हमारे दिए हुए पैसे वो ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे या फिर कोई उनसे ले भी सकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आए तो आप कुछ लाकर, जिससे उनकी जो भूख है वो शांत हो सके, ऐसा कुछ लाकर आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है सैंडी?
1: ओके दीदी।
0: और वैसे तो ऐसे बहुत सारे

0: इवेंट्स हमारे सामने आते रहते हैं, अब आप लोग ये बताओ, जब आप लोग देखते हो आपको बुरा तो लगता है, क्या कोई ऐसी चीज है जो आप अपनी तरफ से उनके लिए कर सकते हो? बोलना।
1: पहले हम उनके माँ बाप को इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि बिना माँ बाप के कहने से बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो हम उन माँ बाप को इंस्पायर करना कि आपके बच्चे ये कर सकता है, तो बच्चे को ऑलरेडी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो बच्चा है ना। जब हम इंस्पायर करेंगे, बुक्स देंगे, वो अच्छे से पढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ उनके माँ बाप के फोर्स की वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। तो जब हम उनके इंटरेस्ट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, माँ बाप काम करेंगे और पढ़ेंगे, फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
0: बात तो आपकी बिल्कुल सही है। स्पेशली जो हमारे आसपास के लोग काम करने आते हैं हमारे घर पे, या जैसे भुवना आपने बताया कि कूड़ा बीनने, या फिर ऐसा कुछ है जिनके माँ बाप हमारे घर पे काम करते हैं, आसपास आते हैं, तो उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, है ना? और आकाश, आप क्या सोचते हो?
2: दीदी, मेरा ये मानना है कि उनके मम्मी पापा को हमें बताना तो चाहिए, लेकिन मैंने भी कई बार कोशिश करी है, लेकिन उनके दिल से चाह नहीं होती कि हमारे बच्चों को भेजें। वो कहते ही हैं, अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, बड़े होके कमाना ही तो है, वो भेज देते, अभी से कमाएगा तो बड़े होके और पैसे लाएगा। ये बात उनके दिमाग में रहती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो उसी जगह पे स्थित हो जाते हैं।
0: मतलब हम समझाते हैं तब भी वो नहीं समझ पाते उस बात को। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो हमारी बात को नहीं समझेंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहें और एक चेंज भी हम ला पाएं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है।
3: हाँ दीदी,
0: है ना? तो इसलिए हमें कोशिश आकाश जरूर करते रहनी चाहिए।
2: हाँ दीदी,
0: है ना? और सैंडी, आप क्या सोचते हो?
3: दीदी, ऐसा आकाश ने और वो हुना ने बताया कि हमें लोगों को समझाना चाहिए, ये बात तो सही है, पर मैं तो जहाँ तक होता है समझाता ही हूँ कि मुझे कुछ बच्चे मिलते हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ। फिर एक बच्चे को मैंने बोला भी था, तो बोलते कि मम्मी पापा ना बोलते, तो मैंने उन्हें बोला भी था, उनके मम्मी पापा को मैं समझाया था, तो उन्होंने मुझे डांट भी दिया था कि तुम अपना काम करो, हमारे फैमिली से तुम्हें क्या मतलब। मुझे बुरा नहीं लगा, पर मेरी अभी भी कोशिश जारी है, मैं होता तो समझा देता हूँ, और मेरे पास जो भी कुछ होता है कि हाँ कुछ बुक्स हुआ कुछ हुआ, अगर उनको अच्छा लगे तो मैं दे देता हूँ, मेरी कोशिश अभी भी जारी है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास जो होता है, अगर उन चीजों से भी हम उनकी मदद कर पाए तो उनको अच्छा भी लगता है, और थोड़ा बहुत तो उनकी मदद हम कर ही सकते हैं, है ना? तो ये सैंडी बहुत अच्छी बात है। पंकज, आप बताओ।
4: दीदी, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो काम करते हैं, लेकिन उनमें इच्छा होती है पढ़ने लिखने की, हमारे जैसा बनने की, वो भी सोचते हैं कि हम इनकी तरह बन सकते हैं, इनकी तरह हमारी लाइफ हो सकती है, हम पढ़ सकते हैं और पढ़ लिख के हम अपने पेरेंट्स की जिंदगी बना सकते हैं या खुद की भी जिंदगी बना सकते हैं, तो उनकी मदद हमें करनी चाहिए। जैसे कि अगर वो पढ़ना ही चाहते हैं तो उनको अपने पुराने बुक्स दे सकते हैं, उन्हें जाकर उन बुक्स के बारे में, या अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो उनके लिए कुछ टाइम निकाल कर उन्हें कुछ बता सकते हैं कि पढ़ाई क्या होती है और पढ़ाई का महत्व क्या होता है।
0: अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल पाए तो हम जाके उन्हें कुछ नहीं तो एटलीस्ट बेसिक पढ़ना लिखना तो सिखा ही सकते हैं, ताकि जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो हिसाब किताब सीख पाए, और थोड़ा लिखना पढ़ना सीखने से कोई उनके साथ बेईमानी या गलत भी ना कर पाए।
4: हाँ दीदी।
0: भुवना, आप बताओ।
1: आजकल स्कूल्स में

0: ये 3 मंथ्स हम कुछ खाना एक एक हमने क्या किया इस बार स्कूल पे, मेरे हमारे स्कूल में एक एक क्लास एक एक थी ऑर्फनेज के लिए, छोटे छोटे बच्चे के लिए, जैसे फोर्थ क्लास लोगों छोटे छोटे बच्चे के लिए डायपर्स लेकर आए, एटलीस्ट 3-3 डायपर्स, फुल क्लास 3-3 डायपर्स, तो ठीक है तो हम फ्रूट देंगे। पर दीदी हम कभी भी पैसे नहीं लेना चाहिए, कुछ ये देना चाहिए ताकि वो इजीली यूज कर सकते हैं, जैसे हम क्लोथ्स दे सकते हैं, डायपर्स, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको डायपर्स चाहिए, वो खरीद नहीं सकते। इसके बारे में हम स्कूल्स को भी ये कर सकते हैं, और हम घर में भी थोड़ी थोड़ी हमारी पुरानी बुक्स होते हैं, पुराने कपड़े, वो सब लोग आते हैं उनको इंस्पायर करना चाहिए कि ये देखो इतना अच्छा बुक है, तुम पढ़ो, तुम पढ़ लिख सकते हो, फ्यूचर में तुम ये बन सकते हो, वो बन सकते हो, ऐसे करेंगे तो वो सच में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा और हमारे देश में कभी चाइल्ड लेबर नहीं होगा, ये कंटिन्यू होगा। तो
1: ये तो आप

0: स्कूल का भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आपने भी बहुत अच्छी बात सोची कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी उनके लिए करें तो उनकी बहुत मदद हो सकती है। आकाश
1: दीदी, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने हमारा एक डोनेशन बॉक्स होता है जो हम हर ईयर पे खोलते हैं। मतलब जैसे इस महीने की हमारी हमको जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से हमारा कम से कम 10 रुपया भी बच जाता है तो हम उस डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं और ऐसे करके हमारी 1 ईयर में डोनेशन बॉक्स जब फुल हो जाता है तब हम न्यू ईयर पे सब बच्चों को चिप्स बांटते हैं, कुरकुरेस बांटते हैं, उनके खाने की चीजें देते हैं। कम से कम हमारे पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो आराम से खा पी सकते हैं।
0: बिल्कुल सही, हमें पॉकेट मनी मिलती है उसको भी अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सेव करें और जैसा कि सब लोग मिलकर करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम अलग से भी अगर कुछ करें तो भी हम इस प्रकार से उनकी छोटी बड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। ऐसा ही एक इनिशिएटिव रेडियो मधुबन के यूथ जंक्शन के आरजे विनोद और उषा जी ने मिलकर रेडियो मधुबन के बिहाफ से किया। उन्होंने जाकर जो रैट पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, उन बच्चों को इकट्ठा किया, उनके पेरेंट्स से बातचीत की और करीबन 20 बच्चों को रेगुलर रोज जाकर पढ़ाया, उनका एडमिशन पास के स्कूल में कराया ताकि वो बच्चे पढ़ भी सके और अपना फ्यूचर बना सके। इससे और कुछ मिले ना मिले उन बच्चों की कितनी सारी दुआएं भी हमें मिलती हैं, है ना?
2: हाँ दीदी।
0: तो आप लोगों के पास ये जितने भी आइडियाज हैं इनको आप एक्शन में ला सकते हो, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। हमेशा कभी भूलना नहीं इस चीज को, जो आपकी भावनाएं हैं उन्हें बना कर रखना। और कभी आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको कुछ बड़ा करना चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल में अपने टीचर से और बड़े लोग जो हैं उनसे अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो ताकि कुछ करने की आपको भी मदद मिल पाए और उनके पास भी आपके सजेशंस पहुंच पाए। ठीक है बच्चों?
3: हाँ दीदी।
0: तो अगली बार हम सब फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी विषय पर। आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।

खामोशी को सहकर जैसे चिड़िया सब कुछ सुन रही और बहती हवाओं में जैसे कोई तितली बहकर घूम गई।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिड़के बोलना है, कुछ भी हुआ चिड़के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

गुन गुन गुन गुन भवरे घूमे झर झर झर झर झरने झूमे छम छम पायल बाजेर

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी सब है।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेज हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेज कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पता है पुराना स्तंभ जी, मेरा नाम मनु क्यों है?
1: क्यों बताओ तो जरा।
0: क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम भी मनु था, इसलिए मेरा नाम भी मनु है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और मुझे ना सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी वो कविता भी याद है।
1: कौन सी?
0: सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी,
2: बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
1: वाह, कमाल की कविता है ये तो। क्या तुम पुराना साहित्य पढ़ती हो मनु?
0: नहीं, बहुत तो नहीं, बस जितना स्कूल में पढ़ा था।
1: वैसे कहते हैं किताबें हमारी सबसे अच्छी साथी होती हैं।
0: हाँ वो तो है, लेकिन मुझे ना केवल नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। हाउ एक्साइटिंग दे आर ना।
1: मनु हमारा चेतन मन जो पढ़ता है, देखता है, सुनता है, वो वहीं तक सीमित नहीं रहता, वो हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है।
0: अच्छा।
1: धीरे धीरे हमें उसी तरह के विचार भी आने लगते हैं, और फिर हमारे कर्मों पर भी उसका असर पड़ता है।
0: लेकिन तो क्या पढ़ना सुनना देखना सब बंद कर दूं? ये तो पॉसिबल नहीं है पुराना स्तंभ जी।
1: बंद मत करो, लेकिन चुनो क्या अच्छा है तुम्हारे मन के लिए। तुम्हें पता है अभद्र चित्र, वीडियोस, किताबें हमारे मानस पटल पर दुष्प्रभाव छोड़ते हैं, और धीरे धीरे हम इनके भी आदि हो जाते हैं।
0: ठीक है, मैं ना ध्यान रखूंगी। आखिर कर तो आप मेरे ही फायदे की बात रहे हैं।
1: तो चलो अब मैं सावित्रीबाई फूले की आगे की कहानी सुनाता हूँ। जब सावित्री फूले स्कूल जाती थी।
0: हाँ?
1: तो लोग पत्थर मारते थे।
0: ओह।
1: उन पर गंदगी फेंक देते थे।
0: अरे,
1: आज से 60 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, न जाने कितनी सामाजिक मुश्किलों से खोला गया होगा देश में एक अकेला बालिका विद्यालय। सावित्री बाई फूले पूरे देश की महानायिका है।
0: बिल्कुल।
1: हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया है।
0: अच्छा।
1: जब सावित्री बाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी।
0: हाँ?
1: तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंक देते थे। सावित्री बाई एक साड़ी अपने साथ थैले में लेकर चलती थी।
0: ओह।
1: और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी।
0: क्या बात है।
1: अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती थी। ऐसा देखा गया था कि जो महिलाएं या बच्चियां विधवा हो जाती थी, उन्हें अपने सर के सारे बाल कटवाने पड़ते थे।
0: ओह माय गॉड।
1: और बेहद साधारण जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उस समय सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने मिलकर नाइयों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।
0: अच्छा।
1: और महिलाओं को बाल कटने से बचवाया।

0: अरे वाह,
1: इस समय सामाजिक सुरक्षा न होने के कारण महिलाओं पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। कई बार गर्भवती महिलाओं को बेटी पैदा होने पर बहुत प्रताड़ित किया जाता था।
0: बेटी पैदा होने पर प्रताड़ित
1: या गर्भपात भी करा दिया जाता था। ऐसी महिलाओं के लिए भी सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने आवाज बुलंद की थी।
0: अच्छा।
1: सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई और सावित्री बाई फूले इस समाज की अति समर्पित कार्यकर्ता थी। ये संस्था दहेज मुक्त बिना पंडितों के विवाह का आयोजन करवाती थी।
0: अरे वाह,
1: सभी पुजारियों ने इस तरह की विवाहों का विरोध किया और वे इस बात को लेकर कोर्ट तक भी जा पहुँचे।

0: सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले की गोद ली हुई संतान यशवंत फूले बड़े होकर डॉक्टर बने।
1: अच्छा।
0: उन्होंने पुणे में ही अस्पताल खोला जहाँ मरीजों की सेवा सावित्री बाई भी किया करती थी।
1: अरे वाह।
0: जब उन्हें ज्ञात हुआ कि प्लेग की बीमारी आसपास सभी जगहों पर फैल गई है, तो उन्होंने अपने पुत्र यशवंत की मदद से पीड़ितों की संभाल करना शुरू कर दिया। हालांकि सावित्री बाई को ये पता था कि ये संक्रामक बीमारी है, फिर भी वो पीछे नहीं हटी, बल्कि प्लेग से पीड़ित लोगों को खुद अस्पताल पहुंचाया करती थी।
1: अच्छा।
0: एक बार तो एक बालक को प्लेग से बचाने के उपचार में खुद सावित्री बाई फूले को भी बीमारी लग गई थी। वे कभी कोई रंग भेद या जाति भेद नहीं करती थी और न ही करने देती थी। उनकी सोच तो महान थी ही, उनके कृत्य भी उतने ही महान थे। मनु,
1: बिल्कुल सच में।
0: अस्पताल में सभी मरीजों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। सावित्री बाई फूले ने अपना संपूर्ण जीवन मानव जाति की सेवा में लगाया। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्री बाई फूले का निधन हो गया। उन्होंने सदैव ही अपने पति का साथ दिया।
1: हाँ।
0: समाज को अपने लक्ष्य के आगे नहीं आने दिया। वे सच में आज की महिलाओं के लिए मिसाल है।
1: बिल्कुल।
0: उनका पूरा जीवन समाज में वंचित तबके, खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए ही संघर्ष में बीता।

0: की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, जो वाणी से उच्चार करे वैसा ही बर्ताव करे, वे ही नर नारी पूजनीय, सेवा परमार्थ पालन करे व्रत यथार्थ, और होवे कृतार्थ वे सब वंदनीय। सुख हो दुख कुछ स्वार्थ नहीं, जो जतन से कर अन्यों का हित वे ही ऊंचे, मानवता का रिश्ता जो जानते हैं वे सब सावित्री कहे सच्चे सब।
1: क्या बात है, ये कविता तो कमाल की है।
0: ये है सत्य नारी की प्रतिमा, अडोल सशक्त स्वाभिमानी और कल्याणकारी।
1: सच में, लेकिन आजकल के कुछ वीडियोस फोटोज ये सब नारी की गरिमा के विरुद्ध हैं।
0: लेकिन इसे खत्म कौन करेगा मनु?
1: कौन कर सकता है पुराना स्तंभ जी, ये तो सोशल मीडिया है, सभी को पूरी आजादी है।
0: ये खत्म हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा वीडियो या फोटो आए जो अश्लीलता को बढ़ावा देता हो, बस हम उसे आगे फॉरवर्ड न करें। हम सब ऐसा करेंगे तो क्या नहीं हो सकता।
1: बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मैं पूरा प्रयास करूंगी पुराना स्तंभ जी। मैं भी नहीं चाहती ऐसे किसी भी वीडियोस को देखने के बाद किसी की दुर्भावनाओं को कुछ गलत करने की प्रेरणा मिले।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ये हमारा ही कर्तव्य है। इसके लिए हम सभी को सजग होना पड़ेगा कि हम किसी भी ऐसी चीज को आगे दूसरों को न भेजें जो हमें खुद को अच्छी नहीं लगती है।
1: जी पुराना स्तंभ जी, और ये जरूर रुकेगा आपकी कहानी और शिक्षाओं के लिए। थैंक यू कहना तो थोड़ा कम लग रहा है, मगर और कोई शब्द भी तो नहीं है, इसलिए थैंक यू पुराना स्तंभ जी। बाय बाय।
0: बाय बाय मनु।
1: पुराने स्तंभ जी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब अपने एक्सपर्ट जी से कुछ अन्य विशेष बातें जानते हैं सावित्री बाई फूले जी के बारे में।
2: ऐकतो किंवा वाचन करतो त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की एवढंच आहे यांच्याबद्दल, परंतु असे काही गोष्टी असतात त्या लोकांपर्यंत पोहोचल्याच नसतात। तसं सावित्रीबाई फुले यांच्या की जे लोकांना माहिती नसेल

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब

0: हमारा भी जमाना था।
1: पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 3102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा र

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे संजय। आप सुन रहे हो रेडियो बुलेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कला के तीसरे अध्याय में। आज हम जानेंगे वेणु माधुरी, वह अद्भुत कला जिसने श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुरता ने संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर लिया। जब वज्र के बाल गोपियाँ और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उस स्वर को सुनते तो वे सब अपने अपने कार्य भूलकर केवल उस दिव्य धुन में लीन हो जाते। कहा जाता है कि बांसुरी की तान में ऐसा आकर्षण था कि यमुना की लहरें भी थम जाती है, वृक्षों के पत्ते भी स्थिर हो जाते। वेणु माधुरी केवल संगीत नहीं थी, यह प्रेम और भक्ति का ऐसा माध्यम था जिसने जीवन मात्र को श्री कृष्ण के सानिध्य में बांध दिया। यह कला हमें सिखाती है कि सच्चा संगीत केवल कानों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा श्री कृष्ण का गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कृष्णा की बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं थी, वह उनके हृदय की करुणा और प्रेम की ध्वनि थी। जब भी बांसुरी बजती, वृंदावन की गोपियाँ अपने सारे काम छोड़कर दौड़ पड़ती, गाय चरना भूल जाती, यमुना की लहरें थम जाती और पक्षी भी मौन हो जाते। यह बांसुरी केवल संगीत नहीं थी बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम था। आज के इस कथा अंश में हम अनुभव करेंगे वही वेणु माधुरी जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री कृष्ण के प्रेम को बांध दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम अगला दूसरा प्यारा गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर आर जे संजय। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। श्रोताओ, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो हर गोपी को लगता था कि यह स्वर केवल उसके लिए है। राधा तो इस तान में इतनी डूब जाती कि सांसारिक भानी भूल जाती। कृष्ण की बांसुरी ने वृंदावन को प्रेम और भक्ति का केंद्र बना लिया। ये लीला हमें बताती है कि ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं। उनकी धुन केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वेणु माधुरी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार को खाली कर देते हैं तो हम स्वयं बांसुरी बन जाते हैं और ईश्वर की ध्वनि हम में गुजती है। बांसुरी का अर्थ है शून्यता। जैसे बांसुरी खोखली होती है, वैसे ही हमें अपने भीतर से अहंकार और मोह को निकाल लेना चाहिए, तभी ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रवाहित होता है। ये लीला हमें ये संदेश देती है कि भक्ति केवल बाहरी अंडरवर नहीं बल्कि भीतर तक की निर्मलता है। जब मन शून्य होता है तभी उसमें दिव्यता का स्वर गुंजता है। तो दोस्तों, सुनते हैं और एक प्यारा सा सुंदर गीत।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वेणुकर कर गृही वंशी मधुर ध्वनिनम, अर्थात कृष्ण की बांसुरी का स्वर इतना सुंदर और मधुर है कि वह आत्मा को भी मोहित कर लेता है। यह श्लोक हमें बताता है कि कृष्ण की बांसुरी केवल ध्वनि नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य संदेश है। उसकी तान में ऐसा आकर्षण है कि जो मात्र अपने अहंकार और मोह को भूलकर केवल ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाता है। यही है श्री कृष्ण की वेणु माधुरी या संगीत साधना बन जाता है और साधना ईश्वर से मिलन का मार्ग है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो श्रोताओं, ये थी तीसरी कला वेणु माधुरी। ये कला हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर से अहंकार को निकाल दे तो हम भी ईश्वर की बांसुरी बन सकते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री कृष्ण की चौथी कला प्रीत माधुरी, यानी उनके प्रेम की मधुरता। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो सुनते हैं एक प्यारा सा गीत

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: पर

0: चलिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होकर बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्ते को एक नए नजरिए से देखते हुए एक बार फिर इस श्रृंखला में हम आपके साथ हैं अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। जब नजदीक से देखा तो हमने ये पाया कि चाहे वो रिश्ता घर का हो, परिवार का हो या फिर बाहर हमारे जहां हम काम करते हैं हमारे ऑफिस का हो, उस रिश्ते को अगर आज जो कुछ मैंने जाना है, सीखा है अपने बारे में, उसको अगर मैं अपनी जिंदगी में लेकर आती हूं तो हर रिश्ते को खूबसूरत बनाया जा सकता है। आज उस रिश्ते की बात करते हैं जो कि सचमुच खूबसूरत ही है, क्योंकि कहा जाता है कि बाकी सब रिश्ते तो शायद हमारे हाथ में नहीं होते, बने हुए होते हैं, लेकिन ये रिश्ता हम खुद चुनते हैं और वो रिश्ता होता है एक दोस्त का। आज कहीं न कहीं उसमें भी दरार पड़ती नजर आ रही है, कहीं अपेक्षाएं हैं दोस्त से, कहीं हमें लगता है कि हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास तोड़ा गया है, कहीं न कहीं पीड़ा उसमें भी नजर आ गई है। तो ऐसा क्या हो रहा है इन रिश्ते में भी, इसी पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है रामा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, आज उस बहुत खूबसूरत रिश्ते की हम बात करना चाह रहे हैं कि जो हर रिश्ते से बड़ा कई बार बन जाता है। हम हरेक की बात छोड़ देते हैं लेकिन अपने दोस्त की बात मान लेते हैं, वो दोस्त हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन आज के इस दौर में कहीं न कहीं उस दोस्ती को भी हमने ऐसा लगता है कि खो दिया है। हम हर बार ये कहते नजर आते हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, कहां गई वो प्योरिटी दोस्ती में।
1: हम अपने रिश्ते किन चीजों पर आधारित करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप हैज टू बी परमानेंट। अगर फाउंडेशन कोई टेम्पररी चीज है तो वो फाउंडेशन हिलती रहेगी, जब वो टेम्पररी चीज में कोई परिवर्तन आएगा। अब हमारी दोस्ती, क्योंकि दोस्त तो हम खुद से चूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई मे बी इट्स द ओनली रिलेशनशिप जहां हमारे पास फुल फ्रीडम है, हम अपनी चॉइस से यू नो वी डिसाइड कि हम किसके साथ ये संबंध जोड़ेंगे। बाकी सारे संबंध तो जुड़ जाते हैं या बने हुए मिलते हैं। तो इसमें ये किस बात पर आधारित है? इज इट बेस्ड ऑन फिजिकल थिंग्स, अगेन टेम्पररी थिंग्स, लुक्स, दूसरा दिखने में कैसा है, फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटस, डिग्री, यू नो पोजिशन, ऑल दीज थिंग्स विच आर टेम्पररी। क्योंकि आज बहुत बार हम देखते हैं कि इन चीजों पर दोस्ती बनती है, यू नो ये इस पोजिशन पर है, ये तो बहुत काम की पोजिशन है, इनके साथ दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए, यू नो तो ये रिश्ता बनाकर रखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिश्ता मेरे काम आने वाला है। तो ये रिश्ता क्या होगा? यू नो दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन, आज पोजिशन है तो आपने रिश्ता बनाकर रखा हुआ, पोजिशन गई, रिश्ता फिनिश्ड। तो फाउंडेशन क्या है? तो ये जब हम अपनी दोस्ती या संबंध में जोड़ते हैं, इसका फाउंडेशन शुड बी वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ द सोल रादर देन द रोल, जो उन्होंने अचीव किया है, अक्वायर किया है इस जीवन में, उस पर आधारित नहीं हो सकता। और जब वैल्यूज पर आधारित होगा तो वो परमानेंट है, और जो परमानेंट फाउंडेशन है वो हर ऊपर नीचे बात को क्रॉस करके चली जाएगी क्योंकि उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत है। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट फोकस करना पड़ेगा कि व्हाट डू आई लाइक इन यू, व्हाट इज इट अबाउट यू दैट लाइक, यू नो आई लाइक इट, विच वैल्यू अबाउट यू इज दैट यू नो अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड्स यू टू एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। एंड वंस आई बेस इट ऑन दोज वैल्यूज, तो आपकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होंगे, कभी भी नहीं। आप परिवर्तन हो सकते हैं, चेंज होंगे, दैट विल ऑलवेज बी फॉर द बेटर। एंड वंस आई हैव एक्सेप्टेड यू, कई बार लोग कहते हैं लेकिन उनके अंदर वो वैल्यूज थी जो आज
0: नहीं,
1: शायद हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर थी

0: जब हमारा ये संबंध जुड़ा था तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि अगर वो कहीं उस ट्रैक से किसी और रास्ते पर जा रहे हैं, हमने उन्हें देखा है उस रास्ते के ऊपर, तो हम दोस्त हैं, तो हम उन्हें फिर से उस रास्ते पर आने में सहयोग दे सकते हैं, rather than saying कि आपके अंदर वो वैल्यूज थी जिनके लिए मैंने आपसे दोस्ती की, अब वो वैल्यूज नहीं है, सो वी मूव अपार्ट, देन दैट वॉज नेवर अ फ्रेंडशिप एनीवेज.
1: अगेन दोस्ती, जैसा आपने कहा कि अगर हम स्कूल लेवल पर बात करते हैं क्योंकि वहीं से वो उसकी नींव पड़ जाती है, यहाँ देखा यह जाता है कि दोस्त के प्रति भी हम पोजेसिव हो जाते हैं. हमें ये लगता है कि ये मेरा दोस्त है तो ये मेरा ही रहेगा, वो मेरे जो मुझसे मेरी जिससे लड़ाई है उसका दोस्त नहीं हो सकता, या अगर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF आजकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट
0: अच्छा,
1: है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वो है अगर, तो वो फिर किसी और का दोस्त कैसे हो सकता है. तो ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, मैं अभी बिल्कुल स्कूल और कॉलेज लेवल की बातें कर रही हूँ कि जहां पे दोस्ती एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो पोजिशन लेती है.
0: एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ये रिलेशनशिप हम बार बार देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सोल्स, दो आत्माओं के बीच स्नेह और शक्ति, इसका लेन देन कहे या एक्सचेंज कहे, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये आत्मा का सिर्फ मेरे साथ ही हो सकता है, और अगर और किसी के साथ हुआ तो इसका मतलब मेरे साथ कम हो जाएगा. नेवर, इट्स एनर्जी विच डजंट हैव अ फिजिकल पैरामीटर. टाइम का फिजिकल पैरामीटर हो सकता है कि अगर आप कल मेरे साथ एक घंटा स्पेंड करते थे, अब आपके और भी दोस्त बन चुके हैं, तो शायद आप मेरे साथ 5 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, बट देन इट वॉज नेवर अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ एनर्जी एक्सचेंज. तो वेयर इज द क्वेश्चन कि अगर आपकी औरों के साथ रिश्ता जुड़ जाता है तो उसमें मेरे साथ कोई अंतर हो जाता है. ये जो पोजेशन की बात आती है या पोजेसिवनेस की बात आती है, ये अटैचमेंट है. Attachment to the image कि you are mine, you know, ego, ये बहुत सटल ego है क्योंकि हमने कहा ego is attachment to a wrong image of myself, तो ये एक attachment है कि you are mine. And अब अगर मैं देख रही हूँ कि आप किसी और से बात कर रहे हैं या किसी और के साथ बहुत ज्यादा time spend कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो image को insecurity होने लगती है कि कहीं you will leave me and go away. और जहां वो इनसिक्योरिटी होने लगती है, दैट इज वेन आई स्टार्ट फीलिंग हर्ट एंड आई माइट रिएक्ट कि आप उनसे क्यों बात कर रहे हैं, आप उनके साथ क्यों इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. एंड दिस कैन हैपन इन एनी केस, मतलब वी हैव सीन के इवन बिटवीन टू गर्ल्स,
1: दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग, नॉट ओनली बिटवीन अ गर्ल
0: या एनी रिलेशनशिप, कि बिटवीन टू गर्ल्स ओ हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन अब मेरी फ्रेंड की दोस्ती ना किसी और से हो गई है तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा. Why? I need to ask myself. आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन है, और वो कितने भी आत्माओं के साथ हो सकता है क्योंकि उस पर कोई टाइम की बॉन्डिंग नहीं है. इट इज एनर्जी फ्लो, एंड वो जितना उल्टा सबके साथ फ्लो करे आई शुड फील गुड. वाई डू आई कीप रिस्ट्रिक्टिंग इट, क्योंकि आई क्रिएटेड दिस इमेज दैट यू आर माइन. मेरी आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी के साथ जुड़ गई. क्यों? क्योंकि मुझे अपनी असली आइडेंटिटी भूल गई थी. तो जब हम वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है कि यू आर माई फ्रेंड या आई एम योर फ्रेंड, ये मेरी आइडेंटिटी है कि आई एम योर फ्रेंड, ये मेरी आइडेंटिटी है, और जहां मुझे लगता है कि आप कहीं और जा रहे हैं तो मेरी वो आइडेंटिटी हिलने लगती है कि यू नो ये तो बहुत लोगों के फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो वो मेरी आइडेंटिटी जब हिलती है तब अंदर से डर लगता है.
1: बिल्कुल, और बेस्ट फ्रेंड नहीं है वो मेरा, कई बार पता चलता है कि ओहो वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है. यार आई वांट टू आस्क यू समथिंग, दोस्त जब बनता है तो हम बहुत कुछ शेयर करते हैं क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें लगता है कि हमें समझ रहा है और हम सब कुछ शेयर कर लेना चाहते हैं. क्या शेयर मुझे कर लेना चाहिए सब कुछ? ये बहुत से सवाल हैं स्टूडेंट बच्चों के भी. क्या मैं कंप्लीट ट्रस्ट कर लूं अपने दोस्त पे कि वो मेरी बात कहीं और स्प्रेड नहीं करेगा, मेरी हर बात मैं शेयर कर सकता हूं, या मुझे सोचना चाहिए उसको?
0: सी, इफ इट इज अ फ्रेंडशिप तो वो ट्रस्ट के बिना तो फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप इज ट्रस्ट. अगर ट्रस्ट नहीं है तो कौन सी फ्रेंडशिप? अब जहां तक शेयरिंग की बात आती है, अगेन दिस विल बी अ पर्सनल डिसीजन हर एक का, लेकिन हमें एक आवश्यकता लगती है कि कोई ऐसा हो जिसके साथ हम बात करें. और जनरली क्या होता है, हम बात एक्चुअली अपने आप से ही कर रहे हैं. यू नो, इवन इफ आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट अ प्रॉब्लम ऑफ माइंड, नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि मुझे आपसे एडवाइस

0: नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई राय नहीं चाहिए उसके बारे में, मुझे सिर्फ कोई चाहिए जिसके सामने मैं बैठकर वो बोल सकूं, और बोलते बोलते बोलते मुझे खुद ही क्लैरिटी आ जाएगी,
1: सोल्यूशन मिल जाएगा।
0: इट्स नॉट कि आप मुझे सोल्यूशन देंगे, क्योंकि उस पोजीशन में तो मैं ही हूँ, वो प्रॉब्लम में मैं ही हूँ, तो उसका सोल्यूशन तो मेरे पास है, लेकिन जनरली वी फील लाइक शेयरिंग विथ पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर अपने आप से बात करना और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, ये हम थोड़ा सा अपने आप से डिस्कनेक्ट होने के कारण वो कर नहीं पाते हैं। तो जब हमें कोई मिल जाता है जिनसे हम वो बात कर सकते हैं, एंड विच इज अ गुड थिंग, इफ आई कैन शेयर विद समबडी तो वाई नॉट, बट विद फुल फेथ।
1: शिवानी, एक और एस्पेक्ट में लेती हूँ, कॉम्पिटिशन। साथ साथ हम पढ़ रहे हैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसके परसेंटेज मुझसे ज्यादा आ जाएगी, कैन आई कम्पीट विद माई फ्रेंड? क्योंकि कम्पीट करना है अगर मुझे तो फिर दोस्त कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक नेगेटिव फीलिंग के साथ कम्पीट कर रहा होगा या कर रही होंगी। सो कैन आई कम्पीट विद माई फ्रेंड, और जिसके साथ मैं कम्पीट कर रही हूँ सेकेंड या थर्ड पोजिशन के लिए, वो मेरा दोस्त हो सकता है?
0: Yes, हो सकते हैं। Generally we feel there are a lot of friendships which you know everyone is first, second, third, fourth in class. लेकिन कि competition कोई चीज नहीं है, आपको marks चाहिए, आपको एक percentage चाहिए, वो भी जो हमारा present system बना हुआ है उस अनुसार हमें percentage चाहिए to go into the next compartment or to go into the next profession. लेकिन उसमें ये तो कहीं भी नहीं है कि अगर दूसरे को भी उतने marks मिले तो उससे आपको कोई problem होने वाली है। See, if my friend doesn't do well, I will not like it. You know, I will feel, because the friend is in pain. वो दर्द में है तो मुझे खुशी कैसे हो सकती है? और अगर फ्रेंड खुश है तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा. बाकी इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, आई परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, ही और शी ऑल्सो परफॉर्म्स टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, फाइनली एक ने फर्स्ट आना, एक ने सेकेंड आना, एक ने थर्ड, एंड दैट इज डजंट मैटर। माई परसेंटेज, येस, मे बी दैट मैटर्स, एंड आई जस्ट फ्लो विद इट, एंड इन फैक्ट इट्स फन टू डू इट टूगेदर। It should be fun rather than being a negative undercurrent. We can really do it with that spirit of let's do better than what we did before. Rather than let me do better than you and you do better than me, let me outperform myself rather than outperform you.
1: Yes, that's very important. Shivani, ये शायद वो रिश्ता है जिसे हम मान के चल सकते हैं कि हमने चुना है तो हम कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन यही रिश्ता वो होता है जिसमें हम सबसे ज्यादा भरोसा भी करके बैठे होते हैं। ये वो रिश्ता है जो हमें सबसे प्रिय होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कि मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ या वो भी छोड़ सकता है, और दूसरी तरफ ये कि क्योंकि ये मैंने अपनी चॉइस से बुना है तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, इसके लिए क्या मैं वर्क कर सकता हूँ?
0: सी, एक तो वी लिव टू मच इन पीछे क्या हुआ था या आगे क्या होने वाला है, तो ये जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करना कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, रिश्ते कभी टूटते नहीं है, एक एनर्जी कनेक्शन कभी टूटता नहीं है। ये हो सकता है कि समय परिस्थितियों के कारण हम कभी बहुत ज्यादा समय मिलते हैं और कभी हम काफी समय नहीं मिल पाते। हो सकता है एक कंट्री में चला जाए, दूसरा एक दूसरी कंट्री में हो, तो ये नहीं बोलेंगे कि रिश्ता टूट गया। वी जस्ट अवे, इट्स जस्ट दैट अर्लियर हम एक ही क्लास में एक ही बेंच पे बैठते थे, तो वी वर 8 आवर्स टूगेदर, एंड अब हम बिल्कुल एक दो अलग देशों में है। रिश्ता कहाँ टूटा? रिश्ता टूटता नहीं है, समय परिस्थिति हमें नजदीक या दूर ला सकती है। लेकिन हमें अभी जब हम स्कूल या कॉलेज में है, हमें बैठकर ये नहीं सोचना है कि वी विल बी फ्रेंड्स फॉर एवर, ये कभी नहीं टूटेगा। टूडे, अभी का मोमेंट क्या है, अभी हमारा ये संबंध कैसा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सारा दिन फ्यूचर के बारे में सोचना, बिकॉज हम एक ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आज हम दोनों एक दूसरे को गारंटी पेपर भी लिखते कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा सो कॉल्ड, या वी विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल हैपन लाइक दैट। हो सकता है कि अगले 10 साल आप एक दूसरे से एक बार भी नहीं मिले, ये पॉसिबल है। या हो सकता है परिस्थितियां ऐसी कुछ आ जाए कि आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जो भी। तो वाई गेट इन टू दैट दैट कन्फ्यूजन? इट्स अ कन्फ्यूजन एंड इट्स एन अननेसेसरली कहें जकड़ के रखने की कोशिश करना। रिश्ता ये नहीं है कि आप मेरे ही हो और आप सारी उम्र मेरे ही रहोगे। नो, इट इज वी आर एट द प्रेजेंट मोमेंट टूगेदर, एंड हमें ये मोमेंट अच्छा लगता है, अगला मोमेंट अच्छा लगता है। ईच मोमेंट को हम, सो दैट्स लिविंग इन द प्रेजेंट, और ये लिविंग इन द प्रेजेंट हर एक रिश्ते में इम्पोर्टेंट है।
1: मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, दोस्त में क्या इतनी ताकत होनी चाहिए? मुझे दिख रहा है कि मेरा दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है, चाहे वो स्मोकिंग की शुरुआत है, चाहे

0: लग जाते हैं और दर्द होता है। तो सबसे पहले तो फोकस बहुत क्लियर हो कि आप पढ़ाई के समय से गुजर रहे हैं एंड दिस इज एन ऑब्स्टिकल। ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पीपल से दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन, आई वुड से इट्स अ वेरी बिग ऑब्स्टिकल जो आपकी पूरी स्टूडेंट लाइफ, पूरा करियर एंड योर एंटायर लाइफ टाइम इन टर्म्स ऑफ करियर एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी। करियर तो फिर भी ठीक है, बने जो भी, लेकिन पर्सनैलिटी पर जो इम्पैक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस से गुजर जाते हैं, जैसे आजकल बच्चे कहते हैं आई लाइक सो एंड सो बट उन्होंने मुझे नहीं एक्सेप्ट किया, है ना। तो जब उन्हें वो रिजेक्शन मिलता है, ये रिजेक्शन एक बच्चे की पर्सनालिटी पर इतना डीप इम्पैक्ट छोड़ देता है, क्योंकि बच्चा इज वेरी स्टिल नॉट मेच्योर, उसे पता नहीं है कि रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है, उसे ये भी मेच्योरिटी नहीं है कि ये रिजेक्शन उस सामने वाले व्यक्ति की अपनी चॉइस है। मुझे ये लगने लगता है कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, ये मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कोई कमी है, एंड इट इज द फर्स्ट सीड ऑफ एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि आई एम नो गुड, जिनको मैंने लाइक किया उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते थे, उन्हें मैं क्यों नहीं अच्छा लगा। तो द फॉल्ट इज विद मी, माई सेल्फ कॉन्फिडेंस टोटली क्रैशेस, टोटली सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से फिनिश्ड। अब ये पर्सनालिटी में जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि देन दे विल से पहले तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, पहले तो सब कुछ ठीक था मेरे साथ, अब ये क्यों हो गया, क्योंकि मेरे अंदर वो रिजेक्शन को फेस करने की मेच्योरिटी नहीं थी, क्योंकि अभी मैं वो एज पर नहीं पहुंचा टू अंडरस्टैंड। तो वो मेरी पर्सनालिटी में एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है और ये कॉम्प्लेक्स मेरे साथ मेरे रिलेशनशिप्स में आगे मेरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में हर जगह एक इम्पैक्ट डालेगा। तो ये मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ, गलती मेरी नहीं थी, लेकिन मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया जिसको मुझे लाइफ लॉन्ग झेलना पड़ेगा। इस एक रिजेक्शन की वजह से मैं मेजोरिटी और रिश्तों में विश्वास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से मुझे धोखा मिला था, या तो देयर वाज अ रिलेशनशिप और वो टूट गया तो उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। अब अगर किसी ने मुझे धोखा दे दिया उस एज में, वो यंग एज में, आई कैरी दैट लाइफ लॉन्ग एंड आई फील के सब लोग ऐसे हैं, धोखा देते हैं, मैच्योरिटी नहीं है। तो हम कितना नुकसान अपना कर देते हैं इन रास्तों पर अभी चलते।
1: एक और एस्पेक्ट जो सबसे ज्यादा वायलेंस का एस्पेक्ट हम देख रहे हैं वो है कि ऑब्सेसिव, जो कि वो मेरा ही है या वो मेरी है, इस उम्र में ही ये एहसास लेकर, और वो कहीं ना कहीं इतना वायलेंट हो रहा है, हाउ टू एक्चुअली हैंडल इट। दे कैन बी अ गर्ल जिसको एक लड़का ये कहे कि आई लव यू, एंड उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट ही करता रहे कि वहां से नहीं रिजेक्शन, रिजेक्शन को कितनी बार वायलेंस में कन्वर्ट किया गया।
0: एब्सोल्युटली, बिकॉज पावर ही नहीं है ना, पावर नहीं है तो जहां रिजेक्शन आ गई, नेगेटिविटी आ गई, तो उसे एक आउटलेट चाहिए। तो आउटलेट या तो सेल्फ वायलेंस पर हो जाएगा, आप अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट कर लेंगे ना। सो मेनी पीपल ट्राई टू कमिट सुसाइड, या अपना डैमेज कर देते हैं, या अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं सबसे, ये भी सेल्फ डैमेज है, या हम दूसरे को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतनी नफरत अंदर भर गई है तो वो आउटलेट कहां से आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये जो हमारा एज है, दिस इज फॉर सिंपल ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप्स, वेरी हेल्दी रिलेशनशिप्स जो हम बहुत लोगों के साथ बना सकते हैं। इस एज में आप ये नहीं डिसाइड करने की कोशिश करो कि मैं इनके साथ अपनी पूरी जीवन जीना चाहता हूँ, दिस इज माई पार्टनर, नो, बिकॉज राइट नाउ हम उस मेच्योरिटी लेवल पर ही नहीं है कि हम वो डिसाइड करें कि किसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहें। एंड जो हम फेज बिताने वाले हैं जिस एज का, अभी हम दोनों उस एज में ही नहीं है, तो रियली हम एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे हैं। मे बी टुडे दे मे बी 15 इयर्स ओल्ड या 16 इयर्स ओल्ड, बट बाय द टाइम दे आर 25 दे विल बी टू डिफरेंट पर्सन, एब्सोल्युटली टू डिफरेंट पीपल। एंड तो इज इट पॉसिबल कि 15 या 17 की एज में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि 25 या 40 की एज में हम एक दूसरे के साथ रहे? हाउ कैन वी डिसाइड दैट, बिकॉज दैट टाइम दैट पर्सन विल बी समबडी टोटली डिफरेंट। तो इस बचपने की एज में हम वो नहीं डिसाइड कर सकते हैं, तो हम बहुत सारे गलत डिसीशंस उस वजह से ले लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एट अ वेरी अर्ली एज हमारी थॉट्स के अंदर इम्प्योरिटी आनी शुरू हो गई है। हम वो बॉडीली अट्रैक्शन और उस तरफ जो एक प्योरिटी की एज है, चाइल्डहुड इनोसेंस, चाइल्डहुड

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। सुख दुख

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच. हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर
1: करायचं.
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
2: लकडी की काठी काठी पे घोडा.
0: मनात पीठ वाजल्या की शरीर अबोब फिरकतं. त्याचसोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
1: पहला नशा पहला हमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. मैं हूं आरजे शिवप्रिया. आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर. श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं कि हर मनुष्य आत्मा में कोई न कोई गुण जरूर होता है. ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें एक भी गुण ना हो. ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम गुण देखते हैं या अवगुण. हर मनुष्य आत्मा परमात्मा की संतान है. भगवान की संतान होने के नाते हर मनुष्य आत्मा में ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता के संस्कार विद्यमान होते ही हैं. हर आत्मा में ये 7 गुण हैं. जो मनुष्य आत्मा जिस गुण को ज्यादा यूज करेगी, अपने कार्य में लाएगी, उस गुण का विकास होगा और वो मनुष्य आत्मा उसी गुण में मास्टर बनेगी. गुणों को बढ़ाने का सरल उपाय है उस गुण को अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करना. जब हम हर परिस्थिति में शांत रहना सीखते हैं, तब हम अपने अंदर के शांति को बढ़ाते हैं. हर परिस्थिति में कैसे रिएक्ट होना है, यह मेरी चॉइस है. अगर हम परिस्थिति में गुस्सा करेंगे तो गुस्से वाले बन जाएंगे. जब मनुष्य आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप के विपरीत अवगुणों को चुनती है, तब वह दुख महसूस करती है, क्योंकि उसने अपने ओरिजिनल स्वभाव के विरुद्ध जाकर अवगुणों को चुना है. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये अवगुण हैं. परमात्मा कहते हैं तुम्हें अवगुणों को छोड़कर अपने वास्तविक गुणों को चुनना है. जैसे राजहंस मोती चुभता है और बबूला कंकड़ चुभता है, उसी प्रकार हमें राजहंस बनकर गुणों रूपी मोती को चुगना है. हर मनुष्य आत्मा जब परम धाम से इस धरा पर आई, तब वह पवित्र थी, सातों गुणों से भरपूर सतोगुणी थी. आत्मिक शक्ति भरपूर होने के कारण उसकी बैटरी फुल चार्ज थी. जब हम मनुष्य आत्मा आत्मिक शक्ति से भरपूर होते हैं, तब हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है. अनेक जन्म लेते लेते हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, अर्थात हमारी आत्मिक शक्ति घटने लगती है. जब मनुष्य आत्मा की शक्ति घटती है, तब उसके कर्म विकर्म बन जाते हैं. आत्मिक स्मृति को छोड़ देहभान में आने के कारण मनुष्य आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रवेश करता है. कलयुग तक आते आते मनुष्य आत्मा के अंदर ये विकार बढ़ जाते हैं। आत्मिक शक्ति घटने के कारण मनुष्य आत्मा पर कलयुगी वायुमंडल का असर होने लगता है, इसीलिए उसके कर्म बिगड़ते हैं। जैसे ही कर्म बिगड़े, मनुष्य का भाग्य भी बिगड़ता है। मनुष्य आत्मा का भाग्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने के लिए आत्मिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। देहभान, विकार, परचिंतन, परदर्शन, निंदा, ग्लानी से हमारी आत्मिक शक्ति घटती है। जिस शक्ति की हमें जरूरत होती है अच्छे कर्म कर अच्छा भाग्य बनाने के लिए, उसे हम दूसरों के अवगुण देखने में खर्च कर देते हैं। जितना दूसरों की निंदा ग्लानी करेंगे, अवगुणों का वर्णन करेंगे, अवगुण देखेंगे, उतनी हमारी आत्मिक शक्ति घटेगी, भाग्य बिगड़ेगा। परमात्मा कहते हैं कमजोर मनुष्य आत्मा गलत कर्म करेगी ही, क्योंकि अच्छे कर्म करने के लिए आत्मिक शक्ति उसके पास नहीं है। ऐसे कमजोर मनुष्य आत्मा के कर्मों का चिंतन, वर्णन, निंदा, ग्लानी हमारी शक्ति भी घटाता है और हमसे भी कोई न कोई गलत कर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी सारी ऊर्जा दूसरों के अवगुण देखने में गवा दी। हम भी कोई न कोई गलत कर्म करने लग पड़ेंगे और हमारा भी भाग्य बिगड़ेगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि किसी के अवगुणों को ना देख, उसमें क्या गुण है उसे ढूंढने की कोशिश करो। श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिड़के बोलना है, कुछ भी हुआ चिड़के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं हम जिस भी चीज पर ध्यान लगाएंगे वो चीज बढ़ेगी, क्योंकि हमने अपनी सारी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित किया है। अगर हम अवगुणों पर ध्यान लगाएंगे तो अवगुण समाज में बढ़ेंगे, सामने वाली मनुष्य आत्मा और कमजोर बनेगी और उसके साथ साथ हम भी कमजोर बनेंगे, क्योंकि हमने अपनी सारी ऊर्जा निगेटिविटी की ओर लगाई। इसके विपरीत जब हम प्रयत्न पूर्वक किसी में गुण खोजने की कोशिश करते हैं तब हम अपनी ऊर्जा सकारात्मक बातों की ओर लगाते हैं और इसी कारण समाज में ये गुण बढ़ेंगे। सामने वाली मनुष्य आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी और हमारी भी शक्ति बढ़ेगी। कलयुग में ज्यादा अवगुण नजर आते हैं क्योंकि हर कोई शक्तिहीन हो गया है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भले सामने वाले मनुष्य आत्मा में कई अवगुण हैं, लेकिन एक ना एक गुण तो होगा ही। आप अपनी ऊर्जा उस एक गुण पर लगाओ। जैसे ही हम अपना फोकस अवगुणों को देखने से हटाकर गुण खोजने में लगाते हैं तब हम गुणग्राही बन जाते हैं। गुणग्राही अर्थात दूसरों के गुणों को परखना और उन्हें अपने जीवन में धारण करना। गुणग्राही बनने से व्यक्ति की कल्याणकारी भावना जागृत होती है और मन में कभी भी हलचल नहीं होती। हर व्यक्ति में कमियां देखने के बजाय उनकी खूबियों को देखना और उसका सम्मान करना। परमात्मा कहते हैं जब आप गुणों को ग्रहण करने की आदत बना लेते हैं तो दूसरों की नकारात्मक बातें आपका मन अशांत नहीं कर पाती। परमात्मा कहते हैं हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। आज तक कलयुग में हमें दूसरों के अंदर की बुराई देखने की ही आदत पड़ी थी। परचिंतन परदर्शन पतन की जड़ है। जितना हम बाह्यमुखी होंगे उतना हम दुखी होंगे। जितना हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते रहेंगे उतना हम दुखी होते रहेंगे। दूसरे हमारे अनुसार नहीं चल सकते।

हर मनुष्य आत्मा स्वतंत्र है। हर मनुष्य आत्मा के अपने संस्कार, स्वभाव, विचार है। हर मनुष्य आत्मा अपने अपने शक्ति अनुसार कर्म करती और भाग्य बनाती है। आज तक हमने दूसरों के अवगुणों को देखने में बहुत शक्ति गवाई, लेकिन परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अब गुण को खोजो। गुणग्राही बनेंगे तो हमारी शक्ति भी बढ़ेगी, हम भी गुणवान बनते जाएंगे। हमें केवल अपनी आदतें ही तो बदलनी है। दूसरों के स्वभाव संस्कार देखने की आदत तो हमें है ही, तो क्यों ना परमात्मा के श्रीमत अनुसार बुराई देखने के बजाय अच्छाई देखने में अपनी ऊर्जा को लगाएं। अच्छाई देखते देखते एक दिन हम भी अच्छे बन ही जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि गुणों को देखोगे तो तुम भी गुणवान बन जाएंगे, अवगुणों को देखोगे तो तुम भी अवगुणी बन जाओगे। परमात्मा कहते हैं कलयुग में बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन तुम्हें देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। स्वयं की रक्षा करनी है कलयुगी वायुमंडल से। परमात्मा ने सभी मनुष्य आत्मा को ज्ञान, शांति, शक्ति, प्रेम, सुख, पवित्रता, आनंद, ये सातों गुण दिए हैं। इसलिए हर मनुष्य आत्मा इन सातों गुणों को अनुभव करना चाहती है। शक्ति घटने से हर मनुष्य आत्मा ये गुण स्वयं में अनुभव करने के बजाय बाहर तलाशती है। जब बाहर भी नहीं मिलता तो दुखी हो जाती है। परमात्मा कहते हैं तुम्हें ये गुण बाहर नहीं तलाशना है, बल्कि इन गुणों का चिंतन करो तो तुम्हें इन गुणों का अनुभव होने लगेगा। तुम हो ही शांत स्वरूप आत्मा। हमें इन सातों गुणों का चिंतन करके इन्हें अनुभव करना है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए लाइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं हर व्यक्ति से, प्रकृति से, प्रकृति के पांचों तत्वों से, फूल पौधों से, नदियों से गुण धारण करो। परमात्मा कहते हैं सागर से गंभीरता का गुण धारण करो। जैसे सागर में कीचड़ा डालते हैं तो सागर अपने लहरों के द्वारा उसे किनारा कर देता है, अपने अंदर नहीं समाता। उसी प्रकार हमें कलयुगी अवगुणों का कीचड़ा किनारे कर देना है, अपने अंदर नहीं समाना। जैसे गोताखोर सागर के तले में जाता है तब उसे मोती रत्न मिलते हैं, वैसे ही हम बच्चों को परमात्मा के ज्ञान सागर के तले में पहुंचना है ताकि हमें भी ज्ञान रत्नों की प्राप्ति हो। हवा के कारण सागर के ऊपर कितनी भी लहरें क्यों न हो, लेकिन सागर अंदर से शांत धैर्यव्रत होता है। परमात्मा कहते हैं बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें सागर के अंतरंग के समान शांत धैर्यव्रत होना चाहिए। सागर के किनारे पानी के वजह से घिस घिस कर पत्थर भी शालिग्राम बन जाते हैं। इसी प्रकार परिस्थिति के अनुभवों से तुम भी गुणवान बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं जैसे अग्नि में कुछ भी डालने से वो उसे जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार जब हम परमात्मा याद की अग्नि को जलाते हैं तब हमारे जन्म जन्म के विकारों का कीचड़ा जलकर भस्म हो जाता है।

परमात्मा कहते हैं वायु समान मन को हल्का रखो। मन से भूतकाल की घटनाओं का, दूसरों के अवगुणों का बोझ उतार दो। परमात्मा कहते हैं आकाश की तरह विशाल बुद्धि रखो, विशाल हृदय रखो। हद इंसान को बांधता है। आसमान की तरह अपने बुद्धि को बेहद में रखो, अर्थात उच्च विचार करो। परमात्मा कहते हैं जल में वस्तुओं को धोने, शुद्ध करने का गुण है। जिस प्रकार जल शरीर को स्वच्छ करता है, उसी प्रकार ज्ञान का जल मन बुद्धि को स्वच्छ करता है। जल में कोई पत्थर मारता है तो बहता हुआ पानी उस पत्थर के नामों निशान को मिटाकर आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब परिस्थितियां, लोग हमारे ऊपर वार करें, तो उसके बाद के नामों निशान को मिटाकर हमें भी आगे बढ़ना है। परमात्मा कहते हैं जैसे चंद्रमा शीतल है, उसी प्रकार आप भी शीतल बन जाओ। जैसे चंद्रमा पूर्णमासी में संपूर्ण रूप में सुहावना लगता है, उसी प्रकार आपका संपूर्ण पवित्रता का रूप, 16 कला संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न सुहावना रूप लगता है। परमात्मा कहते हैं तुम्हें पूर्णमासी चंद्रमा के तरह संपन्न और संपूर्ण पवित्र बनना है। परमात्मा कहते हैं जैसे गुलाब सुगंधित मनमोहक लगता है, उसी प्रकार परमात्मा के बच्चे भी खिले हुए गुलाब की तरह हर्षित मुख रहे। जैसे कमल फूल दलदल में रहते हुए भी उस दलदल के कीचड़ कमल फूल को स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस कलयुगी वायुमंडल का कीचड़ा भी आपको स्पर्श ना करे। कमल फूल समान आप भी न्यारे प्यारे रहो। जैसे सूर्यमुखी फूल सदा सूरज को ही देखता है, उसी प्रकार आप भी सदा परमात्मा को अपने मन बुद्धि के नेत्र से निहारते रहो, तो शक्तिशाली बन जाओगे। जैसे रात रानी का फूल रात्रि में सुगंध देता है, उसी प्रकार आप भी इस कलयुगी रात्रि में अपने गुणों की सुगंध फैलाओ। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा गुणों का सागर है। अगर हमें गुणमूर्त गुणग्राही बनना है तो हमें परमात्मा के गुणों का चिंतन करना होगा। परमात्मा क्षमा का सागर है, हमें भी मास्टर क्षमा का सागर बन सबको माफ करना होगा, क्योंकि हम भी तो परमात्मा की संतान हैं।

जैसे हमारा परमपिता होगा वैसे ही तो हमें बनना होगा। हमारा परमपिता रहम का सागर है, वो ये नहीं देखता कि उसका बच्चा कैसा है, कितने अवगुण है, वो तो सब पर रहम करता है। हमें भी अपने पिता की तरह बनने की कोशिश करनी होगी। परमात्मा अपकारी पर उपकार करने वाला है। भक्ति में अज्ञानता के कारण हमने परमात्मा की बहुत ग्लानी की, परमात्मा को सर्वव्यापी कहा, कण कण में कहा। कण कण में तो धूल मिट्टी पत्थर किचड़ा गंदगी सब आ गया। क्या पवित्रता का सागर, पतित पावन जो हमेशा पवित्र है, परम है, वो धूल मिट्टी पत्थर किचड़े में होगा? नहीं ना, परमात्मा तो सबसे पवित्र स्थान परम धाम में रहने वाला है। अज्ञानता के कारण हमने उसे सर्वव्यापी कण कण में कहकर उसकी ग्लानी कर दी। ऐसा अपकार करने वाले हम बच्चों पर भी परमात्मा ने उपकार किया। ग्लानी करने वाले को भी गले लगाया। इतना विशाल हृदय वाला है मेरा परमात्मा। हमें भी ऐसा बनना है। परमात्मा ज्ञान शांति शक्ति प्रेम सुख पवित्रता आनंद का सागर है। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, सभी को सुख देता है। परमात्मा के सामने कोई भी आए वो किसी का तिरस्कार नहीं करता। सभी को उनके कमी कमजोरियों के साथ अवगुणों के साथ स्वीकार करता है। परमात्मा पतित पावन है। पतित विकारों से भरे हुए मनुष्य आत्मा को पावन पवित्र बनाने वाला है। परमात्मा पत्थर बुद्धि वाले मनुष्य को भी पारस बुद्धि वाला बनाता है। परमात्मा नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाने वाला है। परमात्मा मनुष्य आत्माओं में दैवी गुण भरकर मनुष्य से देवता बनाने वाला है। परमात्मा कल्याणकारी है। परमात्मा किसी का अकल्याण नहीं करता। परमात्मा सभी को सुखों का रास्ता बताता है, सद्गति देता है। परमात्मा सभी को श्रेष्ठ कर्म करना सिखाकर सभी का श्रेष्ठ भाग्य जगाता है। परमात्मा सतचित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा सुख दुखों से न्यारा है। परमात्मा गुणों के भंडार है। अगर हम अपना ध्यान मनुष्यों के अवगुणों से हटाकर परमात्मा के गुणों पर लगाए तो हम कितने गुणवान बन जाएंगे। क्या रखा है मनुष्यों के अवगुणों का चिंतन करने में, हमारी ही शक्ति घटेगी। इससे तो अच्छा है कि अपना ध्यान गुण खोजने में लगाना, उन गुणों को धारण करने में लगाना, परमात्मा के गुणों का चिंतन करना। जितना हम गुणों का चिंतन करेंगे उतना हम गुणवान बनेंगे। अब स्वयं को बदलना है, उस परमात्मा के गुणों को अपनाना है, क्योंकि हम भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। बच्चा बाप समान ही तो होगा। हमारा परमपिता इतना पवित्र इतना अच्छा, और कलयुग तक आते आते हम क्या से क्या बन गए। अब वापस ऊपर चढ़ना है, व्यक्तियों से प्रकृति से परमात्मा से गुण उठाने हैं, गुणों को ग्रहण करना है, गुणों को धारण कर गुणग्राही बनना है। गुण धारण भी तभी होंगे जब हमारे अंदर शक्ति होगी, और शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को बड़े प्यार से याद करना है।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आला आला आला।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनिए लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारे मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: जब देश भर में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की लहर चली तो उसमें शाहजहांपुर के नवादा गांव का एक युवक भी शामिल हुआ। नाम था उसका ठाकुर रोशन सिंह। असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ तो रोशन सिंह ने अहिंसावादी आंदोलन से नाता तोड़कर सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन से नाता जोड़ लिया और वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के दल में शामिल हो गए। उग्र देशभक्ति में लीन ठाकुर रोशन सिंह ने कई राजनीतिक डकैतियां डाली थी। यद्यपि वे काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं थे, फिर भी बिस्मिल के साथी होने की वजह से पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। जब काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे का फैसला सुनाया जाना था तो सबको यही उम्मीद थी कि ठाकुर रोशन सिंह को 5 साल के कारावास की सजा मिलेगी, मगर अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें भी फांसी की सजा सुना दी। सजा सुनकर रोशन सिंह खुशी से उछल पड़े। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ ठाकुर रोशन सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी के फंदे तक वे हाथ में गीता लिए रहे और फंदे पर झूलने से पहले उन्होंने वंदे मातरम का जय घोष किया। ठाकुर रोशन सिंह के शव का अंतिम संस्कार गंगा के किनारे किया गया। एक और क्रांतिकारी भारत मां के चरणों में समर्पित हो गया।

0: और गाड़ी ठीक से तो बंद किया कर यार, प्लस टूट जाएंगे। क्या झटका मार के गाड़ी बंद करता है यार
1: भाई, जैसे भी सलीके से चलाया करो, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। झटका देके बंद करेगा तो हड्डियां भी टूट सकती है।
2: अरे तो तू ही चला ले।
0: तू ही चला लो, पहलवानी करता तू गाड़ी के साथ। अरे सुरेंद्र इधर आ जा, इधर
1: चलो भाई, आओ अंदर आओ,
0: ये टेबल बड़ी है।
1: हाँ यार जो भी है जल्दी मंगाओ, बहुत जोर से भूख लगी।
0: हाँ यार भूख तो लगी है।
3: अरे राजू बेटा।
0: जी हाँ।
3: उधर दो टेबल जोड़ दो, ज्यादा लोग हैं।
0: अच्छा भाई यार सुन, सिलेक्शन नजदीक आ रहा है यार, पता नहीं अपन इस बार की टीम में होंगे भी कि नहीं।
2: अबे तुझको डर लग रहा है क्या?
1: हमको अपने टैलेंट पर कोई शक नहीं है यार, बस अपने साथ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कम से कम खेल कूद से तो दूर रहनी चाहिए गंदगी।
2: अबे कहाँ लगे हो बे, ये सब बदलना बहुत मुश्किल काम है, और ये दुनिया ऐसी है, कहीं भी बिना जोर जबरदस्ती के कुछ काम नहीं होता।
0: अरे तो क्या लड़ना ही छोड़ देंगे? एक तो हम कुश्ती लड़ते हैं, इसमें हारना नहीं सिखाते, समझा? दूसरी ओर हम बेईमानी के खिलाफ लड़े ही नहीं।
2: अरे तुमको कुश्ती अखाड़े में लड़ने के लिए सिखाई जाती है भैया, इसको सड़क पर आजमाने निकल गए तो हो गया कल्याण।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, अखाड़े में ही दिखाओ सारी पहलवानी और साबित कर दो कि सचमुच कुश्ती पहलवानों के पास बड़ा शरीर और छोटी अकल होती है।
2: भाई मैं तो अपने को दूर रखता हूँ इन चीजों से, क्या समझे? अपन तो मामा जी से कल ही मिल के आए हैं, पूरी सेटिंग करेंगे मामा जी मेरे सिलेक्शन की।
1: देखा देखा देखा तुमने, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अच्छा हुआ जो मैंने दूसरे पार्टिसिपेंट्स को मिलाकर यूनियन तैयार कर ली, वरना तुम्हारे जैसे लोग दूसरों का हक मार ले जाते हैं हर बार।
2: ये मछली किसको कहा तूने?
0: हाँ आखिर एक न एक दिन सच की जीत होगी कायरता के सामने।
2: देखो लड़ो मत यार, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे।
1: क्यों तुम दूसरों की पीठ में छुरा भोंको और हम चुप रहे?
2: अरे यार तुम लोग कहो तो तुम्हारी भी सेटिंग करा दूं।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, आज बबलू कल राजू फिर मोनू, सबकी सेटिंग करा देगा ना तू तो।
2: यार तू भड़क क्यों रहा है?
0: तू आगे कुछ और बोला ना तो यहीं सिलेक्शन कर दूंगा कि कौन है पहलवान।
2: ये बात है तो आ जा।
1: अरे
0: तो आ जाना, उससे डरता कौन है?
2: जी ऐसी की तरह
0: मुझसे लड़ेगा तू?
2: अबे जा रे, तू
0: सेटिंग के दम पे अपना सिलेक्शन कराने वाले।
1: अरे
2: आज सारे दांत तोड़ दूंगा।
0: अरे तू क्या दांत तोड़ेगा?
1: कॉलर छोड़, क्या कर रहे हो तुम लोग?
2: अरे तुम भी छोड़ो,
1: छोड़ो हाँ छोड़ो,
2: आज यही फैसला हो
1: जाएगा।
3: अरे क्या हो रहा है यार, इतने समय से आते हो तुम लोग यहाँ, इतनी गहरी दोस्ती है, और जब परीक्षा का वक्त आ गया तो लड़ने लगे?
2: आप बीच मत बोलिए काका।
1: अरे कुछ तो शर्म करो, आखिर बुजुर्ग है वो हमारे।
3: अरे चुप हो जा बेटा, अरे तू तो गोद में खेला है मेरी, कुछ तो अपने पिता की दी हुई शिक्षा का सम्मान रख, अपनी पहलवानी पे घमंड करना कोई अच्छी बात नहीं है। तेरा नाम तो गलत ही रख दिया जसवंत सिंह ने, जानता है तेरा नाम रोशन सिंह किसके नाम पर रखा गया था?
2: किसके?
3: वो थे ठाकुर रोशन सिंह, स्वतंत्रता आंदोलन का वो क्रांतिकारी जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया।
1: अच्छा काका कौन थे वो, क्या वो भी पहलवानी करते थे?
3: हाँ ठाकुर रोशन सिंह एक हरफन मोला व्यक्ति थे, जिन्हें लाठी तलवार और बंदूक ये सब चलाने में महारत हासिल थी। ऊंचा कद और कसरत से गठा शरीर बहुत ही ठोस और गठीला था, उनकी मांसपेशियां ऐसे दिखती थीं कि अगर कोई लाठी मारे तो खुद उसका हाथ सुन्न हो जाए।
0: हाँ हाँ मैंने भी कहीं पढ़ा है इनके बारे में, ये वही ठाकुर साहब तो नहीं जो रामप्रसाद बिस्मिल के साथी थे?
3: बिल्कुल सही बेटा, शाहजहांपुर के पास नवादा गांव में खेती बाड़ी थी उनकी।
1: तो स्वतंत्रता संग्राम में शुरू से ही नहीं थे क्या वो?
3: नहीं नहीं, उनकी सही भागीदारी तो असहयोग आंदोलन के समय शुरू हुई थी।
4: सुनो हरिया, आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ ले वरना तुझे मालूम है अगली बार सीधे हाथ उठाऊंगा।
5: हाँ। अरे ठाकुर भैया, अब अपनी पहलवानी का जोर सीधे साथे लोगों पर अजमाना छोड़ भी दो, अब जरा ढंग के कामों में इस्तेमाल करो भाई से।
4: चल जा रिया।

0: कल सांझ पड़े आना। आइए भाभी आइए, जरा ठीक ठाक कहिए जो कहना चाहती हैं। जानती है ना, अपना तो पहलवानी का दिमाग है।
1: हाँ, पर देश में तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है उससे तो वास्ता होगा ही, और तुम तो ठाकुरों के नेता हो, तुम्हारी करनी का असर तो सब पर पड़ेगा।
0: मैं भी सुन तो रहा हूँ बहुत कुछ। ये असहयोग आंदोलन का नाम तो जबान जबान पर सुनने को मिल रहा है आजकल, कुछ हम भी अच्छी तरह जान समझ लें इसके बारे में, क्यों?
1: क्यों नहीं भाई, देखो हमें गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत करनी होगी और बस उन लोगों को असहयोग आंदोलन के लिए सहमत कराना।
2: बस इस तरह कूद पड़े ठाकुर रोशन सिंह भी असहयोग आंदोलन में,
3: पहलवान होकर डंडे खाए रोशन सिंह ने।
2: हाँ, रोशन सिंह ने पहले तो खूब धरने दिए, डंडे खाए, पर जो डंडा चलाने में माहिर हो उसे डंडे खाना भला कैसे रास आता।
4: तो छोड़ दिया उन्होंने आंदोलन।
2: अरे नहीं, डंडे तो वो कुछ और दिन भी खा सकते थे, लेकिन चोरी चोरा की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया और गांधी जी के इस निर्णय की देश भर में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। ठाकुर रोशन सिंह भी भुनभुना उठे।
0: भाई राम प्रसाद, ये जो चल रहा है ठीक नहीं है। एक तरफ हम लोगों ने जबान पर ताला लगाकर लाठियां खाई और आंदोलन यूं बीच में ही रोक दिया गया। अब क्या चुप साधे बैठ जाएं घरों में अपने?
5: कौन कहता है कि बैठ जाओ घर में जब चारों ओर लगी हो आग नगर में।
0: मैं आपके किस काम आ सकता हूँ बिस्मिल भाई?
5: ठाकुर, तुमने पहलवानी के जोश में गांव गांव जुड़ा के डाले, उसी कौशल का सही उपयोग करने का वक्त आ गया समझो।
0: मैं शर्मिंदा हूँ बिस्मिल भाई, जवानी के जोश में अपनी पहलवानी का दुरुपयोग किया, कोई सही राह दिखाने वाला भी नहीं था, पर सचमुच मैंने डाके डालने छोड़ दिए। अब
5: मैं छोड़ने के लिए थोड़े ही कह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि यही डाके हम अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, आप बस निर्देश दें, मैं आपके साथ हूँ।
4: हाँ, अब आया मजा, पहलवानी बेकार नहीं गई उनकी।
2: कुछ समय तो चला ये सिलसिला, लेकिन फिर रामप्रसाद बिस्मिल ने भी राजनीतिक दृष्टि से डाले जाने वाले डाके बंद कर दिए। ठाकुर साहब बिस्मिल से प्रभावित तो थे ही, सो उन्होंने भी डकैती को तिलांजलि दे दी और एक सशस्त्र क्रांतिकारी के रूप में बिस्मिल के दल में काम करने लगे।
0: भाई राम प्रसाद, हमारी गतिविधियों को सशक्त करने के लिए हमें और अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी।
5: हाँ, लेकिन मैं अब व्यक्तिगत डाके डालने के पक्ष में नहीं हूँ भाई, आखिर अपने ही लोगों को हम क्यों लूटें, चाहे वो जमींदार ही क्यों न हो।
0: लूटना तो इन अंग्रेजों को चाहिए जो हमारे लोगों को, हमारे देश को लूट रहे हैं।
5: बस यही सोचकर हमारे साथियों ने मिलकर एक योजना बनाई है। आज से ठीक 15 दिन बाद यानी 9 अगस्त को सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर में बहुत सारा अंग्रेजी खजाना जाने की सूचना मिली है। वैसे इसकी सुरक्षा बहुत बड़ी होगी, इसी कारण से हमें बहुत योजनाबद्ध तरीके से हमला करना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमें सशस्त्र होकर ही यह कदम उठाना चाहिए।
5: सहारनपुर से निकलने के बाद लखनऊ के थोड़े ही पहले एक स्टेशन है काकोरी, ये काफी सुनसान क्षेत्र है और जंगल के करीब, बस हम यहीं धावा बोलेंगे और अंग्रेजी खजाना लूट लेंगे।

0: समझ में नहीं आ रहा, लगता है डकैत है भाई।
1: बिल्कुल उठ
2: गए। अरे नहीं नहीं, हमें लगता है ये हमारे क्रांतिकारी भाई है।
1: आप लोग घबराइए नहीं, हमारा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है।
3: हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
1: हम लोग हिंदुस्तानी ही हैं, हमारी दुश्मनी सिर्फ रंगियों से है।
3: ये गोरे अब बचने ना पाएंगे। अच्छा हम कहते हैं ऐसा करते जाइए, आपको कुछ नहीं होगा।
1: बस ध्यान इतना रहे कि कोई भी हिंदुस्तानी भाई गाड़ी से बाहर कदम न निकाले।
4: Why the train has stopped?
5: I don't know. Let's see.
3: Just check it first. Come on.
6: Oh my God! It's the Kaiti!
3: Let's take your positions.
6: Stop there! Stop there! Stop there!
3: Close the door. Shut the door. Hurry up. Come on.
6: Yes, sir.
3: You fools, fire now! Fire! Take your position,
6: everybody!
3: Oh my God! Help somebody! Help!
7: संदूक शायद इसी डिब्बे में होगा। हमें यही की खबर।
3: वो रहा। निकालो।
7: अशफाकुल्ला, उसे खींचिए, खींचिए उसे।
3: जरा संभाल के।
7: यहाँ लेकर आइए।
3: तुम लोग ताला तोड़ो, तब तक मैं उधर फिरंगी को देखता हूँ।
1: बैठो, मैं देखता हूँ।
7: खुल गया ताला। चलो साथियों, हमें हमारा माल मिल गया। चलो यहाँ
3: पे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। चलो।
8: अरे सुखदेव कहाँ है?
7: देखो देखो, कहीं पीछे तो नहीं रह गया।
3: अरे सुखदेव वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो।
8: चलो साथियों भागो, निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी।
7: अशफाक भाई सब ठीक है, आइए निकलिए आप।

0: अच्छा, तो ठाकुर रोशन सिंह काकोरी षड्यंत्र कांड में भी शामिल थे?
1: नहीं, वो योजना बनाने में तो साथ थे, पर किसी कारण से काकोरी हमले में शामिल नहीं हो सके। एक महीने बाद ही 23 सितंबर 1925 को बहुत से क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। ठाकुर रोशन सिंह भी गिरफ्तार हुए।
0: क्यों? वो तो लूटने गए नहीं थे।
1: हाँ, पर वे बिस्मिल के दल के सक्रिय क्रांतिकारी तो थे ना।
0: फिर क्या सजा हो गई उनको?
1: काकोरी कांड का मुकदमा लखनऊ में लगभग 1.5 साल तक चला। जेल में अनेक यातनाएं दी गई। क्रांतिकारी अनशन पर बैठ गए। अंग्रेजों ने जबरदस्ती अनशन तोड़ाने की कोशिश की, पर ठाकुर रोशन सिंह तस से मस नहीं हुए।
2: मिस्टर जेलर, रोशन सिंह इज वेरी स्टबर्न। इट इज इम्पॉसिबल टू फोर्सफुली फीड हिम थ्रू न्यूज।
3: वी हैव टू डू समथिंग।
4: ठाकुर साहब, अंग्रेजों की हवा निकाल दी आपने। बड़े बड़े पहलवान भी बलात्कार नहीं करा पाए आपको।
5: 15 दिन हो गए भाई, हमने भी नाकों चने चबा दिए उनको। बेचारे पहलवान भी थक के हार गए।
4: और आप तो भूखे पेट ही जीत भी गए।
6: सुनिए सुनिए, सब सुनिए। सरकार ने समझौता कर लिया है, अब आप लोगों को अनशन करने की जरूरत नहीं है।
5: अरे सिपाही बाबू, ये खुशखबरी तो उन पहलवानों को सुनाओ जाके। अब उन्हें हमारे साथ मशक्कत जो नहीं करनी पड़ेगी।
6: रोशन सिंह, जेलर राय बहादुर चंपालाल तशरीफ ला रहे हैं।
5: कहिए जेलर साहब, अब सरकार ने कोई नई चुनौती रख भेजी है हमारे लिए?
7: नहीं नहीं भाई,

0: गले लग जाओ यार।
1: क्यों पंडित जी, मुझे छोड़कर अकेले फांसी चढ़ने जा रहे थे, पर ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब बामन ठाकुर की जोड़ी एक साथ चढ़ेगी फांसी पर।
2: भारत माता की जय, भारत माता की जय।

0: ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल भेज दिया गया। जब उनके साथियों ने उनसे दया याचिका भरने को कहा तो ठाकुर बोले,
1: भाई इतनी मुश्किलों से तो वतन पर जान देने का मौका मिला है, अगर मेरी सजा रद्द हो गई तो बट्टा लग जाएगा मेरी ठकुरास पर।
2: ठाकुर रोशन सिंह, आपका बेटा आपसे मिलना चाहता है।
3: पिताजी कैसे हैं आप?
1: कैसा दिखता हूँ? वतन पर कुर्बान होने की राह देख रहा हूँ।
3: पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ बाहर, मुझे विश्वास नहीं होता। किसी ने मुझसे कहा कि आप अंग्रेजी सरकार से क्षमा याचना करने वाले हैं।
1: नहीं बेटा, तुम्हारा पिता कायर नहीं। जिसकी शिराओं में भारतवर्ष का लहू बह रहा है वो भला अंग्रेजों के आगे हाथ पसारेगा? कभी नहीं।
0: दिसंबर 1927 के दिन ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी जानी थी। ठाकुर साहब गीता हाथ में लिए शान से फांसी के तख्ते की ओर चल रहे थे। तख्ते पर चढ़ने के बाद फांसी के ठीक पहले उन्होंने जोर से कहा,
4: वंदे मातरम,
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम,
0: और तीन बार

0: जिन लोगों ने अपने स्वार्थ, अपने परिवार को त्याग, देश के लिए मौत को गले लगाया, उनको हम सबका नमन, शत शत नमन।
1: तो समझ गया सुरेंद्र कि अपनी पहलवानी का उपयोग कहां करना चाहिए और कहां नहीं।
2: मैं समझ गया, आप सब मुझे माफ करें। जीवन के छोटे छोटे स्वार्थ छोड़कर हमें बड़े कामों के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा।
0: सब लोग जोर से बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: अच्छा काका, चलते हैं। आपने मुझे माफ तो कर दिया ना?
3: अरे हाँ हाँ बेटा, माफ कर दिया, लेकिन याद रखो, पहलवानी कब और कहाँ करनी चाहिए ये पता होना चाहिए।
1: काका, हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी परीक्षा में खरे उतर सकें।
3: अरे वो तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है बेटा।
0: और काका, हम लोग फिर से जल्दी आएंगे आपके ढाबे में पकौड़े खाने।
3: अरे जरूर आओ बेटा, ये तुम्हारा ही ढाबा है, इसके दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं।
1: चल भाई चल।
3: अच्छा अच्छा, जरूर आना।

निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

धड़कन शायद अब वो आ ही जाए, शायद अब वो आ ही जाए, ढलते जाए शाम के साए लेकिन

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन,

0: आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन. आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे. आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा. एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे कि खुद को स्वर्ग बनाना है, अपने अंदर स्वर्ग बनाना है। वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। किस किस से अब चढ़ते रहेंगे, किस किस के, और फाइनली एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा था कि लोगों के बारे में सोच सोच के, उनके बारे में उनके मिस्टेक्स या उनकी नेचर और जो उनसे डिस्टर्ब होते होते होते होते होते उनको जवाब देने में, उस तरह से रिएक्ट करने में, मैं भी उन्हीं की तरह बनता जा रहा हूँ।
2: हाउ डज चेंज रीच द होल वर्ल्ड? होता ही ऐसे, एक व्यक्ति कुछ करेगा, उसको देख एक और करेगा, फिर एक और करेगा, एंड वेरी सून पूरा समाज ऐसा करेगा। अब इसका ऑपोजिट करते हैं, हम फिर से वापस अपने ओरिजिनलिटी पे जाते हैं, हमें देख एक और जाएगा और एक और जाएगा और एक और जाएगा।
1: पॉसिबल है ये?
2: तो उस साइड पॉसिबल था तो ये साइड क्यों पॉसिबल नहीं है?
1: अच्छे की तरफ जल्दी नहीं आते लोग,
2: जाते हैं।
1: एक बात बताइए,
2: क्योंकि
1: कोई मेरे से जब बात नहीं करे अच्छी तरह से,

0: नहीं करूं आपको, तो मेरी थिंकिंग छोटी। आप भी ऊपर से विश नहीं करे तो आपकी भी थिंकिंग छोटी, तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या रहा फिर?
1: मतलब करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ
0: करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो हमारे लिए कंफर्टेबल है वो करते जाओ। वो हम आगे देखेंगे कि हम सप्रेस नहीं करेंगे, हम सफोकेट नहीं होंगे, हम ही अंदर नहीं घुट जाएंगे, दैट विल सी व्हाट वी हैव टू डू। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि ये हम कर सकते हैं।
1: क्या नहीं कर सकते हैं चाहो तो?
0: क्या नहीं कर सकते हैं चाहो तो? ब्यूटिफुल, तो मतलब हम कर सकते हैं।
1: चाहना ही नहीं है ना, बदला लेने की भावना रहती है ना। ठीक है, इसने
0: लगे। अब हमने अंडरस्टैंड किया उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरा हो रहा है। मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल, क्यों हम आज कह रहे हैं खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, ये वाला तरीका यूज करते करते ही तो खाली हुए ना अंदर।
1: मन बुद्धि को मुझको बचपन से ट्रेन किया गया कि एक मारे चार मारो, डरना नहीं, तो फिर क्या करें?
0: तो आज फिर से ट्रेन करेंगे, जब उस मन ने तब कहना माना था तो आज भी तो कहना मानेगा।
1: अभी तो ग्रुप पक्का हो गया ना आपकी भाषा में, संस्कार पक्के हो गए, हैबिट हो गई है।
0: तो हमने बनाया था, हम तो फिर से नया बना देंगे। संस्कार बनाना बहुत इजी है, मन को चेंज करना भी बहुत इजी है।
1: नहीं नहीं, नहीं।
0: नो, बहुत इजी है, प्रोवाइडेड आई वांट टू डू इट। द मिनट आई वांट टू डू इट, इट्स गोइंग टू बिगिन एंड इट्स ऑलरेडी बिगन फॉर यू, यू नो दैट।
1: नहीं, मेरा तो है, लेकिन मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ,
0: हाँ?
1: मेरी पुरानी बातों का और थोड़ा सा उसका अभी, उसका मतलब उसकी दो मटकी है अभी, ऐसा नहीं कि पूरा हाथी हाथी दिखा
0: गया। एक मिनट, पुरानी बातों की अभी सिर्फ दो में अटकी है?
1: हाँ जी।
0: तो बाकी कहाँ गया?
1: बाकी साफ होता गया।
0: तो जब इतना सारा साफ होता गया तो डूब को जाने में कितना टाइम लगेगा?
1: वो डिस्टर्ब करती है मुझे।
0: इम्पोर्टेंट इज मैंने इतना सारा साफ किया तो ये भी तो साफ हो जाएगा।
1: नहीं, मुझे ये डर है कि वो डूब के साथ वापस न आ जाए ना पीछे।
0: हम अटेंशन रखते हैं ना हर रोज कॉन्शियस, इसीलिए डेली स्टडी, डेली मेडिटेशन। एक टेबल है घर पे, उसको रोज साफ करना है। एक दिन हम घर में एंटर किए, हमने देखा वो टेबल तो बहुत सालों से साफ ही नहीं हुई है। तो उसके ऊपर धूल धूल धूल, इतनी लेयर्स बनी हुई थी। ठीक है, अब हम उस घर में रहने लगे तो ऑब्वियसली हम उस टेबल को रोज साफ करेंगे। तो अब क्या होता है, हम पहले दिन ही आके हमने बहुत सारी धूल की लेयर तो ऐसे ही उड़ा दी, तो फर्स्ट वाइप में बहुत सारी धूल तो फर्स्ट वाइप में मिट जाती है। फिर उसके नीचे रह जाते हैं छोटे छोटे छोटे छोटे मार्क्स, जो ऐसे फर्स्ट वाइप में नहीं मिटते, जिनके ऊपर ना थोड़ा सा स्क्रब करना पड़ता है अच्छे से। लेकिन साथ साथ ये इम्पोर्टेंट होता है कि रोज एक बार कपड़ा जरूर मारना है। जिस टेबल पे रोज कपड़ा मारेंगे अब तो वो साफ ही रहेगी ना, देयर इज नो चांस कि वो इतनी सारी लेयर्स ऑफ धूल वापस आ जाएगी उसके ऊपर, वो तो अब नहीं हो सकता।
1: बहुत मिनिमम आएगी और वो साफ करते तो रहेंगे तो निकल जाएगी।
0: और धीरे धीरे तो हमें अभ्यास हो जाएगा, धूल आए साफ, धूल आए साफ। यू नो, कुछ लोग देखो कितने क्लीन होते हैं, हर थोड़ी देर के बाद आके साफ करते हैं, ये नहीं करते कि दिन में एक ही बार साफ करेंगे।
1: रेस्टोरेंट्स में होता है, होटल्स में,
0: हर थोड़ी देर बाद साफ।
1: हाँ, एक एक, एक आदमी खा के उठा साफ, दूसरा आदमी खा के उठा साफ,
0: बस सिंपल है। एक को मिले उसके बाद साफ, किसी ने कुछ कहा उसके बाद साफ।
1: ये इतना अच्छा, एज एन एक्टर आई कैन इमेजिन, खाने की टेबल पे वो डोसा इडली सांभर खाया, लड़का आया साफ, दूसरा पे आया कस्टमर आया साफ, ऐसी हर एक।
0: मैं आई, विश नहीं किया साफ करो, फिर मैं आई, ठीक से बात नहीं की, उसके बाद साफ करो।
1: ये मुझे
0: फिर उसके बाद कोई और आया, उसने तो गलत ही बोल दिया, साफ करो, साफ करते जाओ करते।
1: अच्छा,
0: जाओ।
1: देखो ये जो रेस्टोरेंट में बॉयज सर्व करते हैं, वेटर्स होते हैं, लड़के होते हैं, वो साफ करके चले जाते, डोंट इवन केयर वो खाया कौन आया था, कब गया था, अपना पैसे तक निकल भी गया।
0: उनका रोल है,
1: उसका रोल है सिर्फ साफ रखना।
0: मेरा रोल है सिर्फ अपने आप को साफ रखना, कौन आया था, क्यों उसने वो खाया था, और क्यों उसने खाते खाते गिराया भी था, ठीक से नहीं खा सकता था वो,
1: आधा छोड़ के भी गया, जूठा छोड़ा,
0: सोचो
1: पैसा वेस्ट किया, इतना सब कहाँ सोचते
0: सब क्यों
1: उठाया प्लेट फेंका निकला।
0: अपना रोल, अपना रोल, हम तो यही कर रहे हैं आज, वो आया क्यों, आके फिर ऐसे खाया क्यों, फिर ऐसे बोला क्यों।
1: बट ये लड़का, अगर डीप थिंकिंग करो, जो साफ करता है टेबल को, ही मस्ट बी सेइंग ना, कम वॉट में

0: कोई चैलेंज हो, आधा छोड़े, जूठा छोड़े, ज्यादा मंगाए, कांच तोड़े, आई डोंट केयर, माई जॉब इज जस्ट टू क्लीन। कोई भी आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, कैसा भी आ जाए,
1: एंड वो टाइम वेस्ट ही नहीं कर सकता उन लोगों के बारे में सोचने में,
0: क्योंकि उसको फिर रिजर्व रखना है।
1: हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अब दूसरे लोगों के बारे में सोचने
0: so
1: में
0: beautiful.
1: हम एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकते दूसरे लोगों के बारे में सोचने में। आप देखो, आप इतने दिन से कह रहे थे, पर लेकिन उसने ऐसा बोला क्यों, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों, लेकिन उसने आके विश किया क्यों नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी।
0: उसने टेबल में सांभर इडली दाल गिराई क्यों?
1: हाँ, इट्स पेटी एज दैट एक्चुअली।
0: वो आते अपने बाल्टी ले रहे, क्लीन किया, निकल गए और जाके कपड़ा धोया, दोबारा रेडी फॉर द नेक्स्ट,
1: रेडी टू मीट द नेक्स्ट पर्सन,
0: और काम के घर चले जा रहे, सोचा था आराम से एंजॉय द फ्रूट ऑफ दैट वर्क।
1: अब हम भी यही करेंगे, हमारा फोकस। अभी आपने पिछली बार कहा, लेकिन इसका मतलब क्या, इसका मतलब कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा, अच्छा फिर कितनी बार बोलेगा, उन्होंने ऐसा बोला क्यों, उन्होंने ऐसा किया क्यों, नाउ ऑल दैट लिस्ट विल हैव टू गो एंड देन ओनली हैव टू बी वन लाइन, मुझे क्या करना है, इस पर आना ही होगा। वो सारी बातें वेस्ट ऑफ, जो आपने कहा ना, जैसे वेस्ट ऑफ
0: टाइम एनर्जी,
1: एंड वो कितनी सारा दिन है और हरेक के साथ है, तो कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही होगी।
0: खाली एनर्जी वेस्ट थोड़ी होती है, जो उसके साथ हर्ट होता है, पेन होता है,
1: वही ना, सोल पावर वेस्ट हो रही है।
0: नो नो, नॉट ओनली दैट, उस हर्ट पेन में मैं दूसरों को भी उस तरह से बात भी तो कर देता हूँ,
1: क्योंकि सोल पावर वेस्ट हुई ना।
0: हाँ, तो आगे कार्मिक अकाउंट भी खराब होता है ना।
1: आत्मा की शक्ति अगर चार लोगों के बारे में सोचने से डिप्लीट हुई, तो बाकी चार लोगों के साथ भी वो आत्मा प्यार से कैसे बात करेगी। सो सबसे पहले अगेन फाउंडेशन मंत्र क्या होगा, सिचुएशंस एंड पीपल, लोग और परिस्थितियां मेरे डेफिनेशन ऑफ सही के अनुसार नहीं होंगे।
0: बेस्ट सिस्टर, ये तो बहुत आपका ऊंचा वाला डेफिनेशन है।
1: हाँ।
0: वो सिंपल लाइन में एक इमेजिनेशन करता हूँ, एक लड़का छोटे से शॉर्ट बनियान में यहाँ कपड़ा लटकाता, आया टेबल साहब के, चला, इज नॉट इंटरेस्टेड कौन खाया, क्या नहीं खाया, क्या गिराया, क्या नहीं, अपन तो साफ ही करते रहना है, बेस्ट।
1: अब साफ भी करते क्यों रहना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार गंदा हो रहा है। जब अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी, गंदा होना कम हो जाएगा। जब ये अभी क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस हैं कि लोग ऐसा तो करना चाहिए, ऐसा, जब धीरे धीरे हमारी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट ही खत्म होने लगेगी, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, नहीं वो मेरे अनुसार चल सकते।
0: अगर मेरा ईगो हर्ट हो रहा है कि फलाने ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, और मैं दुखी हो गया, तो फिर मेरा ईगो यहाँ हर्ट होना चाहिए कि मैं हार गया।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: अदर पर्सन इज सक्सेसफुल,
1: बिल्कुल,
0: इन प्लेइंग गेम्स विद मी, वो माइंड गेम जो भी, अगर सपोज
1: उसको अभी तक हार नहीं सोचा था ना कि हम हार गए, हमने ये सोचा ही नहीं,
0: नहीं अभी सोच रहा हूँ।
1: हाँ,
0: अभी एनालिसिस कर रहा हूँ,
1: बिल्कुल। एंड अब सेल्फ रिस्पेक्ट ये कहनी चाहिए कि दूसरे मुझ पर हावी नहीं हो सकते, एंड देर नॉट डूइंग इट डिलिबरेटली, वो उनका संस्कार है, वो हम आगे देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, आज से हम दिन में हजार बार अपने आप को ये याद दिलाएंगे, लोग और सिचुएशंस मेरे अनुसार नहीं हो सकते।
0: ये आज का मंत्र है,
1: ये आज का नहीं मंत्र है,
0: जीवन भर,
1: जीवन का मंत्र है,
0: लोग और हमारे अनुसार
1: नहीं हो सकते,
0: लोग एंड सिचुएशंस,
1: सिचुएशन ऑल्सो आर नॉट ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द वे वी वॉन्ट देम टू बी, इवन द वेदर इज नॉट गोइंग टू बी द वे आई वॉन्ट इट टू बी।
0: शूटिंग में मैं चाहता हूँ कि साइलेंस रहे, यहाँ शादी हो रही है।
1: हाँ,
0: और ये बैंड बजा बजा है, मुझे 10 बार रुकना पड़ा,
1: लेकिन आप शूटिंग कर रहे हैं ना।
0: हाँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ,
1: टॉलरेट,
0: लेकिन मैं यहाँ टॉलरेट कर रहा हूँ विदाउट गेटिंग एंग्री और डिस्टर्ब,
1: दैट इज ऑल, एंड उसके पीछे भी
0: बिकॉज आई न्यू यस्टरडे कि यहाँ होने वाला है,
1: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यू नो कि आप उसको रोक नहीं सकते। अगर
0: हाँ, वैसे देखो, मैं उसको भी तो नहीं रोक सकता जो मुझे विश नहीं करते, हाउ कैन आई स्टॉप,
1: सेम थिंग, जब हमें पता होता है ना कि हम सामने वाले को रोक नहीं सकते। अभी आपको पता है कि इस बैंड बाजे को आप रोक नहीं सकते, इस ऑडियो डिस्टर्बेंस को आप रोक नहीं सकते, वो चल रही है और आप उसी के बीच रहकर अपना काम कर रहे हैं।
0: या तो मैं एक फिल्टर लगाने की कोशिश करूं, और फिल्टर नहीं हुआ तो यहाँ से हटके मैं कहीं और जाके करके आऊं,
1: या मैं यहीं बैठकर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके कर लूं,
0: और
1: जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जस्ट लुक एट दिस सिंपल थिंग ओनली। अब इसमें हम सारी चीज किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपने ऊपर। आपने कहा या तो फिल्टर

0: लगा लें या यहाँ से
1: या आपने थोड़ा उसका वॉल्यूम बढ़ा
0: हम अपना वॉल्यूम बढ़ा लें या हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएं या हम पूरी कंसंट्रेशन से करें, हम उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन हम ये सारी एनर्जीज किस पर फोकस कर रहे हैं?
1: अपने
0: ऊपर। लेकिन अगर हमारे अंदर एक थॉट अभी आ जाए कि हम इनको रोक सकते हैं, तो हम ये सारी चीजें छोड़कर हम उनको रोकने की मेहनत करते जाएंगे। जब तक हमें लगता है कि हम उनको रोक सकते हैं, हम उसी के ऊपर वर्क करते हैं।
1: लेकिन ये एपिसोड चल रहा है ना सिस्टर?
0: ये चल रहा है ना?
1: उसके बावजूद चल रहा है, जब जब गैप मिल रहा है हम कर रहे हैं,
0: यही जीवन है, उसी के बावजूद हमें चलना
1: कर करके कर।
0: दिस इज ओनली पावर टू टॉलरेट एंड एडजस्ट। लेकिन फोकस सारा एडजस्ट करके चलने पर क्यों है? क्योंकि फर्म बिलीफ है उनको हम नहीं रोक सकते। ये फर्म बिलीफ कितना इम्पोर्टेंट है। आर यू गेटिंग हर्ट कि वहाँ वो आवाज क्यों हो रही है?
1: नो।
0: आर यू गेटिंग डिस्टर्ब्ड इमोशनली कि वो लोग क्यों आवाज कर रहे हैं?
1: ये अचानक नहीं हुआ ना, आई एक्सपेक्टेड इट, आई न्यू दैट कल मालूम।
0: वेरी गुड, वेरी गुड। यू एक्सपेक्टेड कि ये डिस्टर्बेंस होगा।
1: करेक्ट।
0: नाउ दैट मीन्स यू वर प्रिपेयर्ड।
1: प्रिपेयर कल मालूम था मुझे, अच्छा दिए।
0: बस आज प्रिपेयर हो जाइए कि आज सारा दिन में लोग आपके अनुसार नहीं चलने वाले। सिंपल।
1: ये कैसा प्रिपरेशन है? ये नेगेटिव प्रिपरेशन।
0: ये नेगेटिव
1: प्रिपरेशन। जाके बोला आज के बाद मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, आज के बाद मेरी कोई
0: नहीं। ये नहीं कहा। हाँ। ये कहा कि लोग हमारे सही के अनुसार नहीं चलने वाले हैं। ये थोड़ी कहा कि लोग हमारे से प्यार नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपने कहा कल से हम प्रिपेयर थे, ये आवाज आने वाली है। लेकिन हमें ये भी पता था कि इस आवाज के बीच रहकर ही हमें काम करना है। तीसरा, हम अभी उस आवाज के बीच बैठे हुए हैं। आवाज भी चल रही है लेकिन हमारा फुल फोकस किस पर है? हमें इसके अंदर संभाल के अपनी शूटिंग करनी है। दिस इज जर्नी ऑफ लाइफ। आज हम प्रिपेयर हो जाए कि हमारे आसपास लोग अपने अपने आवाजों के अनुसार चलेंगे, अपने अपने संस्कार के अनुसार चलेंगे। आई डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी द वे आई वॉन्ट देम टू बी।
1: पॉसिबल कैसे? इनकी यहाँ शादी हो रही है एंड आई वॉन्ट देम टू बी क्वाइट।
0: वेरी गुड। इनके लोगों के अलग अलग संस्कार हैं एंड आई वॉन्ट देम टू बी लाइक माई संस्कार। शादी वाले तो फिर भी क्वाइट हो सकते हैं, अगर हम उनको बोलेंगे ना तो वो चुप भी हो जाएंगे, लेकिन आत्माएं अपने संस्कार कैसे बदल देंगे?
1: आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि संस्कार बदलना आसान है।
0: हम जब अपना संस्कार बदलना चाहें तो वो आसान है,
1: दूसरे का इम्पॉसिबल।
0: दूसरे का संस्कार नहीं ना बदल सकते। कितना देखो प्रिपेयर्ड अगर हो जाए, दिस इज ओनली ज्ञान ना, ये ज्ञान है प्रिपरेशन। आपको कल नॉलेज मिल रही थी कि ये होने वाला है, माइंड को प्रिपेयर कर लिया था, आज उसी के बीच बैठकर इतने प्यार से काम कर रहे हैं। ये जीवन है, ज्ञान मिल गया। लोगों के संस्कार अलग अलग हैं, लोग लंबी यात्रा पर वो संस्कार लेकर आए हैं, हमारे कहने से वो उसको बदल नहीं सकते। ज्ञान मिल गया, ये कलयुग है। हर आत्मा अंदर किसी न किसी कारण से दुखी, परेशान, अशांत है, चाहे वो उसका इन्फीरियोरिटी है, कहे किसी का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, किसी का ईगो है, किसी की जेलसी है, लॉन्ग लिस्ट। अंदर दुखी है, नॉलेज मिल गई।
1: बात आपकी समझ में आ रही है।
0: नॉलेज मिल गई, अब प्रिपेयर्ड हो जाए, अब प्रिपेयर्ड हो जाए कि आज
1: अगला इंसान। आपकी बात सुन के मुझे थोड़ा सा ना अभी एम्पैथी भी हो रही है कि अगला इंसान बेचारा क्या क्या चीजों से गुजरा होगा, किन किन चीजों से, और कितनी कम नॉलेज जो भी हो या क्या नहीं मिला होगा जिंदगी में, क्योंकि ऐसा बन गया वो बेचारा।
0: कंपैशन, कंपैशन आ गई।
1: एक्चुअली आई,
0: एक्चुअली आई है,
1: सीरियसली आई है। अभी जो बात कर रहा हूँ, जो आपसे बात करते करते उस व्यक्ति के बारे में भी आई कि उसके साथ क्या नहीं हुआ होगा जो, और मतलब कितनी चाइल्ड लाइक चाइल्डिश बात है कि चलो लेट्स प्ले द गेम विद दिस। ऐसा खुला दिखता है कि आप गेम कर रहे हो, लेकिन कितना उसके अंदर दर्द होगा, कितनी मेच्योरिटी होगी, कितनी लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज होगी।
0: अब आप हर्ट तो होंगे उससे सर?
1: अब नहीं होगा, नहीं हो भी नहीं रहा हूँ अब तो, मुझे एम्पैथी आ गई।
0: कितना इजी है, कितना टाइम लगा?
1: काफी टाइम लगा।
0: कहाँ टाइम लगा?
1: आधे घंटे से मैं आपका दिमाग,
0: आधा घंटा तो जीवन बीत जाएगा समझने में ये सारी बातें।
1: नहीं बट आई एम फीलिंग लाइटर डू यू नो दैट
0: बाय थिंकिंग टॉकिंग टू सी अगेन लेट्स गो बैक टू द सेम इंसिडेंट. अगर हमें नॉलेज नहीं होती कि यहाँ एक शादी होने वाली है, हम प्रिपेयर नहीं होते कि यहाँ आवाज होने वाली है, तो हम क्या करते, हम आते अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पूरा सेटअप करते और फिर सडनली ये आवाजें आती, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता डिस्टर्बेंस, इरिटेशन. हमने इतनी मेहनत की, हमने सब सेट किया, अब ये आवाज कर रहे हैं, और हमारा फर्स्ट रिएक्शन उसके बाद होता किसी तरह हम कोशिश करके उनको रोकते, हमारे कहने से वो रुकते ना. हम जितना उनको रोकने की कोशिश करते ना, वो शायद अपने बैंड बाजे का वॉल्यूम और भी ज्यादा बढ़ा देते, एंड वेरी सून वो और हम एक कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे होते हैं. दिस इज कॉन्फ्लिक्ट.
1: बट हियर इज एक्सपेक्टेड. वहाँ थोड़ी मानता कि घर में ऐसी औलाद पैदा होगी किसी को.
0: आपको ये नहीं मालूम था कि आपके घर में सारे जो संस्कार आएंगे वो अलग अलग होंगे?
1: नहीं मालूम था
0: क्या?
1: आज अभी मालूम पड़ा कि दुनिया में लोगों के संस्कार ऐसे होते हैं, अलग अलग होते हैं. मैं तो सोचा था कि बेटा बेटा होगा, बेटी बेटी होगी, दामाद दामाद होगा, बहू बहू होगी, रिश्तेदार ऐसे होंगे, ऐसे होने से. मैंने तो पिक्चर बना के बैठा हुआ था
0: कि वो कैसे होंगे.
1: वो जो पिक्चरों में दिखाते नहीं
0: राम
1: सीता लक्ष्मण आज्ञाकारी
0: सत्युग.
1: मैं तो खुद को और बना के बैठा था.
0: लैक ऑफ नॉलेज ना,
1: लैक ऑफ माई नॉलेज,
0: लैक ऑफ आवर नॉलेज. दिस इज लैक ऑफ आवर नॉलेज. तो अब हम उसको स्टेप वाइज लेते हैं.
1: शादी वाला एक्सपेक्टेड है, उसको करना आसान है. ये तो अनएक्सपेक्टेड बातें कर रहा था ना मैं आपसे.
0: ये भी एक्सपेक्टेड है. अभी तक हमारी एक्सपेक्टेशन की लिस्ट
1: बात बताइए आप. कई मदर्स का ये प्रॉब्लम है. बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे बड़े होने तो खेल रहा है, माँ माँ माँ माँ कर रहा है. शादी होने के बाद वाइफ वाइफ वाइफ कर रहा है. गुड मॉर्निंग नहीं, नमस्ते नहीं, कुछ नहीं, वाइफ है नहीं, जिंदा है, भूल गया. तो वो क्या एक्सपेक्टेड होता है उस औरत को? अब मदर इज एक्सपेक्टेड कि आज शादी, मतलब इतने चाव से बहू को आशीर्वाद दे के, अपने जेवर दे के, अपना घर चार दे के, जिंदगी दे के उसको शादी कराती है. और यू मीन टू सी शी इज एक्सपेक्टिंग दिस आफ्टर दैट?
0: शी ओनली हैज टू बी प्रिपेयर्ड.
1: तो देन यू विल से कि ये तो नेगेटिव सोच रहे हो.
0: हम नेगेटिव नहीं सोच रहे, हम प्रिपेयर्ड हैं कि हर आत्मा उसके संस्कार और कार्मिक अकाउंट से चलेगी.
1: Nobody is prepared. नहीं तो सारी माएं नहीं होती है.
0: तो फिर
1: सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा होगा, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, कमाएगा, बच्चे लाके गोद में रखेगा, खाना लाके देगा, मेरी बात सुनेगा, बहू मेरे पाके पांव छुएगी, ऐसा सब प्रिपरेशन होता है उनका.
0: तो प्रिपरेशन ही अगर सही नहीं हुआ तो?
1: नहीं, प्रिपरेशन सही यहाँ पर नहीं है. नहीं है, लोग बदल गए हैं, ऐसा नहीं है.
0: लोग बदल गए हैं मतलब क्या? कि डे बाय डे लोगों की पावर क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है ना.
1: पावर कम होने में और कॉमन थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा बड़ों का रिस्पेक्ट करना,
0: जिस चीज को हम कॉमन कहते हैं. आपके लिए ये कुर्सी उठाना ऑर्डिनरी बात है. आप एक हाथ से उठा लेते हैं तो आप कहते हैं कॉमन बात है ना ये कुर्सी उठाना. मेरी तो ताकत खत्म हो चुकी है. तो जो बात आपके लिए कॉमन है,
1: respect does not take energy, sister.
0: Takes a lot of self-respect.
1: What?
0: Respecting other people takes a lot of self-respect.
1: आपने तो बोल्ड कर दिया मुझे. ये क्यों सा गेंद डाल दिया?
0: जो आत्मा आपने कितनी बार कहा है, जो आत्मा खुद से प्यार नहीं करती वो दूसरों को प्यार नहीं कर सकती. जो आत्मा अंदर खुश नहीं वो दूसरों को खुशी नहीं दे सकती. जो आत्मा शांत नहीं वो शांति दे नहीं सकती. जो आत्मा स्वमान में नहीं वो सम्मान दे नहीं सकती.
1: दिस इज रियली रियली समथिंग नाइस.
0: रिस्पेक्ट देना इजी नहीं है आज.
1: आप दोबारा बोलेंगे सच्चे वंडरफुल. आई वुड लाइक टू लिसन टू दैट अगेन.
0: टू रिस्पेक्ट अदर पीपल आई हैव टू बी इन माय हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट.
1: व्हाट अ वंडरफुल लाइन.
0: तो वो कहाँ इजी है आज? वो तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स बनी हुई है अभी.
1: फाइनली कम बैक टू द सेम.
0: जब हमें कहते हैं ना ईगो, ईगो मीनिंग लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. अहंकार है तो स्वमान की कमी है. तो आज तो हम में से मेजोरिटी में कितना अहंकार है. तो जहाँ अहंकार है वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है औरों की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? हाँ, ये आप बोलो कि हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, खाना पूछो, ये कर सकते हैं हम. रिस्पेक्ट करना इतना इजी नहीं है. So our expectations we will have to change.

0: We have to work on it.
1: धीरे धीरे डिप्लीट जो हो रही है आत्मा की एनर्जी उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो रहा है, लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है.
0: खत्म होती है सेल्फ एस्टीम, फर्स्ट चीज है जो खत्म होती है. आज क्यों सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए हम चीजें खरीद रहे हैं, हम फ्लॉन्ट कर रहे हैं, हम अपने कनेक्शंस को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, हम अपने पोजेशंस को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, सिर्फ लोगों की रिस्पेक्ट ऐसे मांगने के लिए, क्योंकि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं है. इफ अ सोल इज इन अ सीट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको कुछ नहीं करना है लोगों से रिस्पेक्ट मांगने के लिए, क्योंकि इट्स इंजॉइंग इट्स रिस्पेक्ट.
1: थैंक यू सो मच सिस्टर. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरा दिमाग हल्का हो गया, बिकॉज नाउ आज कुछ बात समझ में आई.
0: थैंक यू सो मच.
1: ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: थैंक यू. थैंक यू.
2: ईच टाइम समवन डिड नॉट बिहेव इन अ नाइस मैनर विद अस एंड वी रिस्पॉन्डेड इन अ सिमिलर वे, वी अलाउड आवर सेल्फ टू शिफ्ट from our original qualities of peace, love and happiness. We then started looking for happiness, searching for peace and asking for love. Power to tolerate means to not get affected internally at the thought level when situations and people are not the way we feel they should be. Tolerate does not mean to suppress. It means to accept. We cannot afford to waste time and energy in questioning others' behaviors. While doing this, our power gets depleted and we will not be ourselves, even in other relationships. Irrespective of how people behave, our role is only to keep our mind clean. To give respect to others, we need to be in a state of high self-respect. The more ego we have, the lesser is our self-respect. Lower the self-respect, lesser are we able to respect others.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: एक बहुत प्यार

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार और स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में। बहुत से फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत से ईमेल्स आ रहे हैं और ये बात हमें समझ में आ रही है कि जिन मूल्यों की हम बातें कर रहे हैं, जिंदगी के जिन मुद्दों को हम जान रहे हैं, जिनके आंसर्स तलाश रहे हैं, उसमें कई कई मुश्किलें आपके सामने आ रही हैं जब उन्हें हम प्रैक्टिकली हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी फिर से हैं, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति शिवानी। और सबसे पहली बात आज, क्योंकि शुरुआत ही मैंने सीधे इससे की है कि हमने खुशी की बात की थी, हमने टेंशन की बात की थी, एंगर की बात की थी और जिस तरह का हमारे पास रिस्पॉन्स आया हमारे दर्शकों का, उससे तो मतलब लग रहा है कि लोग जो है वो बहुत मोटिवेटेड हो गए हैं। जैसे मैं भी बहुत मोटिवेटेड रही हूं कि इसे इम्प्लीमेंट करने का, बात करने में, क्योंकि सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि बात समझ में आ जाए, समझ आ रही है लेकिन वो

0: मैं फिर बहुत ही यू नो लाइक सॉफ्ट हो गई
1: right.
0: तो वो काम ही नहीं हुआ फिर
1: True.
0: तो उसमें मुझे ये एक मुद्दा जो है कि गुस्सा ना करके लेकिन अथॉरिटी तो रखनी चाहिए ना
1: True.
0: वो कहीं वो बैलेंस
1: ये लेकिन जो ज्यादातर हमने देखा ना जैसे आपके पास जो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम फिनिश करना चाहते हैं लेकिन वो फिनिश नहीं हो पा रहा. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आपको क्या लगता है गुस्सा खत्म करने में कितनी देर लगेगी. जैसे कई लोग पूछते हैं कितना टाइम लगेगा आज अगर डिसाइड करें कि हमें अपने क्योंकि परेशान तो सभी हैं उससे.
0: एक्चुअली मुझे लगता है कि एक क्षण भी नहीं लगना चाहिए बेसिकली.
1: एक क्षण में खत्म हो जाएगा
0: नहीं क्योंकि आपका माइंडसेट की बात होती है. जिस दिन हमारा माइंडसेट पूरी तरह से ये रियलाइज कर लेगा तो चाहे जितनी भी हैबिट पड़ी हुई हो. कई लोग सिगरेट छोड़ते हैं तो एक मिनट में छोड़ते हैं.
1: वो भी तो करते हैं. वो 1 मिनट कौन सा चाहिए वो रियलाइजेशन कौन सी चाहिए जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये मेरे काम की चीज नहीं है. अभी हम क्या कहते हैं गुस्सा अच्छा नहीं है गुस्सा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा तो गुस्सा करना पड़ता है. ये जो थोड़ा थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है जब तक ये मेरे पास बिलीफ होगा तो वो चीज मैंने अपने पास संभाल के रखी हुई है. जैसे घर में सामान संभाल के रखते हैं पता नहीं कब काम आ जाए. यू नो एंड इन द प्रोसेस बी फिल अप अवर हाउस विद
0: सो मेनी थिंग्स और कभी काम
1: आए बिकॉज वी केप्ट दैट थॉट कि पता नहीं कब काम में आ जाए. और एक्चुअली उसको बाहर फेंकने में कितना टाइम लगता है. जिस दिन सोचा कि ये अब मेरे काम बिल्कुल नहीं आने वाला हम उसे उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं. गुस्सा पता नहीं कब मेरे काम आ जाए. कई ऐसी बातें होंगी जब मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो करना ही पड़ेगा. यू नो दीज जो थॉट्स हैं कि बिल्कुल खत्म कैसे हो सकता है. यू नो इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूं. हाउ इज दैट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. इट्स नॉट पॉसिबल. यू नो ये जो पूरी सीरीज ऑफ थॉट्स चलती है कि आज की दुनिया में सबके साथ काम करते हुए पॉसिबल नहीं है.
0: काम नहीं निकलवा पाऊंगी मैं कहीं का गुस्सा तो करना ही पड़ेगा.
1: और बाकी लोग नहीं तो मेरा अनड्यू एडवांटेज ले रहेंगे मुझे एक्सप्लॉइट करने लगेंगे. तो थोड़ा तो गुस्सा चाहिए. अब जब तक वो थोड़ा तो गुस्सा चाहिए तो फिर वो अंदर संभाल के रखा हुआ. फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे थोड़ा तो चाहिए. अगेन वी आर ऑलवेज इन दीज कॉन्ट्रडिक्शन. मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना लेकिन मुझे थोड़ा तो चाहिए. खुद ही चूज किया खुद ही उसे संभाल के रखा तो वो आपके पास ही रहेगा. जिस क्षण आप कहेंगे कि अब मुझे ये
0: पूरी
1: बिल्कुल नहीं चाहिए ये मेरे काम की चीज नहीं है मैं हर काम और हर व्यक्ति से इसके बिना डील कर सकता हूँ. इट्स गॉन.
0: इट्स रियली गॉन. But I think for that we have to be internally very strong.
1: No, we just have to get convinced. Actually, we don't even need to be strong. I just need to get convinced. I don't need it. We are not convinced. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि we are not convinced कि we can work without that. और वो अपने आप को कन्विंस करना. I will have to take myself through you know a few days of experiment. कि हर स्टेप पर देखे पहली बिलीफ कि गुस्सा तो चाहिए. चेक करें या गुस्सा तो नॉर्मल है. चेक करें करके अभी क्या हो रहा है कर रहे हैं और आगे काम करते जा रहे हैं. वी नॉट स्टॉपिंग एंड चेकिंग. गुस्सा करने के बाद कैसा फील हुआ अच्छा लग रहा है बॉडी इज फीलिंग ओके. आज डॉक्टर भी हमें बता रहा है कि एक क्षण का गुस्सा भी आपके ब्रेन से लेकर पूरे नर्वस सिस्टम और हर अपने शरीर के ऑर्गन पर इतना नुकसान कर रहा है. हाउ कैन इट बी गुड. जो चीज इतना डैमेज फिजिकली कर रही है वो इंटरनली कितना डैमेज कर रही होगी. हाउ कैन इट बी गुड. आई एम स्प्रेडिंग सो मच नेगेटिविटी इन द एनवायरमेंट. मेरे रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं. हाउ कैन आई कॉल दैट थिंग गुड. उससे गुड कौन सी चीज निकल रही है. आई विल हैव टू आस्क माई सेल्फ. जब मैंने गुस्सा किया उसके बाद स्टॉप चेक इसमें से गुड कौन सा निकला. जो मैं सारा दिन अपने आप से कह रही हूँ गुस्सा करना अच्छा है थोड़ा तो गुस्सा करना पड़ेगा. Point out and write it down. What was the good that came out now? If it really came out, use it next time. If it didn't, tell yourself no good. जितनी बार अपने आप को हर परिस्थिति में चेक करेंगे एंड अपने आप से बात करके कहेंगे no good. Again this time no good. Over a period of time, I will convince myself. देखो दूसरों को हम कैसे कन्विंस करते हैं. अपने आप को भी तो कन्विंस करना पड़ेगा क्योंकि we cannot change other people.
0: We have to change ourselves.
1: Unfortunately, पूरी जीवन औरों को बदलने की कोशिश में निकल जाती है और इतना टाइम और एनर्जी इसमें इन्वेस्ट हो जाता है कि अपने लिए टाइम और एनर्जी नहीं है. दूसरों को सलाह देना बहुत ईजी है. आप ये मत कीजिए. आप उन्होंने ये कह दिया कोई बात नहीं आप भूल जाइए. हमें कुछ कोई कह देता है अपने आप को कहना कितना ईजी मुश्किल लगता है. भूल जाइए कोई बात नहीं. काउंसिल

0: Your self, that's meditation. Mm. Self-counseling is the first stage of meditation.
1: Self-talk.
0: Talking to you. आप देखिए काउंसलर कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करेगा आप बुरे हो काउंसलर कभी नहीं कहेगा कहेगा आप ठीक हो बिल्कुल आप बस इसको ऐसा थोड़ा सा करो यू कैन टेल योर सेल्फ दैट हमें किसी काउंसलर के पास या किसी साइकेट्रिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए या इवन किसी पड़ोसी के पास या किसी फ्रेंड के पास काउंसलिंग के लिए जाने की क्या जरूरत पड़ रही है क्योंकि वी कैन नॉट काउंसल आवर सेल्फ एंड फाइनली एक्चुअली बहुत ज्यादा हमारी कोई और काउंसलिंग नहीं कर सकता अगर आप मुझे बैठकर अभी बहुत अच्छी राय दे भी मुझे सुनने में अच्छी भी लगे बट आई विल स्टिल गो बैक विद माई ओल्ड बिलीफ कि आप तो ठीक कह रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है जी मेरे बच्चे कैसे जी आपको नहीं पता आपके हस्बैंड वैसे नहीं है ना आपको नहीं पता मेरे हस्बैंड कैसे तो मेरे हस्बैंड कैसे वो अगर मुझे ही सिर्फ पता है तो फिर मेरी काउंसलिंग
1: मैं अपने आप
0: मुझे ही करिए
1: अच्छा लेकिन जब हम बहुत अच्छी आपने ये बात कही कि जब हम काउंसलर के पास जाते हैं तो कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता
0: नेगेटिव नहीं
1: लेकिन जब हम अपने आप से बात करते हैं तो पहली चीजें अपनी नेगेटिव
0: और इसीलिए तो हम अपने आप
1: और डिप्रेशन में चले जाते
0: डर लगते बिकॉज जैसे ही हम बैठते हैं अपने आप से हम बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं
1: सब कुछ नेगेटिव दिखने लगता है
0: राइट एंड देन इट्स लाइक ये अच्छा नहीं है एंड आई मूव आउट जो वो हमने उस दिन बात की कि रोशनी में फिर उस चीज को तलाश करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अंदर जैसे ही ट्राई किया तो बड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगा
1: डर लगा
0: तो एट एवरी स्टेप अपने बिलीफ को चेक कीजिए एंगर इज गुड नो जब आप 8-10 परिस्थितियों से गुजरेंगे और हर टाइम क्योंकि गुड कभी हो नहीं सकता वो तो हर टाइम जब आपका फाइनल एनालिसिस निकलेगा नो इट वॉज नॉट गुड वॉट गुड केम आउट ऑफ इट नथिंग धीरे धीरे यू विल टेल योर सेल्फ येस दिस बिलीफ वॉज रॉन्ग पहले तो इसको साइड करो कि एंगर इज नॉट गुड सेकेंड दूसरे ने किया तो मुझे भी करना ही होगा चेक योर सेल्फ जस्ट टूडे मतलब एवरी डे मॉर्निंग डिसाइड इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर हैपन्स यू विल हैव टू प्रोग्राम दिस इज प्रोग्रामिंग आपको सुबह उठकर अपने आप से एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी अगर करना चाहते हैं आज चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कोई भी सामने आ जाए चाहे कोई कुछ भी बोल दे आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा
1: लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम ये आती है पीयर प्रेशर सबके सामने मेरी इंसल्ट करते हैं मैं चुप रह जाऊं तो लोग क्या सोचेंगे
0: आप ये सोच रहे हैं कि लोग ये सोचते हैं कि गुस्सा एक ताकत है ये आप सोच रहे हैं एक्चुअली लोग ये नहीं सोचते जस्ट विजुअलाइज अ सीन आप अपने आप को सिचुएशन में डालने की जगह सिचुएशन से डिटैच हो जाइए उसमें खड़े होने की बजाय उन लोगों के साथ जाके खड़े हो जाइए ना बी अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस आपके सामने कोई आया बहुत जोर जोर से गुस्सा कर रहा है या यू आर दी ऑडियंस मेरे सामने कोई अभी आया बहुत जोर जोर से गुस्सा कर रहा है यू आर वॉचिंग द सीन ठीक है एज एन ऑब्जर्वर दिस इज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर एंड यू वॉच मी नाउ कि मैं शायद नहीं गुस्सा करूं ऊपर से एंड आई रिमेन वेरी काम दैट टाइम एंड आई कैन जस्ट स्माइल बैक एंड आफ्टर सम टाइम वेन दैट पर्सन गेट्स ओके देन आई विल गो एंड टॉक टू हिम एंड से वॉट आई वॉन्ट यू आर एन ऑब्जर्वर आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि एम आई वीक योर कंक्लूजन वॉज आई एम स्ट्रांग बट आई कीप थिंकिंग सी दिस इज रॉन्ग बिलीफ मैं ये सोचूंगी कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं कमजोर हूं और आपको प्रूव करने के लिए मैं चिल्लाना शुरू कर दू एंड फाइनली डाउन द लाइन मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं इवन अगर आप सोचें कि आप मैं कमजोर हूं दैट्स फाइन वो आपकी सोच है अगर मुझे ऐसा रहकर अच्छा लग रहा है इफ आई फील मोर एनर्जाइज क्योंकि गुस्सा करने के बाद आई एम डिस्चार्ज आई एम एब्सोल्यूटली डी एनर्जाइज एंड मेरा वो संबंध बिगड़ रहा है अब आपका वो संबंध नहीं है वो मेरा संबंध है उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है आप क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं
1: लेकिन होता ये देखा गया है कि आप किसी ने आपसे गुस्सा किया या आपके इंसल्ट की और आप वापस नहीं रिएक्ट कर पाए आप अंदर कुलबुलाते रहते हैं वो जो एक कुलबुलाहट है वो तो मेरी एनर्जी डिस्चार्ज अगर हो जाती तो बेहतर था कई बार
0: ये भी एक बिलीफ है और समवेयर डाउन द लाइन मेडिकली उसको राइट भी प्रूव कर देते हैं कि अंदर अंदर नहीं घुटना चाहिए बाहर निकाल दो लेकिन उस प्रोसेस में क्योंकि कुछ समय हमने वो धारणा को लेकर देखा कि अंदर नहीं रखो बाहर निकाल दो लेकिन फिर हम निकालते ही रहे हर टाइम You see, then we never really got over it. तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी चीज को फोर्सफुली भी छोड़ना पड़ता है आपको उसको दो बार चार बार शायद वो आपको अंदर तकलीफ देगी पांचवी बार वो अंदर भी तकलीफ देना बंद कर देगी लेकिन अगर हम अपने आप को हर टाइम ये कह देंगे नहीं वो अंदर तकलीफ देती है इससे अच्छा बाहर निकाल दो When will it get over? It will go stepwise ना First, I stopped saying it. First, I stopped

0: डूइंग इट. पहले हम फिजिकली किसी पर हाथ भी उठा देते थे. फर्स्ट अटेंशन, हाथ नहीं उठना चाहिए. सेकेंड अटेंशन, मुख से गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए. थर्ड अटेंशन, गलत नहीं सोचना चाहिए. सो मे बी इफ आई कांट डू इट दिस वे देन आई विल हैव टू डू इट दिस वे, बट आई विल हैव टू डू इट. आई कांट गिव माई सेल्फ द एक्सक्यूज कि नहीं ये निकालना बहुत अच्छा है इसलिए करते रहो. दैट गेव अस मोर फ्रीडम कि गुस्सा कर दो, करने से आप हल्के हो जाओगे.
1: हाँ,
0: किसको आज तक हल्का फील हुआ है गुस्सा होने के बाद?
1: होते
0: ना इल्यूजन, आप गुस्सा कर दो आप हल्के. हल्का इज लाइटनेस, हल्का इज हैप्पीनेस. गुस्सा करने के बाद हल्का कब फील होता है? गुस्सा करने के बाद तो बहुत भारी लगता है.
1: बहुत बुरा लगता है एक्चुअली. हैवी और लाइट की बात
0: वही बुरा, मतलब दैट इज हैवीनेस ना. अपने आप से अंदर गिल्टी या अपने आप से क्या जरूरत थी, इसके बिना भी तो चल सकता.
1: अच्छा, और कई बार हम कहते इतना गुस्सा कर देते तो था.
0: हाँ, वो भी एक कारण चले गए.
1: वो भी एक कारण, ज्यादा कह दिया मैंने कुछ, इतना नहीं कहना चाहिए था.
0: क्योंकि जब रिएक्ट करते हैं तब कोई कंट्रोल नहीं होता है, तब ज्यादा और कम उस टाइम याद रहने वाला नहीं है. तो वो अपने आप से एटलीस्ट इनिशियली जब हमने ट्राई किया तो इट वॉज लाइक अब मुझे गुस्सा नहीं करना है, अब ये कुछ भी बोले तो. हो सकता है शुरू शुरू में क्या हुआ कि ऊपर से नहीं कहा, अंदर बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था. अभी भी कई बार ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो स्टेज तक तो पहुंच जाए कि बाहर से तो बोलना बंद करे, धीरे धीरे अंदर से भी बंद हो जाता है.
1: यहाँ एक जो हमने पहले भी बात थोड़ी आधी छूटी थी कि जब अथॉरिटी की बात है, कि अभी तक मैंने ये कहा कि मेरे लिए था कि भैया गुस्सा करूंगी तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं करते हैं. लेकिन जब मैंने ये कोशिश की कि भैया गुस्सा नहीं करते हैं, प्यार से काम कराने की कोशिश करते हैं, तो प्यार से काम हुआ ही नहीं.
0: राइट.
1: तो मैंने बोला चलो काम ही नहीं होता, लेकिन ये भी तो नहीं होता.
0: वो तो पॉसिबल नहीं.
1: हाँ.
0: क्योंकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीम लीडर या व्हाटएवर प्रोजेक्ट हेड, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करनी है, या एज अ पेरेंट बच्चों के साथ, ये उस तरफ भी एप्लीकेबल है. लेकिन गुस्सा एंड डिसिप्लिन, यू नो, कई लोग डिसिप्लिन के नाम पे बहुत गुस्सा कर देते हैं कि अगर मैंने, मुझे बच्चों को तो बच्चे बिगड़ जाएंगे. वैसे ही उनकी हालत देख लो आज, इतना आपने डिसिप्लिन उस तरह से करने की कोशिश की, उनकी हालत आज देखिए क्या है. वो खुद ही इतना हॉलो हो गए हैं अंदर बिल्कुल. तो गुस्सा और डिसिप्लिन, लाइक वी डिस्कस्ड रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, गुस्सा इज रिएक्शन, डिसिप्लिन इज रिस्पॉन्स. किसी से कोई गलती हो गई है, हम उस टाइम कैसे रिस्पॉन्ड करें? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, सामने से कोई चलते हुए आ रहा है, चलते चलते बीच में एक पत्थर था, उसका पैर उससे ठोकर लगा, वो गिर गया. गिर गया, चोट लगी, बहुत जोर से चोट लगी. आप एक पेरेंट हैं या आप एक टीम लीडर हैं, अब आपका क्या रिस्पॉन्स होगा?
1: डेफिनेटली विल गो एंड फाइंड आउट कि ज्यादा चोट नहीं लगी हो, या उसको यही समझाऊंगी कि देख के चलिए. और चोट
0: पहले किस चीज को अटेंड करेंगे?
1: उसकी चोट,
0: चोट को आप उसे उठाएंगे, उसे हील करेंगे. पहले आप उसे वहां खड़े होकर लेक्चर नहीं देंगे कि चलने का सही तरीका कैसा होता है, क्योंकि अगर आप देंगे भी तो वो सुनने की हालत में नहीं. ही इज इन पेन. फर्स्ट ट्रीट द वुंड. लेकिन हम अगर लेक्चर दें, और लेक्चर देना भी अगर हम उसको और ही जोर से उसको पीटने लगे लाठी से, तुम ऐसे चले कैसे, तुम गलत चले कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिरने की, वॉट काइंड ऑफ डिसिप्लिनिंग इज दिस? तो सिमिलरली एक कंपनी में या एक पेरेंट के साथ किसी ने कोई गलती कर दी है, वो व्यक्ति ने गलती करने के बाद ही हिमसेल्फ नोज ही इज मेड अ मिस्टेक, और द चाइल्ड हिमसेल्फ नोज आई हैव नॉट डन वेल इन माई एग्जाम्स, बट दैट टाइम दैट पर्सन इज ऑलरेडी इन पेन. उसको अंदर ऑलरेडी पता है कि मेरे से गलती हुई है, अब मुझे डांट पड़ने वाली है. नाउ यू नो दैट फियर एलिमेंट इज देयर, ही इज इन पेन. You as a leader, you as a parent, what's your role right now? You have to remember that. हम वही कर रहे हैं कि दूसरा गिरा हुआ है, वो दर्द में है, हम वहां उसको खड़े होकर और पीटते हैं. तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने ये किया क्यों? जब वो ठीक हो जाता है तब हम उसे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब वो दर्द में है हम उसे और पीटते हैं, उसे लेक्चर देते हैं.
1: जब वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा,
0: उस समय सुनने की, समझने की स्थिति में नहीं है. और इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं हम इनको इतना समझाते हैं लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा समझाने का समय गलत था. हम तब समझा रहे थे जब वो समझने वाली स्थिति में नहीं थे,
1: जब ऑलरेडी प्रॉब्लम.
0: जस्ट लुक एट द सिचुएशन ना, कि मेरे से कोई गलती होगी एंड माई बॉस जस्ट सेज नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, मैंने भी ऐसी गलतियां की थी, इट्स अंडरस्टैंडेबल. एंड ही टेक्स यू, ही जस्ट एक्सेप्ट्स यू, हील्स योर वुंड. लेकिन फिर वो हील होने के बाद फिर वो आपको बैठकर आपसे अच्छी तरह से बात करता है. लेकिन उस

0: टाइम वो भी सही बोलने की स्थिति में, क्योंकि वो रिएक्शन वाला मोड खत्म हो गया है और आप भी उस टाइम अच्छी तरह से समझने की स्थिति में, और क्योंकि जब आप दर्द में थे तब उसने आपको सपोर्ट दी थी, वो आपकी बात और भी अच्छी तरह से सुनेगा। अगर आप उसे कुछ कहेंगे भी उसे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब वो दर्द में है और तब आप उसको बोल रहे हैं तब आपकी सही बात भी
1: समझ ही नहीं,
0: अच्छी नहीं लगेगी,
1: पहुंच ही नहीं पाएगी,
0: आप अच्छे नहीं लगेंगे उस टाइम, आप ही अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए एक बच्चे को वो पेरेंट उस टाइम अच्छा नहीं लग रहा होता। एक बच्चे के मार्क्स कम आए, एक बच्चा फेल हो जाए, मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रन हु कमिट सुसाइड, व्हाई डू दे कमिट सुसाइड? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेसिंग द पेरेंट, नॉट बिकॉज दे फेल्ड। तो रीजन कितना अलग है। आज अगर वो पेरेंट को जिसका बच्चा चला गया उसे ये पता चले कि मेरे डर के कारण वो बच्चे ने अपनी जीवन दे दी, तो पेरेंट क्या कहेगा? तुम वापस आ जाओ, मैं तुझे कभी गुस्सा नहीं करूंगा। नाउ व्हाट्स द यूज? दैट्स द पॉइंट। नाउ व्हाट कैन वी डू? वो बच्चे के अंदर पहले से वो विश्वास होना चाहिए था कि माय पेरेंट्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड दैट वुड हैव हैपेंड बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरी कोई भी गलती होगी वो मुझे समझ लेंगे, एंड ऐसे पेरेंट्स हैं, वी हैव दैट काइंड ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बट देन वी नीड दैट मोर नाउ।
1: यस,
0: गलतियां हो रही है।
1: कॉलर, यू नो वी हैड अ कॉलर, क्योंकि बहुत से लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आए हैं। इनफैक्ट हमारे साथ मुंबई से शिखा का ये फोन था और उनकी यही प्रॉब्लम जो आज हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं कि शी इज गॉट अ डॉटर हु इज 9 ईयर ओल्ड और वो ये कह रही थी कि शी इज अ वर्किंग वुमेन, उनके मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी रह रहे हैं साथ में, मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप क्योंकि इतने साल 10 साल शादी को भी हो गए हैं तो ठीक ठाक है पर कोल्ड है। बेटी को ऑलमोस्ट मदर इन लॉ ने बोला बिकॉज शी इज अ वर्किंग वुमेन।
0: ओके,
1: एंड अब जब 9 साल की बच्ची हो गई है, देन शी सेज, शिखा सेज कि अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि बच्चा तो मेरे हाथ से चला गया है क्योंकि देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई डॉटर एंड नाउ आई वॉन्ट टू डेवलप दिस रिलेशनशिप एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड। सडनली शी हैज बिकम सो रूड। मेरी मदर इन लॉ के साथ जो मेरा रिलेशनशिप होता है उसका रिस्पॉन्स मेरी बेटी के साथ मुझे दिखने लगता है।
0: True.
1: और वो मेरे साथ इतनी बदतमीजी, इतनी कुछ, अब मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई हूँ। शी वॉज लिटरली क्राइंग, यू नो, व्हेन शी कॉल्ड अप एंड शी सेड कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मेरा बच्चा मेरा अपना ही नहीं रहा।
0: True.
1: और नौकरी करना भी मेरी मजबूरी थी क्योंकि यू नो पूरा फाइनेंशियल सब कुछ डिपेंड करता था बाकी सारी चीजें। तो अब मैं क्या करूं, कैसे वो रिलेशनशिप दोबारा डेवलप करूं?
0: फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर खुद डिप्रेशन में है, मतलब खुद बहुत लो फील कर रहे हैं, दूसरे को हील नहीं कर पाएंगे। दूसरे को प्यार देना है वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि खुद अंदर नफरत भरी हुई है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन। जो दूसरे को देना चाहते हो वो पहले खुद अपने अंदर भरा हुआ होना चाहिए। अब इनके केस में शायद जो हो रहा है, फर्स्ट फैक्टर इज कि द मदर इन लॉ इज कंट्रोलिंग द चाइल्ड, यू नो दैट समवेयर इन द सबकॉन्शियस दैट इज क्रिएटिंग अ बिगर प्रॉब्लम। यू नो वो एक एलिमेंट जो बीच में आ रहा है कि मेरी बेटी मेरा ना सुनने के बजाय यू नो उनका सुन रही
1: है। लेकिन बेटी के लिए भी बिल्कुल जायज है कि वो बचपन से जो करता
0: है, तो वो एक नेचुरल बॉन्डिंग है, तो देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो वो तो एक नेचुरल बॉन्डिंग थी, लेकिन इनको जो अपने आप से सेल्फ टॉक करके अपने आप को वो राइट थिंकिंग पैटर्न पे लाना पड़ेगा कि फाइनली शी इज हर ग्रैंड मदर, शी इज डन सो मच फॉर हर, आफ्टर ऑल आई कुड वर्क ओनली बिकॉज शी वॉज देयर। तो मेरा तो मतलब जैसे आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू हर कि उसने उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश करके आज ये मिसिंग एलिमेंट है और इसीलिए बच्चे बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं।
1: बट यू नो व्हाट शी सेइंग एक्चुअली कि वो उनकी जो परवरिश है वो उन्होंने अपने बेटों की भी परवरिश कोई बहुत अच्छी नहीं करी। यू नो ना, बट दैट्स अगेन शी सेज कि शी वाज इंटेलिजेंट गर्ल, शी सेज कि वो बच्चे को भी जो कर रही है क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है, खाने का, पीने का, पढ़ाने का पूरा तरीका बदल गया है। अब जब मैं उसे अपने बच्चे को अपने हिसाब से करना चाहती हूँ जो कि आज के परिवेश में देखते हुए सही है, तो शी डजंट वांट दैट।
0: शिखा को क्या करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अभी वो शायद सटली सबकॉन्शियसली वो बच्चे को अपनी ग्रैंड मदर से छीनने की कोशिश कर रही होगी। एंड सिंपल बात यह है कि एक नेगेटिव
1: थॉट प्रोसेस है
0: एक पॉजिटिव रिजल्ट जेनरेट नहीं कर सकता। अगर हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए उसकी इनपुट भी पॉजिटिव होगी। नेगेटिव इनपुट दे, पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट डाले और पॉजिटिव आउटपुट हो, इम्पॉसिबल। तो जहां उनका ये थॉट है वो परवरिश गलत थी, मुझे उसको उससे अब ले लेना है, शी शुड कम अंडर माई कंट्रोल, शी शुड नॉट लिसन टू हर, शी शुड लिसन टू मी, ऑल द थॉट्स आर

0: going on a different track. So obviously, jab hum negative energy transmit kar rahe hain itni zyada, to wo bachcha mere kareeb aane ki bajaye
1: दूर, बहुत दूर हो जाए,
0: और भी दूर, और कहीं ऐसा ना हो कि वो शायद बहुत ज्यादा दूर हो जाए, बिकॉज आई एम सेंडिंग ओनली नेगेटिव एनर्जी.
1: व्हाट शुड,
0: नेगेटिव एनर्जी उसको रिपेल करेगी ना. सी, नेगेटिव एनर्जी ऑलवेज टेक्स मी अवे फ्रॉम अ पर्सन, एंड इस प्रोसेस में वो अपनी मदर इन लॉ से भी बहुत दूर हो जाएंगे, अपने हस्बैंड से भी हो सकता है कि डिस्टेंस हो जाए, बच्चे से डेफिनेटली डिस्टेंस हो जाएंगे. तो थॉट प्रोसेस को एक एक जो इन्होंने ये थॉट ली, इसको थोड़ा सा चेक करें. फर्स्ट, मेरी ग्रैंड मतलब मेरी मदर इन लॉ ने जो किया बहुत अच्छा किया, आई एम ग्रेटफुल टू हर, एंड एक्चुअली गो एंड एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड. दूसरा, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी परवरिश की होगी, उसमें वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और आज मेरी बेटी जो है वो उनकी वजह से उस तरह से बनी है. थर्ड शी कैन डू इज गो एंड डिस्कस विद हर कि बेबी विद द चेंजिंग टाइम्स डू यू फील इट इज ओके, क्योंकि इट्स नॉट राइट कि जिसने इतनी मेहनत की थी आप जाके उससे कोई चीज को छीन लो. वो बच्चा भी आपके साथ वो रैपो नहीं बिल्ड करेगा. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक टीम बनाएं, आप दोनों मिलकर अब उसकी परवरिश करें, और वो बच्चे को इतना वो स्नेह दे, इतना प्यार दे, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब मदर एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. दिस इज नॉट एन ऑफिस रिलेशनशिप, तो इट इज जस्ट वन, शी इज जस्ट वन स्टेप अवे. सो शी शुड टॉक टू हर मदर इन लॉ एंड मिलकर वो जो उनको चेंजेस लाने हैं परवरिश में उनके साथ मिलकर करे, उनसे दूर होकर ना करे. तब वो करना बहुत ईजी हो जाएगा एंड शील एंजॉय द प्रोसेस एंड ऑल थ्री ऑफ देम will come closer. And in the way she is doing it right now, all three of them are going to go absolutely away. And just give lot of love. Lot of love internally. And lot of love internally tab diya jata hai jab koi negative thought nahi hogi. Hum kehte to hai, matlab no mother will say ke I don't love my child. Lekin ye jo sari negative thoughts hai, ye usme ek leakage hai. To jitna ye hat jayenge, aapka jo pyar hai, wo undiluted, you know, ekdam unadulterated hai. Absolutely pure and selfless. Uska result acha nahi hai.
1: बिल्कुल. और बहुत यू नो बिकॉज इनकी प्रॉब्लम एक बड़ी जेन्युइन सी प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन इसको इस तरह से इंटरप्रेट करके आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक यू माइट से कि किसी यू नो लाइक मदर इन लॉ से, या अगर आगे चल के ये भी हो सकता था कि सेपरेट हो जाएं, क्योंकि यही प्रोसेस रहते
0: हैं. बट देन दैट्स डैमेजिंग ना.
1: यस,
0: आज एक और इसीलिए इसी प्रोसेस की वजह से आज हम ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गए. हमने ये सोचा कि न्यूक्लियर फैमिली इज बेटर, नाउ वी रियलाइज नो दैट्स ऑल्सो failure. Because every thing that was there was for a purpose. लेकिन हमने उसके benefits देखने की बजाय हमने सोचा नहीं हम अब हम अपने आप ही पाल लेंगे ना, हम अकेले रह लेंगे ना, इनकी interference को कौन tolerate करेगा.
1: Definitely. और एक बार फिर हमने thought power की जो power है उसका example देखा, सामने आया कि जिस चीज को उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है और कितना जेन्युइन, किसी भी काउंसलर के पास जाएंगे तो उन्हें भी वो जेन्युइन ही लगेगा, लेकिन वो जो नेगेटिविटी इनके अंदर खुद ही जनरेट,
0: और वो खुद ही उसको पॉजिटिव कर लेंगे,
1: कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो सिस्टर शिवानी, आज एक बार फिर एंगर को हमने, एंगर के आस्पेक्ट को लेने की कोशिश की, और ये बात क्लियर होती जा रही है कंटिन्यूअसली, यू नो, कि हमारे रॉन्ग बिलीव जो है वो गलत थॉट्स जनरेट करते हैं, गलत एनर्जी जनरेट करते हैं, एंड नेगेटिव एनर्जी एक्चुअली रिपेयर है. And then positive thoughts will create positive destiny. Thank you so much. और आपको बता दें कि देखिए जैसे कितने सारे हमारे पास लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, हम उन्हें प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं, तो आपका भी स्वागत करते हैं. और कोशिश हम ये करें हर रोज, जैसा कि सिस्टर शिवानी बता रही हैं, कि पॉजिटिव थॉट्स को ही जनरेट करने की कोशिश करें. इसके लिए यही जरूरी है कि अपने बिलीव, अपनी मान्यताओं को सही रखें. आप हमें कॉल कैसे कर सकते हैं, फोन कीजिए 9873666555 पर, और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी फिर आपके साथ होगा, लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊं तेरा पीछा, ना छोड़ूंगा सोनिए पीछा ना।

तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊंगा, दिल पे हाथ से लिख ले बात ये वादा ये रहा। तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊं, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए पीछा ना।

क्या मिले न मेकअप कदम कदम पर धोती वाले मोटी कोंधों वाले लाले क्रिसमस में जापान चलेंगे नहीं तो इंग्लिश चलेंगे।

0: के जी से
1: कहता है कि पूरे पश्चिम के मिलन से इतिहास के पन्ने सुनहरे हो जाएंगे।
0: इज दैट सो? देन लेट हिम कंटिन्यू।

गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन।

0: जीवन है तन मन।
1: आज एक साथ महके हैं दो गुलाब,
2: एक दौर में होते हैं दो मोती,
1: एक साथ।

मन ही मन में रो कर प्रेमी, मन ही मन में रो कर प्रेमी, मन ही मन में

कि अब हम गए काम से। धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, ऐसा लगता है कि अब हम